0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तस्वीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी, ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो लेंथ बताई थी, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसने स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिया को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजोकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाएहिन्ना औ आबाए बूलतिहिन्ना, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीम उरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب ہی دو خواتین تھیں جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو اس وقت زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز، بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں انشاءاللہ تعالی، تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا، کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں، کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسرا کہتے کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا يدخلن الجنة

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत ख़्वाब नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

खाई है। इस्लाम ने आकर के ये बताया कि हर आदमी को अपने हक के लिए उसका आवाज को बुलंद करना चाहिए, और हर आदमी को चाहे वो किसी भी दर्जे का हो लेकिन जहां हक की बात हो तो अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस दौर में ही मिलती है, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद में बड़ी महफल में सैकड़ों लोगों के सामने जब आपने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि औरत का मेहर जो लोग इसकी वजह से नजायज फायदा उठा रहे मेहर को महदूद कर दूं और एक मकदार उसे लोग जाया मेहर ना करें, तो जहाँ उमर ने कहा एक बुढ़िया खड़ी हुई, बुढ़िया खड़ी उसने कहा कि उमर तुम मेहर को कैसे महदूद कर सकते हो जब अल्लाह ने उसको महदूद नहीं किया है। और कुरान में अल्लाह ताला इस तरह इशारा देते हैं कि मेहर की कोई तादाद नहीं है, उमर तुम कैसे कर सकते हो। और उमर ने उस भरी महफल में ये नहीं कहा कि इस औरत ने बदतमीजी कर दी है, इसको फौरन पकड़ो जी, इसको करो। उमर ने फौरन कहा कि ये बुढ़िया सच कहती है, या बुढ़िया ने कुरान से ये बात साबित की है। फरमाया उमर ने कि बुढ़िया ने ठीक कहा, उमर ने गलती की है। और इसी तरह से दूसरे मौके पर आप जो है जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु से पूछा गया कि जो कपड़ा आया था उस कपड़े से दूसरों को तो एक कुर्ता भी नहीं बन सका, आपका कुर्ता कैसे बन गया, तो उमर ने कहा कि अपने बेटे का बेटा उठ के आप खड़े होकर आप जवाब दो। बेटे ने जवाब दिया कि ये जो उमर का एक कुर्ता जो बना है उसमें मैंने भी अपना दिया। तो गोया कि ये सिखाया गया है कि जो है वो हक बात जो है हर आदमी को हक है, चाहे वो रियाया में से हो, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, और हाकिम चाहे कितना ही बड़ा हो, उम्र की शक्ल में क्यों ना हो, तो वो हक बात जाहिर कर दे। और हाकिम का काम ही अगर आदल हाकिम हो तो उस आदमी की बात को सुने। आज सारी दुनिया में यही काम चल रहा है। और ये जो मुहर्रम का महीना है, इस मुहर्रम का महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीने में आपने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते थे, 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से पूछा कि आप इस 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो, तो यहूदियों ने कहा कि 10 मुहर्रम ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा और मूसा की कौम को फिरौन से निजात दिलाई थी, तो उस जश्न में हज़रत मूसा अलैहि सलाम रोजा रखा करते थे, इसलिए हम भी आज तक रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को। तो नबी करीम ने क्या फरमाया, नहनु औला मिनकुम बिमूसा, फरमाया कि अगर मूसा के इस खुशी में तुम शरीक हो तो हमारा तो तुमसे ज्यादा मूसा के साथ ताल्लुक है, इसलिए फरमाया कि आइंदा 10 मुहर्रम को रोजा हम भी रखेंगे, और अपनी उम्मत को कहा कि 10 मुहर्रम को रोजा रखा करो, 10 मुहर्रम को रोजा रखा करो, 10 मुहर्रम को रोजा, 10 मुहर्रम आ रही है और 10 मुहर्रम को रोजा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया इस 10 मुहर्रम को एक रोजा आप रखोगे तो ये गुज़श्ता साल के एक साल के गुनाह सगीरा का कफारा बन जाएगा, तो ये एक रोजे के बदले में जो है एक गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। ये तब इस रोजे की बड़ी फजीलत आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है, उम्मत को कहा कि ये रोजा रखा करें। और ये 10 मुहर्रम आ रहा है, आज 5 है, हिसाब कर ले आज ये आज से मंगल या बुध का दिन बनेगा, तो इस रोजा आप रखने की कोशिश करें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस सुन्नत को जरूर आप लोग अदा करें। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ ये भी फरमाया कि आप रोजा 9 और 10 को रख लिया करो, यानी एक दिन आगे या पीछे रख दे, 10 और 11 को रख लिया करो, चूंकि असल ये 10 मुहर्रम जो है वो यहूदी रोजा रखते हैं, तो फरमाया उनसे मुखालफत करने के लिए किसी से मुशाबहत ना करो, आप एक दिन आगे या एक दिन पीछे रोक सकते। तो 10 मुहर्रम को रोजा रखना बहुत ही फजीलत काम नबी की सुन्नत है, और सुन्नत से हट करके ये आता है कि सड़कों पर खाते पीते फिरते रहो और ना जो है अय्याशियां करते रहो, लेकिन नबी की जो सुन्नत जो दीन है, दीन इस्लाम है, वो ये है कि 10 मुहर्रम को रोजा रखने की कोशिश करो। बल्कि कहता है कि रमजान से पहले तो 10 मुहर्रम को रोजा रखना वाजिब हुआ करता था। बहरहाल तो ये रमजान की जब यहूदियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा इस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क तबाह बर्बाद किया था। आइए ये 10 मुहर्रम जब आता है तो हमें 10 मुहर्रम ये बताते हैं, 10 मुहर्रम ये बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर लोग आते हैं फिरौन की शक्ल में, और आदमी ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर दुनिया में जुल्म करते हैं,
مظلوم پر خوب ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارے انٹرو میں ہم نے صبح آپ کو بتا دیا تھا، لیکن اس وقت ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں، سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، جو کہ اپنی مصروفیات کے باوجود محرم کے دن ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ، جو ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، جو انہوں نے معلومات لی ہوتی ہیں یا پڑھی لکھی دیکھی ہوتی ہیں، اس پر وہ بات کرتے ہیں اور اپنا تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سالہ سال سے باتیں کرتے بھی رہتے ہیں، موسم کے لحاظ سے بھی، بیماریوں کے لحاظ سے بھی، وہ بھی باتیں سنتے ہیں، ہم بھی باتیں سنتے ہیں. ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے قانون قاعدے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس ملک کے جذبات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اگر آزادی ملی ہے تو اس آزادی کو بھی استعمال کرتے وقت بھی قانون کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. سمجھ ناظرین، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں بے شمار جو ہیں ڈائنس سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کو بھی کوئی منع نہیں کیا جاتا. کوئی بھی آپ اپنا فارم فل کر کے آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. اگر کوئی پارٹی آپ کو نہیں لینا چاہتی، تو ہم نے آج دن تک سنا نہیں کسی نے کسی پارٹی میں جانے کی کوشش کی اور اس کو پارٹی کا ممبر نہ بنایا گیا ہو. اور شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے، کبھی ایسا واقعہ ہوا کوئی ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کو ممبر نہیں بناتے؟ یہاں کی سیاست کریں. اگر اپنے بچوں کے مستقبل آپ کو عزیز ہے تو اس ملک کی سیاسی جماعتوں کے ممبر بنیں، اس ملک کی سیاست میں، کمیون کی سیاست میں حصہ لیں، پارلیمنٹ کی سیاست میں حصہ لیں. جب تک یہ چیزیں نہیں کریں، جہاں بھی دنیا میں جس ملک میں آپ جا کر آباد ہوئے اس ملک کے قانون قاعدے کا احترام کریں، اس ملک کی زبان سیکھیں، اس زبان پر عبور حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں. آپ جیسے لوگ، وہ جن کے بچے ان ممالک میں نہیں پڑھے، میں اسے بدقسمتی کہوں تو اور کیا کہوں، جو بچے یہاں پڑھے نہیں، جن کے والدین بیچاروں نے مزدوری کی، اس ملک کو ڈھونڈا، مزدوری کر کے بچے جوان کیے، ان کو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھوایا، اگر اس کے باوجود باقی لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس پہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کسی نظام سے آپ فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ نظام آپ کے لیے ہے. آپ ہر وہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، جن ممالک میں رہتے ہیں، جن کا کھاتے ہیں، جن کا پہنتے ہیں، ان کے ہر وقت آپ خلاف لگے رہتے ہیں. کوئی ان کے قانون قاعدے کا ہم احترام نہیں کرتے، سوائے گلے شکوے کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. بھئی، آپ کو جمہوری نظام شاہ صاحب بتاتے ہوئے زمانہ ان کا گزر گیا ہے، یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کرتے. اگر توقیر حسن شاہ صاحب آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن وہ جو باتیں، ان پر بھی تو آپ غور کر سکتے. یا اور کوئی اچھی بات کرتا ہے، کوئی سیاستدان بات کرتا ہے، کوئی دانشور بات کرتا ہے، تو اس کی اچھی بات پر یقین کر لیں. اگر بندہ آپ کو پسند نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو. بندے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بندے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی اچھی باتوں کو لینا ہے. تو شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے اپنی تمید میں آپ کے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ دیے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم، آپ کے لسنر ناظرین سب کو السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم موسم کی بات کرتے ہیں، اس وقت بعض جگہ 27، بعض جگہ 28، بعض جگہ 29 ڈگری تک موسم ہے. یہ ہے کہ جہاں آپ بہت زیادہ امارات ہوتی ہیں، وہاں تھوڑا سا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے، وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. اور جو کھیتوں کے نزدیک ہو یا جہاں باغات ہوں یا سمندر کا علاقہ، تو وہاں تھوڑا سا ٹمپریچر جو ہے، ہوا کول ہوتی ہے. کول سے یاد آیا کہ جو یہاں کے ریسرچر ہیں یورپ پر کے، انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بڑے، ہم جو باغ 50 ہوتے ہیں، ہمیں جو نمونیا ہوتا ہے، یہ نمونیا کے وائرس کہاں سے لگتے ہیں. تو انہوں نے جو ریسرچ کی اور ان کے جو لیب میں یہ سارے ہوئی، اس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے، جو اس کے وائرس ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں اس کے اندر، ایئر کنڈیشن کے اندر. ہاں، وہ گاڑی، کار کا ایئر کنڈیشن ہو، بس کا ہو، کسی بھی جہاز کا ہو، آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، تو آپ نے ہر سال ان کے فلٹرز جو ہے اس کو کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کے فریج جو ہیں، اس کی آپ ریگولر صفائی جو ہے، کم از کم 2 مہینے کے اندر ایک دفعہ لازم اس کی صفائی کریں. اسی طریقے سے کار کا جو اندرونی فلٹر ہوتا ہے، ایک باہر والے فلٹر ہوتے ہیں، لو فلٹر، یہ وہ تو آپ سروس کراتے ہیں، وہ چینج کر لیتے ہیں. लेकिन जो आपके हैंड्स का जो अंदर अंदर स्पेशल जिस अंदर आपके कागजात रखे होते हैं उसके अंदर जो है एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर आपके जो कैबिन होती है गाड़ी की उसके एटमोसफेयर उसकी हवा को जो है वो साफ करता है, तो वो बाजू का गंदा हो जाए तो वो 50-60 करोड़ का मिलता है। तो अगर आप महंगा ले लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बोश का या किसी अच्छी कंपनी का ले लेंगे तो वो आपको जो है 100 करोड़ तक मिल जाएगा, लेकिन सस्ते जो है वो 50-60। तो आप अगर वो चेंज करेंगे तो उससे आपकी जो एसी और जो अंदर की हवा है वो आपको बेहतर महसूस होगी, इससे आपके लंग्स जो हैं वो मजबूत होंगे। और ये याद रखें कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप एसी फौरन मत लगाएं, एसी जो है गाड़ी के 3-4 कम से कम 3 मिनट के बाद आप एसी लगाएं, और एसी लगाने के साथ आप थोड़े से अपने हुआ जो है जो अपने विंडो से है उसको थोड़ा सा नीचे करके फ्रेश एयर को आप अपने कैबिन में आने दें, फिर उसके बाद आप उनको बंद करके तो आप टेम्परेचर को जो है कूल जितना भी आपने करना वो लगा लें, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ज्यादा लोगों ने आजमाई हुई है, देखी हुई है, एक्सपर्टीज इस पर बात कर चुके हैं कि आपको जो टखनों की यानी कि पंजाबी या घुटने गिट्टे इसकी जो टांगों में दर्द होती है, ये जो तेज इस मौसम के अंदर हम तेज एयर कंडीशन लगाते हैं तो वो आपकी टांगों का खून जो है उसको सर्द कर देते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एकदम गर्म हवा और में आते हैं तो गाड़ी से बाहर उससे आपके जो है ना वो जो खून की शारीरिक होती है उसके ऊपर असरात पड़ते हैं। तो राजा साहब ये है कि लोगों को हम एजुकेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको बताएं, वो अपने डॉक्टरों से रिव्यू कर सकते हैं, खुद अपने देखभाल कर सकते हैं, घर में सोने के वक्त बिल्कुल नजदीक अपने चेहरे के बिल्कुल करीब पक्का या एयर कंडीशन लगा के मत सोए, क्योंकि इससे जो है आपके लंग्स मुतासर हो सकते हैं, थोड़ा सा फासले पे रखें और ये बेहतर है आपके लिए। तो बाकी राजा साहब आपने ये बात की कि यहाँ पे लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, देखिये जिन्होंने नेगेटिव बात करनी है उन्होंने उन्होंने जहन शुरू से ही नेगेटिव बनाना, उन्होंने ये नहीं कहना कि क्या आप ये देखें कि हमने ऊबर के ऊपर शो डाला तो हमने कहा कि ऊबर को रहने दे, इस मुल्क के अंदर अपनी गवर्नमेंटशिप जो है अपना पुराना लॉ है उसको बचाएं, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। अब मैं आपको ये हलफन कह देता हूं कि बहुत सारे मुल्कों में इवन इंग्लैंड में अमेरिका में मेरे अपने खुद घर के अंदर गाड़ियां 80-80 लाख गाड़ियां आ चुकी हैं जिसको आप घर में बैठे हुए हैं उसके अंदर एड्रेस फीड कर दें, वो जाके वहां से बगैर ड्राइवर के वहां से चीज को आपके घर तक लेके आ सकती है, और ये इतनी ज्यादा मॉडरेट हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर स्वीडन ने बहुत बड़े स्वीडन की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो है टेस्ला के ऊपर इस उसके जो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है इसके ऊपर अतराजात उठाए हैं, उसने कहा है कि इसकी जो स्पीड कंट्रोल है जब ये चल रही है एक स्पीड पे तो सडनली इसके आगे कोई चीज आ जाती है तो इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, उससे हादसा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लिहाजा ड्राइवर को जो है वो बीच में बैठना चाहिए और उसको मुताहत होना चाहिए, इसका कुछ हल होना चाहिए। और ये स्वीडन ने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट तक नहीं रखा बल्कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के पास ये बात भेजी है, और ये मैंने बकायदा इसकी जो अखबारी और इसकी जो टेक्निकल रिपोर्ट थी वो आपको भेजी है ताकि कोई बंदा ये कहे कि ये ऐसे ऐसे ऐसे है तो वो हो सकती है। लेकिन अब ये कोशिश हो रही है कि डेनमार्क के अंदर मेजॉरिटी टैक्सी जो है उनको बिल्कुल उसी तरह से ड्राइवर लेस कर दिया जाए, आप टेलीफोन करें कंप्यूटर जो है वो ऐप जो है वो आपके घर टैक्सी भेज देगी, आप उसके अंदर बैठेंगे, जो एड्रेस आपने अपनी ऐप में फीड किया वो आपको वहां पे ले जाएगी और उसके बाद जो पेमेंट है वो आप कर देंगे बैंक के थ्रू कार्ड के थ्रू। तो ये चीजें जो है इससे ये होगा कि कल को जो है आबाद शुरू से जो है वो बढ़ जाएगी, वोमनों का अख्तियार जो है वो कम हो जाएगा, कंपनियां जो है वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां अपने अपने मतलब कर लेंगे, अपने अपने कंपनियां जो है वो कहेंगी कि हमें अब ड्राइवरों की जरूरत नहीं, हम बैठ के तो 100-150 गाड़ी को जहां दिल चाहे भेज दें लोगों को, हर जगह से जो है वो गाड़ियां चलेंगी। और यह से दूसरे मुल्कों में हो रहा है, इस तरह अगर डेनमार्क में हो गया तो ये छोटा सा मुल्क है, बहुत सारे लोग जो है वो विदाउट वर्क हो जाएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एजुकेशन बहुत बड़ी जरूरी है, कंप्यूटर कोर्सेज 3-3-4-4 साल के कोर्सेज है और वो भी जो उम्र से थोड़े से ज्यादा है, उनको कोर्स करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो वो कहाँ से जाएंगे। सवाल बड़े उठते हैं कि क्या हमारे जो सियासतदान हैं क्या वो अब भी सत्तू पीकर, जैसे शेख रशीद कहता है सत्तू पीकर सो गए हैं, क्या वो सत्तू पीकर सो चुके हैं। हम लोग बहुत ही, आपने खुशानदा बात की कि हम लोग पाकिस्तानी सियासत को यहाँ पे बहुत ज्यादा मुलवस करते हैं, ठीक है करें पाकिस्तानी सियासत को मुलवस, लेकिन ये ख्याल करें कि आपकी जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो डेनिश है, उनको उनको यहाँ के माहौल और यहाँ के इस मुल्क में उन्होंने रहना है। आपने अगर नहीं रहना तो कल को हम आज अभी बैठे हुए सुबह का, मेरा पता नहीं कि मैं जिंदा हूं या नहीं, लेकिन कम अज कम मुझे जो अपने आने वाली नस्लें हैं उनका सोचना चाहिए कि मैं उनके लिए क्या बेहतरी करके जा रहा हूँ, क्या बेहतरी नहीं कर सकता। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इतने ज्यादा डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं इस मुल्क के अंदर, हमारे इंजीनियर्स हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, हर जगह पे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे, यानी कि यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज जो है हमारे पाकिस्तानी है, हाउसलाल के फ्री प्रोसेस में भी पाकिस्तानी बैठे। देखिए लेकिन इसके बावजूद क्या हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे वकील है क्या, हमारे वकील आकर कोई ये कह रहे हैं कि आए हम आपको फ्री प्रोसेस में आपको मशवरा देते हैं, हम गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, हम आपके कल्चर को ठीक करते हैं। नहीं राजा साहब, यहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इतने ज्यादा मसाइल हो गए हैं कि आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उन पर बात करूंगा, क्योंकि ये मसाइल जो है अभी हमारे दीनी मसाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, लेकिन हमारे लोग ये कहते हैं जी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी राजा साहब।
0: शाह साहब आपने तजिया करके बताया, तो शाह साहब आपने सियासत की बात की कि सियासत हम लोग यहाँ की नहीं करते, आपने इशारतन कहा वहाँ की सियासत करते हैं, कि हालांकि उसका कोई फ़ायदा होता या नहीं होता हम नहीं कहते, लेकिन जिनके पास अथॉरिटीज़ होती है उनको तो फ़ायदा होता है कि जब आप लीडरों को 45-45, 40-40 लाख के, 15-15 लाख के, 10-10 लाख के, 17-17 लाख के जब तोहफे देंगे, टेलीफोन की शक्ल में होंगे या किसी और शक्ल में होंगे, तो वो आपको तो वेलकम करेंगे, आपको चाय पानी भी बताएंगे पिलाएंगे, लेकिन उस लीडर का, उस पार्टी का क्या रह जाता है कि जो रिश्वत की बुनियाद पर जिनके लीडर इस तरह की रिश्वत लेते हैं, तो शाह साहब क्या यहाँ रिश्वत दी जाती है यहाँ की पार्टी लीडरान को? सामान्य नाज़रीन हमारा रابطہ जो है वो मुनक़त हो गया, दोबारा जब भी बात होती है इस तरह की तो हमारा रابطہ जो है वो मुनक़त हो जाता है, दोबारा हम रابطہ कायम करने की कोशिश करते हैं, जो ही हमारा शाह साहब से रابطہ हो कायम होता है तो शाह साहब से दोबारा ये बात करेंगे। शाह साहब जब भी बात करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई जो है सिग्नल जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो जो ही हमारा दोबारा रابطہ शाह साहब से हो जाता है तो शाह साहब से लगता है कि हमारा रابطہ शाह साहब से हो गया। शाह साहब आपका रابطہ कट गया था
1: जी, मुझे नहीं समझ आ रही, ना मुझे कोई कॉल आ रही थी ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो हमारे इस वक्त अख्तियार से बाहर है, क्योंकि ये चीजें जो है कि आजकल कुछ ममालिक में बैठ के हमारे नंबर जो है डेनिश नंबर ये यूज किए जा रहे हैं और ये कंप्यूटराइज है ये नंबर, और जब आप एक दफा इनको हेलो कर देते हैं या इनको इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है वो आपकी सारी जो डाटा है आपके एक टेलीफोन के अंदर वो निकाल लेता है। तो ये मैंने अलग
0: लोग आवाज क्यों नहीं उठाते यहाँ के, कुछ भी नहीं कर उठाते यहाँ की हुकूमत क्यों नहीं आवाज उठाती?
1: ये हुकूमत के ये सियासतदानों का काम है कि वो इस पे एक्शन ले, यहाँ इसके ऊपर जो है वो बड़ी से बड़ी जो कंपनी है उन सब ने इनको पुलिस मेल भी किया, उसके बावजूद कुछ नहीं हो सकता कि वो कहते हैं कि ये जी ये मशीनें हैं, कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई कहता है जी किसी मुल्क से हो रहे हैं, कोई कह रहा है जी कहाँ से हो रहे हैं, तो ये पीछे से जो कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हैं इनके तक ये पहुंचना चाहिए कि हमारे डेनिश नंबरों पे ये कॉलें कैसे आती है, ये किस्सा हमारे टेलीफोनों को सुन रहे हैं। यकीन कीजिए कि मैंने 2 दिन जो है मुतवातर अपने टेलीनोर को टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि यह है, फिर उन्होंने बिल्कुल इसको नुल स्टिल किया, यानी कि इसको जो फैब्रिक नोट सिल होता है वो इसको मेरे टेलीफोन किया और फिर मेरे जो इंफॉर्मेशन थी वो दोबारा इसके अंदर मेरे टेलीफोन में डाली और उनको कम से कम 1.5 घंटा लगा इस प्रोसेस के अंदर।
0: तो वो कहने लगे अगर हमारे सियासतदान है ये बोलते क्यों नहीं,
1: ये इनका काम है ना, ये आवाम का काम है। जब आप इनको वोट देते हैं, जब आप इनके खाने पे जाते हैं तो आप इनसे ये बात नहीं करते, आप वहां पे बैठ के टोलियों की शक्ल में आप अपने गांव के राग लाते हैं, आप अपनी अपनी बात करते हैं कि मैं फलाना गया था पाकिस्तान लिए आया फलाना आया इसके लिए, तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके चले। आपको पता है कि इस वक्त मुहर्रम है और आज 5वीं मुहर्रम का दिन है और रात 6 होगी, तो आपको पता है कि इस दफा इन्होंने मुहर्रम के अंदर भी पहले 7वीं 8वीं मुहर्रम को यहाँ पे जुलूस निकलते थे नहरबड़ों में, तो इस दफा उन्होंने जुलूस निकलने की ममानत कर दी है, पुलिस ने इजाजत नहीं दी और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से ये 10वें वाले दिन जो अशूरा का जुलूस निकलता है इसकी इजाजत जो है वो चंद एक अरबियों को मिली है और उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को इजाजत नहीं हम दे सकते, आप बड़ा जुलूस नहीं निकाल सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने आपको ये अखबारों के और जो फेसबुक की कटिंग थी ये मैंने आपको रवाना की थी पिछले हफ्ते, उसके अंदर वाजा तौर पे फेसबुक ग्रुप है एक जो मुसलमानों के खिलाफ है और उन्होंने कहा कि ये अगर उस दिन निकालेंगे तो हम नारोप्रो और ये मुल्क हमारा है हम इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो इसी तरह आप देख रहे हैं कि वो
0: शासा फिर बदनामी किसकी होगी, हम वो काम ही ना करें जिसे हमारे ऊपर ज्यादा है।
1: देखिए जी जो हमारे आलम जिनको हम आलम दीन कहते हैं जिनको हम मौलाना हजरात कहते हैं जो उनके साथ रिलेटेड जो लोग उनके साथ कमेटियों में बैठे हुए हैं उन लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो इस बात को जो आज जिस नेच पे हम पहुंच चुके हैं जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं ये इनकी नेगलिजेंस की वजह से हुआ है, ये इन्हीं की खराबियों की वजह से हुआ है। और जी असि सब कुछ जान रहे हैं, साढ़े 2 काउंसलर हैं जी बस वो हमें बता देते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आज ये नौबत पहुंच चुकी है कि आप देखें कि मनाजुल कुरान के मौलवी को उसकी नेशनलिटी मंजूर हुई उन्होंने खत्म कर दी। इसी तरीके से उन्होंने यूलैंड में 3-4 की कैंसिल की, उन्होंने काफी लोगों की जो नेशनलिटीज हैं वो वापस मंगवा ली है और अब ये जो मजहबी तौर पे ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी। अब आप ये बताएं कि जब आप कल्चर सेंटर का नाम लगा रहे हैं तो कल्चर सेंटर की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कल्चर सेंटर को किसी वक्त भी बंद किया जा सकता है। हमारे लोगों को डेनिश की 0.0 पॉइंट मैं कहूंगा, मुझे गालियां दे जो मर्जी करे लेकिन मैं ये कहूंगा इनको समझ नहीं कि आईन क्या कहता है। भाई आईन ये कहता है आप डेनिश जबान बोलते हैं आप डेनिश जबान समझते हैं लेकिन आप आईन को नहीं समझते। आईन ये कहता है कि अगर आप देखे यहाँ पे एक चर्च है उसकी हिफाजत गवर्नमेंट का काम है, उसकी जितनी भी काम उसके अंदर बाहर होता है उसका हिसाब किताब गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है पैसे उसके अंदर जो लोग आते हैं जैसे भी उसकी सफाई हर चीज मरम्मत का काम जो है वो लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट करती है। इसी तरह यहाँ सिनेगल्स बने हुए हैं यहूदियों के, उनको जो है वो जो उनकी जो सफाई मरम्मत है वो सारी गवर्नमेंट करती है। हम लोग जो है हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 मस्जिदें जो है मुसलमानों की वो रजिस्टर्ड है, बाकी जो है वो सारे के सारे कल्चर सेंटर। लेकिन वो कहते हैं जी वो छोड़ो जी तानू की पता असी मस्जिद ही हैं, जे अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर नहीं है, अल्लाह का घर है तो फिर लिखो कि अल्लाह का घर है, कल्चर ना लिखो। हमारा हमारा इस कल्चर से कोई तल्लक नहीं है, हमारा एक दीन है, हम एक दीन के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, उस दीन को लेके आगे चले। वहां पे आपका फिरका जो भी है उसको आप एक साइड पर रखें, पहले अपने दीन को तो यहाँ जो है उसका सर्टिफिकेट ले वहां उसके ऊपर बात करें और इसको आगे लेके चले। तो ये लोग ये बात नहीं कर रहे जिससे जो है अब बात बहुत तो ज्यादा।
0: साहब यहाँ की जो सियासत है यहाँ की सियासत पर आपको क्या कोई आपका जिंदगी का तजुर्बा क्या कहता है कि इन लोगों को कैसे रागब किया गया है कि ये यहाँ की सियासत करें, यहाँ के आह्वानों में जाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने हकूक के लिए बोलें। यहाँ साहब शाह साहब आप देखें ना किसी के पास जमहूरियत की ताकत है उसे कोई रोक सकता है?
1: देखिए अगर हम यही कोशिश करते रहेंगे कि हमें एम्बेसी में परेजाई होगी, हमें बड़ी बड़ी महफिलों में शादी ब्याह में बुलाया जाएगा जी कि हम लोकल काउंसलर्स हैं, हमारी इज्जत होगी, रिस्पेक्ट होगी। तो इसको ये फजूल है, आपको अवाम का नुमाइंदा बन के इसके लिए काम करना पड़ेगा। आप बाहर आए, लोगों को इन्फॉर्म करें, आपने जिनसे वोट लिए हैं कम अज कम उन उस इलाके के लोगों को ये तो बताएं कि भाई हमारे कम्यूनों के अंदर क्या क्या कौन कौन से कानून लागू है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ के जो अब गवर्नमेंट्स हैं एसआर में तब्दीली आ रही है, सोशल डेमोक्रेट के अंदर भी तब्दीली आ रही है, और सोशल डेमोक्रेट के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा तब्दीली आ रही है कि वो अब जो है वो जो यंगस्टर्स हैं वो काफी तब्दील होकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है इसको वापस लाएंगे। एक तकबा कह रहा है कि हम इसको लाएंगे वापस जो पुरानी सोशल डेमोक्रेट थी, और एक जो इस वक्त रूलिंग तकबा है वो ये चाहता है कि हम पावरफुल हैं, हम ही रहेंगे और हम ही हर सूरत में जिस तरह भी हमें ये गोभी मूली यानी कि पॉलिटिक्स में जो भी हमने बेचना है, फॉरनर्स के खिलाफ बात करनी है, मुसलमानों के खिलाफ बात करनी है या किसी और के लिए बात करनी है, तो हम जिस तरह भी है वोटर को मुतमिन करके हम इसके ऊपर छाए रहे। तो इस तरीके से हुकूमतें नहीं बनती।
0: यहाँ पे मुसलमानों का सिर्फ मुसलमान लेना, नाम लेना ही तो काफी नहीं होता। कमर बात को मुसलमानों की बात, आपकी बात में बड़ा वजन है शाह साहब, इस बात को मैं खबर की शक्ल में भी दे रहा हूँ कि सोशल डेमोक्रेट अपनी बाकायदा तैयारी कर चुकी है कि वापस अपने सोशल डेमोक्रेट के पुराने दौर में वो नौजवान बच्चों को तैयार कर रही है। आपकी बात खबर ठीक है।
1: देखे ना यही चीज है कि अगर आप इनको देखते हैं कि क्या हो, आप देखें कि ग्रीनलैंड का क्या हुआ है, कल ट्रंप ने और उसके जो नायब सदर है उसने ये वाजा कर दिया है कि ग्रीनलैंड जो है ये ग्रीनलैंड ये हमारा है। उन्होंने उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डेनमार्क का है, उन्होंने कहा ये हमारा है और हम इसको ये भूल जाएंगे डेनमार्क वाले। तो हमारी गवर्नमेंट जो है ये क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों इतना सरमाया यूक्रेन के अंदर और दूसरे ममालिक के अंदर लगा रही है, अपने यहाँ के जो हमारे बेकार पड़े हुए लोग जो यंगस्टर्स हैं इनको क्यों नहीं अपना फोर्सवा में इनको जॉब देती है, इनको लेके जाते हैं, इनको जाके ग्रीनलैंड में सेटल करें, इनको फैमिलियों को पैसा दे, इनको अच्छे से अच्छे कामों पे वहाँ जॉब पे लगाएं। देखिए वहां पे आगे भी पाकिस्तानी रह रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर, वहां पे काफी
0: इसका हाल तो जमहूरी तरीका ही होता है ना। देख रहे ना आप, शहर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, सारे कम्यूनों में को आप जानते हैं। अगर आप कोपेनहेगन शहर की बात कर रहे हैं तो अगर आप जाएं तो वहाँ गाड़ी चलाते वक्त आपको पार्किंग नहीं मिलती, आपको किसी जगह भी आपका कानूनी हक है, आप जो रोड टैक्स पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी लाइसेंस एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन उसके बावजूद जो आपका हक है आपको पार्किंग नहीं मिलती। तो शाह साहब कहीं से कोई आवाज़ उठी, कोई बंदा खाली बयान देने से सारे काम ठीक नहीं हो जाते, कोई ऐसा जमहूरी हक हुआ, किसी ने जाकर टाउन हॉल के सामने अपना हक मांगा हो, किसी तंजीम ने, किसी सोसाइटी ने, किसी सियासी जमात ने, किसी डैनिश सियासी जमात ने, किसी पाकिस्तानी लोकल सियासी जमात ने या गैर मुल्कियों ने कोई ऐसी बात की, हर वक्त शाह साहब जो इन्वायरमेंट बनी हुई है उसकी तरफ आप तवज्जो करें कि हम लोग सोच क्या रहे हैं।
1: देखिए ये हमारी सोच बहुत ही जीरो है, मैं खुला दिल से ये बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत रंज है अपने यंगस्टर्स पे और उन सियासतदानों पे जो जो डेनिश सियासत को अभी तक समझ नहीं पाए। वो यही समझते हैं कि हमें जुबान आती है और हम बहुत बड़े सियासतदान हैं, ये कुछ भी नहीं समझ सके। असल में मसला ये है कि सबसे ज्यादा वोट इनिशन को और एसएफ को दिए गए शहर के अंदर से, कोपेनहेगन के अंदर से, वेस्ट आइन के अंदर से, इन लोगों को सोशल डेमोक्रेट को इनको सबसे ज्यादा फॉरनर्स ने वोट दिया। क्या इन्होंने जो टैक्सियां चलाते हैं, बसें चलाते हैं, जो ये वाहन चलाते हैं, ये सारे फॉरनर्स हैं, क्या इनके लिए कोई सहूलत इन्होंने रखी, जैसे आपने अभी पार्किंग का कहा, ये सड़कें इन्होंने तंग करके अपने साइकिलिस्टों के लिए इन्होंने सब कुछ काम कर दिया है। इन्होंने साइकिलिस्ट जो है, जो साइकिल वाले हैं, उनके लिए इन्होंने बहुत काम कर दिया है। अब आप ये देखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, बाइक है, ये इससे इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने ज्यादा बूढ़े लोग और दूसरे साइकिलिस्ट जो है वो हादसे में जख्मी हुए हैं, कारों के साथ ये टकरा जाते हैं, लेकिन नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं। जहां भी प्रॉब्लम है, कार वाला प्रॉब्लम है یا وہ جو پیدل چلنے والا ہے وہ پرابلم ہے.
0: سائیکلسٹ کیا بات کرتے ہیں, ان کے لیے جگہ بڑی کی جاتی ہے, ان کو سہولیات دی جاتی ہیں, ان کو جو رائٹس جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے ان کو راستے میں اپنا فٹ پاتھ پہ بھی ان کو سب کو سہولتیں مل جاتی ہیں, زیبرا کراسنگ پہ بھی مل جاتی ہے, دائیں بائیں مڑنے میں ان کو سہولیات دی جاتی ہیں. اگر غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گاڑی چلانے والے کی غلطی ہے. تو شاہ صاحب یہ آپ شہر میں خود جا کر دیکھ لیں کہ سائیکلوں ہی کی وجہ سے شہر کی ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درم برم ہے.
1: اسی لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ گرونے ٹریفک, میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ اس کے اندر گرین ٹریفک جو یہ چلانا چاہتے ہیں, جو یہ الیکٹرک گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں, الیکٹرک بسیں چلانا چاہتے ہیں ود آؤٹ ڈرائیورس کے, اس کے اندر بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں اور یہ اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے. ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہر ایک چیز ہے, ہم بیٹھے ہیں ٹیسلا گاڑی یا کوئی بھی کمپیوٹرائز گاڑی ہمارے پاس ہے, ہم سٹیئرنگ پہ آگے فرنٹ پہ ہمارے کوئی توجہ نہیں, ہم بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم موبائل پہ بات کر رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا نہ خاصا سڈنلی کوئی بندہ باگے آگے آ جاتا ہے, گاڑی خود آٹومیٹکلی بریک نہیں مار سکتی, اس کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ایک آبجیکٹ آپ کے سڈنلی سامنے آ جاتا ہے تو آپ کے پاس آپ تک ہر گاڑی جو ہے بے شک اس کے اوپر آپ ڈرائیور بھی ہیں, جب تک آپ کے آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں, آپ کے ہر جگہ سے فوکس, یہ کہتے ہیں جی فوکس, اس کے باوجود جو سویڈن نے اب کلیئر کیا, اس سے پہلے ناروے نے کلیئر تھا, اس سے پہلے دوسرے ممالک نے کیا, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ ہمیں جو اسلامک ذاتی لوگ ہیں ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. یہاں پہ ہمارے ڈی ایم یو ہے یا ہمارے ڈی ایم سی ہے, ڈی ایم سی آئی ہے, یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ کیوں اپنی نظریات میں خود ہی گم ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, ہم کیا کریں؟ دیکھیں جب قانون بنتے ہیں تو وہ آپ کی اسی خاموشی کی وجہ سے قانون بن رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو دباؤ, ان قوانین کو بنانے کے پیچھے کون لوگ ہیں, یہ سب کو واضح ہے کہ کون یہاں پہ پاورفل ہے, کون یہاں پہ ماپ چاہتا ہے, کون یہاں پہ طاقت چاہتا ہے. تو جب تک آپ ان کو تنگ کیے بغیر اپنے آپ کو پاورفل نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنا مسائل لے کر نہیں آئیں گے. میں نے آج تک کبھی بھی کسی ڈبیٹ کے اندر کبھی بھی کسی بندے کو یہ سنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ چیز جو ہے یہ خلاف آئین ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ لا فورسز لے کے آیا یہ غلط ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہے, جی ہم سب کچھ کر لیں گے, اور خود جو ہے وہ ان کی کوئی رسائی تک نہیں ہوتی. تو یہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ینگسٹر جتنے بھی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں البرٹ روڈ کمیون میں دیکھ رہے ہیں, آپ ویدوور میں دیکھ رہے ہیں, آپ کوپنہیگن میں دیکھ رہے ہیں, کیا یہ باہر نکل کے ان سڑکوں کے اوپر جب یہ منظور ہوتے ہیں, یہ بل منظور ہوتے ہیں تو یہ ان کے باقاعدہ کمیٹیوں سے منظور ہو کے آتے ہیں, ان کے سامنے ان کی فورس لے رکھی جاتی ہے کہ اب ہم فلانی فلانی سڑک کو تنگ کرنے جا رہے ہیں. کیا جی بہانہ کیا جی, وہاں پہ اسکول ہے, وہاں پہ بچے, اب بچے جو ہیں وہ پیدل تو چلتے نہیں ہیں, وہ تو جاتے ہیں کاروں میں آتے ہیں, کاروں میں بیٹھ کے چل جاتے ہیں, اگر وہ بائک چلاتے ہیں تو وہ بائک جو ہے ان کے لیے سیکورٹی بہت بڑی ہے, وہ تو اس کے اوپر آسانی سے چلے جاتے ہیں. اور یہ کتنے گھنٹے کا کام ہوتا ہے, یہ ایک گھنٹہ صبح ایک گھنٹہ دوپہر کو, یہ شام کو جب وہ گھر میں جاتے ہیں, باقی تو سڑکیں تنگ ہوتی ہیں اور جب لوگ ٹریفک کے اندر پھنس جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اتنی کھدائی ہو چکی ہے, اتنا وایا آبائڈ ہو رہی ہے پورے کوپن ہیگن کے اندر, آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ ٹائم پر پہنچ نہیں سکتے. میں اگلے دن جا رہا تھا, کیا نام ہے, میں نے شہر جانا تھا تو میں جا رہا تھا, تو میں وائلنٹ سلی کے اندر سے میں جب کیا تو مجھے وہ اس کے اندر سے مجھے گزرتے ہوئے اتنی تکلیف ہوئی اور دوسری جگہوں سے کہ بھائی میں کیا کروں, وائلنٹ سلی بالکل اما میں بند تھی. اور
0: شاہ صاحب کیا کہیں سے آواز اٹھی ہے کہ گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے؟
1: جی بالکل, یہ اسی لیے تو یہ سائیکلوں کو لا رہے ہیں, یہ اسی لیے تو آف روڈ ٹرانسپورٹ کو لا رہے ہیں.
0: سائیکلوں سے بھی تو زیادہ رش ہوتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. چھوٹی گاڑیوں کو شہر میں رکھے ہیں, بڑی گاڑیاں کیوں شہر میں رکھتے ہیں؟ اسی طرح اجازت کیوں دیتے ہیں, اگر ملک گاڑی کی سپیڈ آپ شہر کے اندر 30 یا 40 میکسیمم رکھ سکتے ہیں تو آپ گاڑی وہ کیوں آتی ہے شہر میں کہ 200 کلومیٹر کی سپیڈ پہ, 250 کلومیٹر کی سپیڈ پہ؟ دنیا کی ماڈرن ترین اور بڑی گاڑیاں شہر میں گھوم رہی ہوتی ہیں, وہ جو کہتے ہیں جی الیکٹرک ہے, اجازت ہے, پیٹرول کی گاڑی نہیں ہونی چاہیے, ڈیزل کی बड़ी गाड़ी नहीं होनी। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी को शासा में इजाजत है तो वो भी तो छोटी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से बड़ी गाड़ी है, बजरी गाड़ी है, लेकिन मसाइल जो है ये किसने हल करने हैं? ये हल करने हैं कि आप वहां पे फोर्स लेके जाएं, आप वहां पे उनसे बात करें। यहाँ पे बड़े बड़े दिन होते हैं, हमारे लोग बच्चों को लेके अपनी समर फेरिए पे आगे पीछे जाते हैं और किसी ने, अब एक मैं ये सुन सुन के तंग आ गया हूँ जी, मैंने फलाना आर्टिकल लिखा, मैंने फलाना आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल्स के ऊपर ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ऑलरेडी जो बैठे होते हैं अच्छे आर्टिकल्स के ऊपर डिबेट करने के लिए, वो आपके ऊपर लिखते रहते हैं, और 90% जो लोग हैं वो ऐसी डिबेटों को फेसबुक को और दूसरे सोशल मीडिया को पढ़ते ही नहीं है। वो कहते हैं जी ये हमारे पास की बात नहीं। उनके लिए क्या है? उनके लिए यह है कि रेडियो, उनके लिए है मीडिया जो वॉइस है। अभी मैं गाड़ी चला के कहीं जा रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया को सुन नहीं सकता, अपना वॉइस मेल जो है वो सुन सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, मैं उसको बिल्कुल कोई कमेंट्स नहीं लिख सकता। लिहाजा अगर मैं सुन रहा हूँ, रेडियो को सुन रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मैं उसको मेरा जेहन जो है, मेरा दिमाग जो है वो काम करेगा, मैं उसको सुनता रहूंगा कि ये बातें हुई। लेकिन क्या हमारे लोगों ने ये सोचा है कि आज ये फलाने के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा? आप देखें कि बेलफास्ट आयरलैंड में क्या हुआ, वहां एक सूडानियन अफ्रीकन ने एक बंदे का गला काटा तो वहां पे कितने हजार लोगों के घर जला दिए गए और कितने सौ लोगों को जख्मी कर दिया गया। तो क्या ये वहां इतनी बड़ी गवर्नमेंट जो है उसको आयरलैंड के अंदर, बेलफास्ट के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर सकी? तो ये जब हादसा होते हैं तो ये लोगों को जब आप तंग करते हैं, मैंने ये देखा है कि हमारे जो ये राजा साहब, यकीन करें आप भी गाड़ी चलाते हैं, बाद ये जो हमारी वाहन होती है ना 3500 का किलो वाली, ये इनको देखा कि जो इन्होंने बीच में वो रेड बैंड बनाया होता ना, जिसके ऊपर कोई एमरजेंसी हो तो आप गाड़ी खड़ी कर सकते, ये उसके आगे लाइनें लगी हुई है, उसके ऊपर से क्रॉस करके जो आगे फ्रंट पे चले जाते हैं। और इतना खौफ आता है कि अगर ये किसी दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी से टकरा जाए या किसी कोई बच्चा भाग के सड़क क्रॉस करता हो तो उसके नीचे नहीं परवाह, टांगे रखी हुई है डैशबोर्ड पे, सिगरेट पी रही है, टेलीफोन लगाया हुआ है और कानों से, और फिर कहते हैं जी कि ये कौम जो है ये बुरी है।
0: शाह साहब एक चीज को देखें आप, हर जगह खाने पीने की चीजें मिलती हैं, हर कोने खतरे में, हर स्टोर में अब खाने की चीजें, अब होटल बन गए हैं, सारा कुछ बन गया, जहाँ भी स्टॉल वगैरह लगते हैं लोगों का रश होता है, सब कुछ होता है। और उसके बाद शाह साहब आपने देखा कि स्टालों पे एक ही दस्ताना पहना होता है दोनों हाथों में, और उसके बाद एक ही कलर का, एक ही जो ट्रेड का पहना होता है, वो हर जगह वही हाथ मारते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी दस्ताने से सारे काम करते हैं। तो शाह साहब बैक्टीरिया होता क्या है?
1: इनसे कभी पूछेंगे, इन्होंने हाइजीन कोर्सेज किए हैं क्या वहां पे? इन्होंने जाके तो ये चीजें सीखी हैं कि भाई हम कितने कोर्सेज पे जाएं, हमने किस तरह पानी किस तरीके से हाइजीन को खत्म करना है। आपको ने बात किया तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि पिछले हफ्ते बहुत बड़ा एक जगह पे एक बाजार के अंदर छापा पड़ा, तो वहां पे सुंडिये जिसको कहते हैं, वो गोश्त के ऊपर, मुर्गी के गोश्त के ऊपर आपको मैंने भेजी थी वो अखबार की कटिंग जो उन्होंने गवर्नमेंट ने भेजी है, 75,000 को जुर्माना हुआ और जितना भी गोश्त भरा था वो सब कुछ उसका हर चीज उठा के ले गए वहां से, वो उसको लाखों का नुकसान हो गया। तो ये क्या करते हैं, उसका कीमा बना लेते हैं। आप कभी जाएंगे गोश्त वाली दुकानों पे, ये जो पलड़े जिसको कहते हैं और दूसरे गोश्त जो आपके वो उतारते हैं, आप रान लेते हैं या कोई चीज लेते हैं बकरा साहब का, उसके वो ऐसे करके टेबल पे फेंकते जाते हैं, उसके साथ कितने वायरस और जरासीम जो है वो लग जाते हैं। अगर वो जमीन पे गिर जाता है तो उसको ये वॉश नहीं करते, धोते नहीं, उसको डाल के तो उसकी कीमा बनाकर ये जो है वो सस्ता कीमा बेचते हैं। मैंने जिंदगी में एक दफा इस तरह का एक पाकिस्तानी दुकान से मैंने देखा, तो ईद के दिन वो हरा नीला ये कीमा निकाल के तो उसको जब मशीन में डाल रहे थे तो वो आगे से रेड होके निकल रहा था, तो मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा आज के बाद میں کبھی بھی قیمہ ان سے نہیں لوں گا بلکہ خود گوشت لے کے خود قیمہ بنوا کے لے کے جاؤں گا. اور اس دن سے اور ان کو میں نے کہا کہ یار میرے ایک دوست کو میں نے بات بتایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ان کی دعوت کر دی کہ آؤ ہمارے گھر آ کے کھانا کھاؤ. تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو قیمہ ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ ہم کس طرح قیمہ بنواتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کہنے نہیں ہم قیمہ نہیں کھائیں گے, ہم دوسرا دال چال کوئی آیا تو دوسری چیز ہم کھا لیں گے, یہ نہیں کھائیں گے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کس طریقے کا قیمہ وہ بیچتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ حرام چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی جنت کا رستہ نہیں بنے گا, یہ سب سے بڑا یہ رستہ ہے جو رکے گا.
0: لیکن شاہ صاحب الحمدللہ مسلمان تو کہتے ہیں نا,
1: ہزار دفعہ کے آپ نمازیں پڑھیں کلمے پڑھیں جو مرضی, لیکن جب آپ حقوق العباد کے اندر یہ دھوکہ دہی کریں گے آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی جنت کا رستہ آپ پا نہیں سکتے.
0: شاہ صاحب جس ملک میں میر جعفر جس کمیونٹی میں میر جعفر میر صادق جیسے لوگ ہوں, کتنا بھی ملک اسٹیبلش ہو کتنے بھی لوگ سمجھدار ہوں لیکن اس کے اندر میر جعفر صادق ہوں تو کیا وہ ملک چل سکتے ہیں؟
1: دیکھیں جی ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک کو نقصان تو ہوتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, اور انہی کی وجہ سے ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر دوسرے لوگ چھا جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر جب آج سے 10 سال پہلے وہاں پہ یہ ووٹنگ ہوئی کہ آپ نے یورپین یونین میں رہنا یا یورپین یونین سے باہر نکلنا ہے, تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو یورپین یونین کی مخالفت کی گئی وہ فارنر نے کی, اس کے اندر پاکستانی بھی شامل تھے انڈین بھی دوسرے سارے, انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ بڑھ چڑھ کے دیا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے ہم یورپین یونین کے ساتھ ہی رہنا چاہتے. لیکن اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت سے بھی ہے ہم واپس جائیں یورپین یونین کے اندر, اس وقت 57-58% لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردست جو ینگسٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یورپین یونین سے باہر رہنے سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہماری اکنامک حبجہ ختم ہو رہا ہے, ہمیں ہمارا ستیہ ناس ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل ان کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو اتار دیا جائے. اس کو پارٹی نے کئی دفعہ کہا کہ تم ریزائن کر دو لیکن پرائم منسٹر ریزائن نہیں کر رہا, لیکن رات کو اس کے اوپر کافی مسائل اٹھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں وہ اس کو زبردستی پارٹی کے فارمل شپ سے اتار دیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں, وہ اس طرح میر جعفر صادق بنتے ہیں اپنی قوم کو نقصان ضرور دیتے ہیں. یہاں ہمارے ڈنمارک میں میں اپنے ینگسٹر سے یہی بات کروں گا, اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمیں معمولی بات پہ ہمیں نشانہ بنائیں ہمیں یہ کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم آگے آئیں. اب جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم فلانے ڈیلیگیشن کے اندر گئے ہم نے جا کے فلانی جگہ پہ اسلام کی بات کی فلانی, پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں یا ہم پورے مسلمانوں کی بات. مسلمانوں کی بات جب ہوتی ہے تو وہ دین اسلام کی بات ہوتی ہے, وہ قرآن کی بات ہوتی ہے. کیا ہم اسلام کو یہاں رجسٹرڈ کرانے میں ہم کامیاب ہو سکے؟ میں کہتا ہوں زیرو. آج تک ہم لوگ یہاں پہ اسلام کو رجسٹرڈ نہیں کرا سکے, کیونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہم فرقوں میں اور دوسرے کلچر سینٹر کیا ہے؟
0: کیا سب سے وجہ تو یہ تو نہیں ہو سکتی, آپ دیکھیں جتنی بھی تنظیمات بنی ہوتی ہیں سیاسی کہہ لیں مذہبی کہہ لیں تو لیکن ان کے گرو یہاں نہیں ہوتے, ان کے گرو باہر بیٹھے ہوتے ہیں.
1: بالکل ہی ان کے جو گرو باہر بیٹھے ہیں وہی گرو تو ان کا ستیہ ناس کر رہے ہیں, ان کو تو پیمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے, ان کے گرو دیکھیں جہاں دل چاہے جائے جس ملک میں جائے ان کو اسائلم مل جائے گا, وہ جا کے رہتے ہیں ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں سب کے, لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کچھ چیز نہیں ملتی. انہوں نے بجائے یہاں پہ یہ شکر کرنے کا کہ ہمیں ایک اللہ کا گھر بنانے میں, دیکھیں یہاں پہ وہاں پہ کلچر سینٹر ہے وہاں پہ امام باغ ہے, کون سی سوائے دو مسجد کے, ایک علی مسجد ایک قتل والوں کی, کون سی مسجد یہاں پورے ڈنمارک کے اندر رجسٹرڈ ہے مسلمانوں کی؟ کوئی نہیں. اب یہ کون سے ہیں کہ وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب فرقوں میں جب آپ بٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایک پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں وہ یار میں امریکہ والے مسجد کو کیوں آگے آنے دوں, وہ کہتے ہیں جی البسرو مسجد کیوں آگیا ہے, عیسائی مسجد کیوں آگیا ہے, وہ جی علی مسجد کیوں. یہ جب تک یہ اتفاق نہیں کریں گے ये इसी तरीके से
0: ये सब अल्लाह के घर हैं, बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन इसमें यकजहती होनी चाहिए।
1: ये अलग घर नहीं है, ये अलग अलग अलग का घर तो मेरा घर भी है। मैं इधर डेली नमाज पढ़ता हूँ, मैं पांच वक्त तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, पांच वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ। हर बंदा जो है वो अपने घर में अल्लाह की नमाज पढ़ता है। ये जब तक आप उसको

0: करना चाहिए, वो करते हैं सारे इसी तरह, अपना अपना निज़ाम चलता रहता है। तो आपको पता है कि गर्मियों के महीने में आमों का बड़ा ज़ोर होता है, आप पाकिस्तान से लेकर दुनिया में जहाँ जहाँ ये आम पैदा होते हैं उसके फेस्टिवल होते हैं, और ख़ासकर चंद सालों से डेनमार्क में भी ये फेस्टिवल होते हैं, और ख़ासकर ब्रांडबी में जो सियासत का ज़ोर है, कोपेनहेगन से टूटा, एडमसरुंड में मुंतकिल हुआ और उसके बाद ब्रांडबी में मुंतकिल हुआ, तो ये जो समर फेस्ट होती है जिसे हम कहते हैं, मेला कहते हैं, पार्टियां कहते हैं, तो ये बड़े ज़ोर शोर से होते हैं। तो 27 जून को ये एक ब्रांडबी में जो है वो समर फेस्ट होने जा रहा है, जिसे मैंगो के नाम से, स्टॉल के नाम से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग स्टॉल लगाते हैं, अपनी जगह के लिए रिज़र्व करते हैं, स्टॉल अपना लगाते हैं, खाना बेचते हैं। तो पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जब आप स्टॉल लगाते हैं, सफाई का निज़ाम होता है, सफाई या मुफ्त तो नहीं होती, हर काम जो है वो पैसे से होता है, और आपको पता है अच्छी खासी जो है वो सैलरी मिलती देनी पड़ती है जो बंदोबस्त करने वाले होते हैं। स्पॉन्सर कितने होते हैं? स्पॉन्सर बहुत कम लोग होते हैं, हमारा रिवाज ही नहीं है। कोई स्टॉल लगाता है तो वो मिनिमम कीमत जो है उस पर लगाते हैं, तो इनकम तो स्टॉल लगाने वाले की होती है, स्टॉल देने वाले की इनकम तो नहीं होती। तो हमने कहा क्यों ना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें। तो वही साहब इस वक्त जानी पहचानी शख्सियत हैं, ये किसी तारफ के मुताज नहीं है, पूरा कोपेनहेगन डेनमार्क इनको जानता है, अपने काम के लिहाज से भी, मस्जिद के हवाले से भी। तो वही साहब एक बार फिर आपको हम मदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं, काफ़ी अरसा बाद।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है ना फ़ोन किया और इसमें दावत दी, क्योंकि आपकी बातें मैंने सुनी है। मैं काफ़ी अरसे से कम्यूनिटी में इसमें जो ब्रॉनवी में रैश पजीर हूँ, तो जब मैं मस्जिद में बैठता हूँ, मस्जिद में दोस्त आते हैं, तो मुझे ये एहसास हुआ कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल मिलना चाहिए जहाँ ये एक दूसरे से मुलाकात कर सकें और उनसे मिल सकें। तो ये 2-3 साल से मेरे दिन में आया हुआ था। तो पिछले साल मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा यार चलो मैं तो आज तक मैं करता रहा जो मुझसे हो सका, क्यों कि मैंने साथ साथ काम भी करना होता था, पीछे भी फैमिली है उनको भी सपोर्ट करना था, लेकिन मैं तुम लोग तो इधर के जो है बोन और इधर के पैदाइश तुम्हारी डैनिश है, तुम कोशिश करो कि इसको किसी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करो। तो मैं उस बेटे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इतनी मेहनत, पिछले साल उसने शुरू किया था और उसने मुझे बताए बिना कम से कम 25-30 हज़ार जेब से लगाया है, जनरेटर का बंदोबस्त किया, ऊपर से केबलें ली, ये तारें जो है कंटेक्ट किए, और जाके इस तरह उसने मुझे बाद में बताया कि अबू मैंने इतना खर्च किया। मैं कि चलो ये कम्युनिटी के लिए, उसमें हमें फायदा ये हुआ कि जितने भी लोग आए ना उन्होंने ये जब ये फेस्टिवल में शिरकत की तो हमारा जो है सारे का सारा जो है ना वो पूरा हो गया। जो मैं नुकसान नहीं समझता, मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो करना है वो किसी पे शान नहीं है, ना मैं खुद सियासतदान हूँ, ना मैं सियासत करूंगा। हाँ बेटे को इसलिए लेकर आया था कि क्योंकि काफी चीजें राय साहब बहुत कमी है इधर जो है ना हमारी छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि कोपेनहेगन बड़ा है लेकिन ब्राउन भी अल्पसम ईसा है, इधर हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए कि साल में एक दफा अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
0: वही साहब आपने बड़ा अच्छा किया, आपने 27 जून तारीख रखी है, ये जो ये महीना जो है इसी महीने में आपने रखी है, 27 जून की तारीख रखी है और उसमें स्टॉल भी लगे गए हैं। तो ज़रा इस स्टॉल के मतलब आमों के मतलब, चूँकि लोग तो सबसे पहले खाने की तरफ जाते हैं, तो खाने में जो सबसे आजकल गर्मियों में नाम आता है वो मैंगो का नाम आता है, तो आप क्या ये सारी तफसील बताएं किसके क्या अखराजात किस तरह होते हैं, कुछ जगह लेना चाहिए, अभी उसके पास टाइम है वो जगह ले सकता है, जिसका तरीकाकार क्या और कहाँ पे ये कर रहे हैं आप?
1: ये हम कर रहे हैं ब्रॉनबी स्टान में, 6 पे फा के नंबर 2 उधर लांगबिया हेलन के साथ फुटबॉल ग्राउंड में मिला है कम्यून की तरफ से, उसकी कोई कास्ट नहीं है, लेकिन जो हमने रखने ना गायों के लिए सफाई के लिए लोग रखने हैं, और जो है कि मोबाइल टॉयलेट लेनी है और कुछ चीजें जो है ना कि टेबल लेने हैं देने हैं जितने जिसने स्टॉल लगाना है, तो इस तरह हमने रखा है कि जो पहले 5-10 है उनको हमने 2000 रखा है, जो पीछे है उनको 1500 करोड़ रखा है, वो इसलिए क्यों कि अखराजात इतने आ जाते हैं जब हमने जाना सबको हायर करना, तो तो राय साहब ये जाके अपना आमों का जो है कि आमों का लगा रहे हैं देसी फूड स्टोर वाले तारक साहब लगा रहे हैं, तो अगर और कोई दोस्त लगाना चाहता है तो मेरे साथ या उधर लिखा हुआ टेलीफोन नंबर उस पर रब्ता कर सकता है। अभी भी चांस है क्योंकि ये 27 तारीख अभी दूर है।
0: तो जो सब आपने
1: तो
0: फुटबॉल का ग्राउंड लिया वहाँ तो अच्छी खासी तादाद में लोग आ सकते हैं, पार्किंग का निज़ाम जो है ठीक है, लोग बाहर से जाएंगे ज़ाहिर है फैमिली की शक्ल में जाएंगे, वो लोग आते जाते रहते हैं।
1: बिल्कुल राय साहब, पार्किंग का कोई मसला नहीं है उधर, क्योंकि हमने पिछली दफा भी जो है कि बाहर खड़े किए हुए थे ताकि लेबर को या जो है ना हमसायों को तकलीफ ना हो। तो दोस्त आए चाहे कोपनर से आए चाहे दूर से आए, पार्किंग का उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी।
0: क्योंकि ब्रॉन्डवी से भी लोग काफ़ी तादाद में आपके पास आएंगे और दूसरे शहरों से भी लोग आएंगे।
1: इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि राय साहब आपका मैं बहुत फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये कर रहे हैं प्रोग्राम। मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी अच्छा साथ मिल के ना अपनी जो है मस्जिद की कमेटी, पहले हम मस्जिद की तरफ से करते थे लेकिन इस दफा हम पीछे हो गए हैं, है साथ ही लेकिन मस्जिद के जो है ना वो सिर्फ है कि बच्चों को आगे कर रहे हैं क्योंकि यंग को कि यंग इसमें आए क्योंकि हम बूढ़े जो है ना कितनी देर चलेंगे, तो यंग को गाइड करेंगे और कोशिश करेंगे इससे अच्छे से अच्छा ग्राउंड अगर हमें पार्किंग की प्रॉब्लम इस दफा होती है हम किसी थोड़ी सी और जगह पे लेकर जो है ना जहाँ पार्किंग जितनी जितना ग्राउंड हमें मिले इतनी हमें पार्किंग मिले, यही कोशिश हमारी।
0: जो सब देखे ना आपके पास तो अभी सिटी काउंसलर भी हैं जो अपना जो है डिप्टी मेयर भी हैं मौजूदा भी सबका भी, तो अभी भी थोड़ा टाइम है, तो कम्यून वालों का क्या काम होता है, कम्यून वाले तो यही सहूलियात लेकर आपको देते हैं।
1: राय साहब आपने फिर वो दुखती राय पे हाथ रख दिया है। मैं आपको वो है क्योंकि देखो जो मैं एक तो एक मुझे बुरी आदत है कि मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को
0: और
1: तकलीफ हो
0: बोलना भी नहीं चाहिए, अच्छी आदत है, बुरी
1: नहीं
0: आदत
1: मैं
0: नहीं
1: ना
0: है।
1: नहीं मैं बच्चों को भी मैंने मुझे सिखाया हुआ कि झूठ नहीं बोलना, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन है कि मादरस के साथ हमें आज तक ब्रॉन्बी स्टैंड में किसी तरफ से भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो हमारे जो है ना आज तक जो काउंसलर आए हैं डिप्टी मेयर आए हैं उन्होंने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया ब्रॉन्बी स्टैंड में। मैं इस चीज का गवाह हूँ, मैं सामने बैठ के भी बात करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हम जो जो अधीर कर रहा है वो बाहर कम्यून में नहीं आ सका ना, कोई बात नहीं है लेकिन हमने पीछे नहीं हटना, हमने कोशिश करनी है अपनी कम्युनिटी के लिए, खास करके पाकिस्तानी नहीं है पूरी ब्रॉन्बी के लिए, उसमें डैनिश भी हैं तुर्की भी हैं, हमने एक रखा है इसके नाम इसको दिया हुआ है कि ब्रॉन्बी फेस्टिवल। तो हमें कोशिश हमारी कोशिश है कि ठीक है वो कर रहे होंगे लेकिन उन्हें क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं कोशिश की किसी किस्म की भी इनसे बात की है बस वो यही है कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, तो काफी चीजें हैं राय साहब वो जो जो जो इनके करने वाली हैं वो ये कर नहीं रहे।
0: जो सब ये तो कम्युनिटी का काम है, मैं एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन भी बात कहूँगा कि ये पब्लिक का काम है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है लोगों को सहूलियात चाहिए, कम्यून का काम है, ब्रॉन्डवी कम्यून का काम है, ये पार्किंग का ज़ाहिर कानून कायदे में वो बड़ी पावर होती है कम्यून्स के पास, जो पार्किंग का एक्स्ट्रा जगह भी होती है वो कुछ टाइम के लिए वो पार्किंग दे देते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है वो गालबन जो है वो 10 बजे अपना क्या नाम है 12 बजे से लेकर 9 बजे तक, रात 9 बजे तक तकरीबन 9 घंटे हैं, तो 9 घंटों में
1: जी
0: लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो मुश्किल तो वहाँ कोई नहीं रहता लेकिन लोग आते जाते रहते हैं, तो पार्किंग की सहूलत होगी तो सहूलियात होंगी तो लोगों को आसानी होगी जाते वक्त।
1: राय साहब ये तो आपने बहुत अच्छी बात की ना, क्योंकि देखो लोग ये आने जाने के लिए तो ठीक है उनके लिए लेकिन पार्किंग की जो है ना वो प्रॉब्लम है। मैं नहीं ये कहता कि नहीं है प्रॉब्लम, क्यों कि हम वो मसलन के ब्रॉन्बी के बिल्कुल अंदर है सेंटर में ये मेला लगा रहे हैं, तो कोशिश जो है ना जो हम कर रहे हैं ठीक है, जिनके जो हमारे जो है सांसददान है इधर ब्रॉन्बी में उनको चाहिए था कि ये हमसे हम ना करते कि वो करते हमारे लिए कि ताकि जी कम्युनिटी को फायदा हो, उन्होंने वोट दिए हुए हैं कि उनको जाके सहूलतें कोई मुहैया करें, किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरी तंजीम के साथ मिलके ब्रॉन्बी में साथ मिला के उनको कहें भाई आप आपने एक दिया हम दो करके देते हैं आपको, इसका क्या कहते हैं कि अगस्त में जो है कि या सितंबर में आप लोगों को लेकर देते हैं किसी इससे अच्छी जगह पे, ये तो ये इनका काम बनता है ना। तो रहा पार्किंग का, आप तो ये कहते हैं ना कि हमें पार्किंग मस्जिद की, मैं आप कितने सालों से हूँ, 2017 से मस्जिद की जो है ना इंतजामिया हूँ एज ए सदर, हमें तकरीबन हर फ्राइडे को ये प्रॉब्लम होती है। और हम कम्यून के साथ मेरी दो तीन मीटिंगें हो चुकी हैं मेरी पर्सनली जो है एज ए फोरमैन, तो मैंने उन्हें कहा कि हमें ये प्रॉब्लम है इधर कि आपके जो है कि नेबर जो ठीक है आपको शिकायत लगाते हैं कि ये पार्किंग हमारी पार्किंग इस्तेमाल होती है, आप इधर आके इधर मेरे पास आए आकर देखें। और मैं बुलाया भी उन्हें और आए भी हैं, मैंने कहा ये देखो कितनी गाड़ियां हम नंबर प्लेट के बगैर पार्क हुई हैं, मैं किसके पास शिकायत लेकर जाऊं। शाह साहब के साथ बात हुई, शाह साहब कहते मैं कम्यून से बात कर रहा हूँ, अरफान गिलानी से भी बात हुई है कि जी हमें ये प्रॉब्लम है जो है ना पार्किंग की मस्जिद की खास करके, जब क्योंकि हमारी वो क्या कहें कि 10 पार्किंग है जो जो नेबर ने हमारे ने वर्कशॉप वाले ने संभाली हुई है 24 घंटे, ये वो नहीं मुझे करा के दे सके मस्जिद की, वो पार्किंग मुझे नहीं सही करा के दे सके, 10 गाड़ियां जो बाहर खड़ी हो सकती है हमारी वो नहीं कर सकते, तो ये तो मेले का तो बहुत बड़ा इशू है। इधर तो कम से कम पिछली दफा भी 3-4 हज़ार लोग आए थे,
0: 3-4 हज़ार लोग बड़ी तादाद है। तो मैं अब आनेर अपील करता हूँ एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन, डिप्टी मेयर साहब हैं और दूसरे लोग जो कम्यून के मेंबर्स हैं ब्रांडबी में, ब्रांडबी की जो शहरी हैं, एक तो वो खुद कानून कायदे का एहतराम करें, जो नज़दीक हैं उन्हें तो गाड़ी ले जानी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो ज़ाहिर है उन्होंने गाड़ी पर ही आना है, बाहर से वो पहुँच नहीं सकते, तो उनके लिए सहूलियात होनी चाहिए। तो ये कम्यून का काम है जी अपना जो सब, ये आप नेकी का काम कर रहे हैं तो ये इन सबको मिलजुल कर करना है, ये कोई एहसान नहीं करेंगे। आपने कौन सा इलेक्शन लड़ना है?
1: नहीं, मैंने इलेक्शन ना लड़ा ना लड़ूंगा, क्योंकि मैं राय साहब मैं अपने आप को इस काबिल समझते नहीं हूँ, क्यों कि उधर जाकर बैठना खामोशी से अच्छा है कि मैं मस्जिद का काम कर रहा हूँ वो ठीक है, जाकर मैं उधर टेबल पे बैठ जाऊँ कोई पोस्ट लेके और बात ना करूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं पीछे ही रहूँ।
0: मैं इरफान गिलानी साहब, आप अगर सुन रहे हैं प्रोग्राम, अगर आपको इतला मिल रही है, शाह साहब अगर आप सुन रहे हैं आपको इतला मिल रही है, या बाकी लोग जो सुन रहे हैं जिम्मेदार हैं, ये पब्लिक के लिए एक प्रोग्राम हो रहा है, कमून में एक लीगल इजाज़त लेकर ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें जो है सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपने शहरियों की सहूलियत के लिए, सहूलियात के लिए शहरियों को भी एहतराम करना चाहिए कि जब पार्किंग करें तो कानून कायदे के मुताबिक पार्किंग करें, जो कमेटी है जो भी लोग ये कर रहे हैं उनके साथ तावन करें। तो हम तो इसकी हमायत करते हैं जी, ये जमहूरी मुल्क में अगर जमहूरी आपको राइट्स मिलते हैं तो।
1: राय साहब देखो जो दूर से आ रहे हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि उनको कोशिश, हमारी कोशिश है कि हमने एक दो आदमी खड़े किए होते हैं और वो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको फ्रीविली जो है ना वो खड़े होते हैं और लोगों को गाइड करते हैं प्लीज इधर नहीं उधर करें, और लोग सुनते भी हैं मानते भी हैं। तो ब्रॉन्बी के अपने जो है ना वो तकरीबन इसलिए ना, हमें थोड़ा सा बाहर मिला था 4 जुलाई का, तो वो फिर हमें इतला मिली के जो कार्य अल्बस रोड में, उन्होंने फोन किया कि भाई हमने आपसे पहले जो है कि कम्यून से जगह ली हुई है, आप कोई और दिन जाके रख लें। फिर हमने सोचा कि वो 19 को भी हो रहा है, अपना अंसर साहब करा रहे हैं, डीपैक वाले करा रहे हैं, तो ऐसा करें कि हमने इसलिए मजबूरी में 27 को लेकर आए हैं क्योंकि जगह जो है जगह की वजह से हमने फिर चेंज करना पड़ा, हमें सेंटर में आना पड़ा, वरना हमारी कोशिश थी कि थोड़ा सा बाहर ले, और हमें मिल भी गई इसी 4 तारीख को जो है ना वो बड़ी जगह, और पार्किंग भी कम से कम 3-4 हज़ार गाड़ी की पार्किंग मेरी थी क्योंकि वो फुटबॉल ग्राउंड के साथ स्टेडियम के साथ थी, ब्रॉन्बी स्टेडियम के साथ।
0: चलें जी,
1: तो इंशाल्लाह
0: कोशिश आप अपनी जारी रखें, जहाँ से हम भी जो है मालूमात देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक समर फेस्ट है, ये कोई कोई बिजनेस का कारोबार का तो ये फेस्ट होता ही नहीं है, ये तो एक आम पब्लिक का है जो है, वो लोग आते हैं स्टॉल लगाते हैं, किसी की मर्जी है खरीदें किसी की मर्जी है ना खरीदें, लेकिन आप लोग तो सहूलत दे रहे हैं, आप लोग तो ना कोई टिकट लगा रहे हैं आप लोग?
1: नहीं भाई साहब ना लगाया ना लगाएंगे ये, क्योंकि हम इस दफा भी इसलिए लगाया खाने वाले के स्टॉल को लगाया इसलिए कि पिछली दफा हमने इनको फ्री दिया था, लेकिन जब मैंने चेक किया जाकर खुद और हमारी जो जो कमेटी है मस्जिद की उसे चेक किया तो उन्होंने रेट वो हाई रखे हुए थे, फिर हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमने इनसे लिया भी कुछ नहीं है, जो जो लोग आ रहे हैं देखो हर आदमी के, कुछ लोग होते हैं कि किसी के एक बच्चा है किसी के 4 बच्चे हैं, तो देखिए आप हर आदमी की जेब जांच नहीं देती कि 50,000 का वो एक समोसा या 50 करोड़ का एक समोसा लें या 4 पकोड़े लें, तो वो उनके उनके जेब जांच नहीं देती जिनके जिनके 4 बच्चे हैं। कोशिश करनी चाहिए इनको कि उनसे उनको कुछ गुंजाइश दे ताकि हर आदमी को जाके सहूलत मिले के खरीदने की।
0: जी सहूलियात रखनी चाहिए, बच्चों के फैमिली के लिए रखनी चाहिए, पेंशनर्स के लिए रखनी चाहिए। चले एक आदमी की जब लेता है तो वो बोझ इतना नहीं होता, लेकिन 6 बंदे या 5 बंदे लेते हैं तो वो अच्छी खासी रकम बढ़ जाती है। आपका पॉइंट वैलिड है।
1: क्योंकि क्योंकि ये जो है ना, आप क्या देखें, हम एंट्री का जो है ना, एंट्री का इंशाल्लाह जो है ना, जब तक मेरी जिंदगी एंट्री इंशाल्लाह फ्री होगी। और बच्चों के लिए पिछली दफा भी हमने अपनी जेब से 8,000 करोड़ लगाया था, ये होपे फूल लेकर आए थे तो वो फ्री रखे हुए थे। इस दफा भी इंशाल्लाह कोशिश है कि उससे ज्यादा लेकर आएंगे ताकि जो फैमिली वाले है ना वो
0: मतलब
1: पार्कों में
0: बच्चों के
1: जाते हैं या
0: खेलने के
1: ट्वेल्व
0: लिए जगह जो बनाएंगे।
1: बनाएंगे वो फ्री होगी, उसमें कोई किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।
0: जबरदस्त, तो मतलब है कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये फ्री वाली सारी आपकी कमेटी कर रही है, आपकी टीम कर रही है, बाकी जो स्टॉल वाले हैं वो उनका अपना काम है।
1: जी हम जो है ना, हम फ्री बिली कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए इसमें सबको हम दावत देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्राउन भी क्यों हो, जो जहां भी लोग रह रहे हैं आना चाहते हैं वेलकम। और कोई किसी किस्म की जो है उन्हें किसी किस्म की जो है ना एंट्री का कोई एक आना भी नहीं देना, किसी ने एक रोन भी नहीं लगेगा किसी का।
0: तो जो साहब अगर थोड़ी सी दूर पार्किंग की जाए, लोगों को 3-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट चल के जाना पड़े, तो क्यों कोई और जगह होती है साथ?
1: जगह जगह काफी है, लेकिन वो तो सेंटर हमारे पास है ना, ब्रोबी सेंटर पास है, तो ब्रोबी सेंटर में जो है कि 3 घंटे की पार्किंग है एक तरफ, एक दो पार्किंग फ्री है और 3 पार्किंग में जो है 3 घंटे की जो है पार्किंग है। अगर लोग सेंटर में पार्क है ना, उधर काफी जगह पार्किंग की जो है ना बढ़ाई हुई है कम्यून ने। तो मैं
0: वहां से चलकर
1: आपके
0: कितना टाइम लगता है?
1: उधर से अगर चल के आए ना तो 10 मिनट लगते हैं।
0: कुछ भी नहीं है।
1: तो मैं आपके जाके रेडियो के तफसल से मैं ये कहूंगा, सबसे अपील करूंगा कि अगर वो ब्रॉन्बी सेंटर में पार्क करके जाएं, अपनी गाड़ी का टाइम लगा जाएं उधर, तो 3 घंटे वो आराम से उधर रह सकते हैं। और अगर फ्री मिल जाए, दोनों तरफ है सेंटर के, दोनों तरफ पार्किंग है, एक तरफ फ्री पार्किंग है।
0: और दूसरा ये भी कह दें कि जो लोग नजदीक रहते हैं वो अपनी गाड़ियां अपनी जगह पे खड़ी रहने दें।
1: प्लीज राय साहब, ये तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। जो मसल मसाल के तौर पर एलबीए फाक है, वो एलबीए पे फाक के साथ है या छुपे फाक के साथ है बिल्कुल, या स्टैंड प्लेन है, खीसम फाक है, स्टैंड फाक है। इन लोगों को तो पैदल, इनका तो वैसे ही 5-5 10-10 मिनट लगते हैं घर से निकलते हुए ही।
0: लेकिन चौधरी साहब लोगों ने फिर 5-5 डब्बे भी तो उठा के जाने हैं ना।
1: हाँ, वो है, वो पिछली दफा कुछ लोगों को मैं खुद
0: नहीं, बच्चों की
1: अपनी
0: रेडी
1: गाड़ी
0: साथ
1: पे
0: ले
1: छोड़ गया
0: जाए
1: था।
0: ना।
1: जी यार, आप बच्चों की जो है पान और साथ हो ना, तो उसमें रख लें, या किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं उसके साथ रख ले जाए।
0: हाल तो हर चीज का निकल आता है, लेकिन ये सोचना पड़ता है।
1: तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, देखो हमारी कम्युनिटी को कुछ थोड़ा सा ख्याल आ जाए कि चलो जी पार्किंग जो है ना, जो नजदीक से आ रहे हैं खास करके, ये जो हमारे पार्किंग जितने भी है ना, अरबिया फाक से लेके जो क्या कहते हैं हेरियन फाक तक जो है ना, ये तो कोशिश करें ना कि पैदल आ जाए।
0: चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आप टाइम बताना चाहे बता दें, 2 मिनट हैं आपने, ये आप नहीं बोल रहे, उसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं।
1: जी हमने रखा हुआ है 2:12 से लेके 9 बजे तक, ये टाइम है। तो इंशाल्लाह हम मैं तो उस दर तकरीबन 8 बजे चला जाऊंगा और देखूंगा कि कैसे इन्होंने जाना, सब ने जो कि किस तरीके से लगाए हैं, स्टॉल लगाए हैं और क्या कर रहे हैं। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं अपनी सारी कम्युनिटी को, जो जितने भी सुन रहे हैं उनको जो है कि वेलकम करता हूँ कि आए आकर एंजॉय करें। क्यों कि हर वीकेंड को बच्चे चाहते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, और हर जो एक तो दूसरा एक जंग की वजह से आदमी आगे पीछे जा भी नहीं सकता, और जो हर आदमी के पास ये भी नहीं है कि वो जाकर पाकिस्तान या तुर्की या आगे पीछे जाए, या पाकिस्तान में भी बच्चों को लेकर जाए। उधर भी जो है कि काफी, मैं खुद लेकर गया था अपने पोती पोतों को, तो मुझे पता है कि क्या उधर खर्चा आता है। तो इस ये सब कुछ सोच के मैंने बेटे से कहा, दिल से, के और तैयब भाई से, कि तुम दोनों आगे हो और एक कोशिश करके लगाओ ताकि बच्चों को जो है ना और फैमिलियों को थोड़ी सी सहूलत मिले और वो आकर एंजॉय करें। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, राजेश साहब गफूर का दिल से तय दिल से शुक्रिया अदा हूँ कि जिन्होंने मुझे फोन किया और इसमें दावत दी। राय साहब अल्लाह हाफिज।
0: سامع ناظرین یہ تھے چودھری وحید صاحب جن کی آپ نے بات سنی، انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا، آپ کو معلومات ملی ہیں، چونکہ یہ معلومات کا لوکل پروگرام ہے، یہ لوکل انفارمیشن تھی، چونکہ ہر کمیون سے لوگ جاتے ہیں، اسپیشلی کوپن ایگن سے، فریڈرکسبرگ سے، اور جو ساتھ ساتھ جو چیزیں لگتی ہیں کمیونیں وہاں سے، ایلبرٹسون سے بھی لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں، تو اس لیے جاتے وقت آپ لوگوں کو خود بھی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جمعے کے جب خطابات آپ کرتے ہیں تو وہاں بھی قانون قاعدے کی بات کیا کریں، ڈسپلن کی بات ان کو بتایا کریں کہ اس ملک نے ہمیں بہت ساری سہولیات دی ہیں، اس نے ہمیں بہت ساری جمہوری رائٹس دی ہیں، تو جب ہم کو حقوق ملے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
2: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 2:03 ہوا چاہتے ہیں, 21/6/2026 کا پروگرام ہے. سامعین ناظرین, ہم نے کہا تھا آپ کو ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے, سیاست کے لحاظ سے, اور کوپن ہیگن کو دیکھ لیں یا جتنے جتنے بڑے شہر ہیں, ڈنمارک پورے کی بات کر لیں, تو یہ جو ٹیکسی برانچ ہے اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس میں 10-10, 12-12 ٹیکسیوں کے بھی مالک ہیں, 2 ٹیکسی کے بھی مالک ہیں, 1 کے بھی مالک ہیں. تو یہ وان مین گنے جاتے ہیں لوگ جو ہے نا. اس پر بڑا کام ہوا, یہ ایک بہت بڑا جو ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی فرم ہے جو مختلف ناموں سے چلتی ہے, اور یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں, یہ کمزور لوگ نہیں ہیں. ان کی بڑی پاور ہے ٹیکسی برانچ کی, اور ڈنمارک میں ٹیکسی کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا, گو کہ بسیں چلتی ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں, میٹرو چلتی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ برانچ جو ہے سالہ سال سے نقصان کی طرف جا رہی ہے. اس کو نقصان کیسے ہوا, بہت ساری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, بہت ساری کمپنیاں آ چکی ہیں, لیکن دن بدن جو ہے یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں, یہ ان کے حقوق جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس برانچ کو نقصان جو ہے وہ کس نے دیا, اور اس کو نقصان کیسے پہنچا, تو یہی کچھ جاننے کے لیے, آپ کو بتانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ شاہد نسیم ہیں جو کہ خود بھی اس برانچ سے وابستہ ہیں اور بہت سالوں سے اس نظام کو سمجھتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. باقی بھی کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شاہد نسیم, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
1: جی ہاں, آپ کو بھی خوش آمدید.
0: شاید میں نے کچھ کافی تمہید باندھ دی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. موسم آج بہت اچھا ہے, گرمی زیادہ ہے, اور خاص کر جو کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں, ٹیکسی برانچ سے لسنر ہیں, وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی برانچ کو دن بدن کیوں نقصان ہوا, اور نقصان کس نے دیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ ذرا ساری کہانی اور ساری تاریخ تو بتائیں.
1: جی راجہ صاحب, آپ نے بہت اچھی تمید بندی, آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اس برانچ کے متعلق تھوڑا سا. میں اس برانچ کے متعلق خاص کر ڈینمارک اور کوپن ہیگن میں یہ بتاتا چلوں, میں 26 سال پیچھے جاتا ہوں, کیا کہتا کہ 26 سال سے جو ہے ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں. تھوڑا اس کو زوم آؤٹ کریں, زوم ان نہیں رکھنا چاہیے, ہر چیز کو زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ٹیکسی برانچ میں اس وقت سے لے کے لاسٹ 25 سالوں سے, 26 سالوں سے ہمارے پاکستانی بھائی جو اس میں سب سے زیادہ, یعنی کہ آپ کہہ لیں اس وقت تو 90% سے بھی سے اوپر ہے اس برانچ میں ڈرائیور بھی ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں بون مین بھی ہیں, جو بون مین کا مطلب ہے کہ یہ اس کے کتنے مالک ہیں. اور آج سے 25-26-27 سال پہلے بھی پاکستانی کافی تھے, لیکن وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% یا 40% سے یا 35-40 کر لیں, باقی دوسرے جو انوان تھا تھے جن کے اندر عربی اور دوسری نیشنلٹیاں انوالو تھیں وہ تھے. اس کے بعد پھر ڈینش تھے, ڈینش تو اس وقت 50% تھے, وہ ہو گئے تھے آج سے 27-30 سال پہلے کی بات کر لیں, میں 40 سال ہی نہیں پوچھا جاتا. تو میں سب سے پہلے یہ شروع کروں گا جو مجھے یاد ہے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ میں خود بھی اسے منسلک تھا, میرے والد بھی ٹیکسی وانمن تھے اور انہوں نے بھی 40-45 سال اس کے ساتھ منسلک رہے ہیں, اور پیسہ بھی کمایا عزت کے ساتھ, اور بھی جو ہمارے کولیگس ہیں آج وہ یہ کام کر رہے ہیں. میں 26 سال پیچھے ایسے جاؤں گا کہ مجھے یاد ہے کہ اسی چیز سے جو آج کل ہو رہا ہے, کوپن ہیگن ایئرپورٹ میں پہلی دفعہ سویڈش ٹیکسی کو انہوں نے اپنی جگہ یہاں پر بنائی کہ ہم اپنے کسٹمر یہاں سے لے کے جائیں گے اور ہمیں جگہ دی جائے تاکہ ہم اپنی گاڑی کھڑی کر سکیں. اس کے اوپر واویلا ہوا ڈینش جو تھے وانمن اور ڈرائیور, جنہوں نے اس کے اوپر شور مچایا. جب شور مچایا تو پھر انہوں نے ایک اپنی فائننگ بنا لی, ایک چھوٹی سی ایک فائننگ جسے کہتے ہیں آپ, ایک فائننگ کا مجھے نہیں پتا اردو میں کیا نکل گیا ذہن میں,
0: ایک
1: یونین چلے انگلش میں کر لیں, یونین بنا لی اپنی فورن, وہ بنا کے انہوں نے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو क्या कहते हैं, संथाल होते हैं, जहां से आपको टोर आते हैं, वो भी उस जमाने में चार पांच किस्म के थे, छह कर लें, और वो इसके अंदर बिल वास्ता या बिल वास्ता बरह रास्त इन्वॉल्व नहीं होते, तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो उसमें ये था कि जब ये जो मैंने देखा, वो इन्होंने कहा ये इनको यहाँ पर जगह नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी जगह ठीक थे, कोई काफी खदशात थे उनको जो ये पूरे नहीं कर सके, एयरपोर्ट वाले भी, और हाँ, और चक्सर नेन वाले भी। मैं भी चक्सर नेन के ऊपर भी आता हूँ कि वो क्या था। तो क्या हुआ कि उसमें मैं उधर आऊंगा जहां अभी आपने पूछा हमारे मतलब, हम यानी कि पाकिस्तानी और हम लोग और हम इनवानता सारे, उसमें उन्होंने स्टैक जो एक फाइनिंग थी फॉरन बनाई यूनियन, इसमें ड्राइवर भी वोमेन भी इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बाइकट कर दिया स्वीडिश टैक्सियों का एयरपोर्ट पर खड़ा ना करने का, और एक बाकायदा ऐलान हो गया एक दिन कि हम एयरपोर्ट में कोई टैक्सी आने नहीं देंगे, ना ही अपनी टैक्सी। उस दिन एक समझ लें कि एक या दो दिन का एक स्ट्राइक थी कि एयरपोर्ट से कोई टैक्सी टूर नहीं लेगी, स्वीडिश टैक्सी तो टूर आ ही नहीं सकती, और हमारी भी टैक्सी, ये क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप करना था अथॉरिटी के खिलाफ, एयरपोर्ट के खिलाफ, और ये जैसे ये जमहूरियत यहाँ पर आपको एहतजाज करना बताती है। और उसमें उन्होंने स्वीडिश टैक्सियां उल्टाई भी थी, उल्टी उस वक्त की अखबारों में भी आया था, यानी उल्टा दी थी बिल्कुल, वो भी डेनिश लोगों ने, डेनिश ड्राइवर्स ने, वॉनमैन ने। उसमें ये हुआ कि जिस दिन स्ट्राइक थी, एक दिन स्ट्राइक का ऐलान हो गया, कोई गाड़ी एयरपोर्ट में नहीं आ रही, एयरपोर्ट में रश है, बंदा है, उस वक्त कोई मेट्रो नहीं था, मैं ये 2000 की बात कर रहा हूँ, पहला मेट्रो 2002 में खुला था, आप क्या कहते हैं फर्स्ट पे से, कोई मेट्रो नहीं था, किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं था, लोग ज्यादातर वहां से टैक्सी लेते थे या अपने जो एयरपोर्ट से बसेस चलती थी उसके जरिए वो जाते थे, और उसमें बिजनेस तबका भी था, उसमें हर किस्म का तबका जो टैक्सी लेता है सुबह शाम दोपहर, और वो आते हैं, तो आगे स्ट्राइक थी। ये क्या करते थे हमारे जो लोग हैं, वो जो लोग थे जो बाहर आ रहे हैं जिनको टैक्सी चाहिए, वो एयरपोर्ट से फिर बाहर आ जाते थे रोड के ऊपर, जहां पर पहले होता था मैरिट होटल, आज वो मैरिट होटल उसका नाम नहीं है, उसका नाम गालिबन कोई और होटल है, मुझे उसका निकल गया, जो एयरपोर्ट के सामने था सबसे पहले जो बना था, उधर लोग आ जाते थे चल के, क्योंकि तब तो मेट्रो कोई नहीं था, बहुत से लोग हमारे भाई, इन्होंने स्ट्राइक की हुई थी क्योंकि वहां से बंद किए इधर से, डेनिश ड्राइवर्स ने, वॉनमैन ने, और कुछ इनवन तभी आए थे, कुछ थे हमारे जो भाई हैं, हमारे जो वॉनमैन ड्राइवर्स जो पाकिस्तानी, खासकर जो खुद देखा मैंने आंखों से, उसमें दूसरे इनवानता भी थे लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, 35% तो उस वक्त पाकिस्तानी थे ना, बाद में दूसरे इनवानता थे, ये बाहर से टूर उठाने शुरू कर दिए इन्होंने, वहां से बाहर से ना, ये स्ट्राइक में हिस्सा लेने की बजाय काम आप करें, वो ये नहीं कह रहे थे आप काम ना करें, कहते एयरपोर्ट से टूर ना उठाएं कोई आके, क्योंकि यही हमारा स्ट्राइक, यही हमारा यही हमारे क्या कहते हैं मामले तय हुए हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, बचपना था, हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ स्ट्राइक का कह रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं हम, और ये आपके लिए आने वाली फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो फिर आप मजबूत होते हैं, तो दूसरा दूसरे को ये नेक्स्ट टाइम चांस नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो। अच्छा, ये बात खत्म हो गई, ये हमारे पाकिस्तानी के अंदर 80%, मैं ये नहीं कहूंगा सारे, 85% कह लें, बिल्कुल दोगले या दो चेहरे थे इनके। एक तो ये हो गया क्योंकि एक तरफ स्ट्राइक कहते थे और एक तरफ जब स्ट्राइक का टाइम आया तो उसे ये भाग गए, ये हो गया। अब आ जाए चक्सर नेन, चक्सर नेन डेनमार्क में, खासकर कोपनहेगन में, इनका फ्लेस्के चो यानी कि फिस्के चो के, सॉरी फिस्के चो नहीं, क्विलपीन, उसके फ्लेस्के चो कहते थे, उसके अंदर इनका खंचो होता था, ये दरअसल टैक्सी जो सिस्टम है, जो आप टैक्सी का फेयर कार्ड लेते हैं वो सारा उनके जरिए होता था, एक तो शख्स फेयर कार्ड है वो तो पुलिस के जरिए, लेकिन जो फेयर कार्ड है वो आपको उधर से पास करना पड़ता था, और वो एक अदारा बनाया हुआ था, वो कंट्रोल करता था कि आपको कोपनहेगन का जो रूट होता था वन, उसके नीचे तीन नंबर होते थे, कोई भी 20-20 कर लें, 36 कर लें वगैरह वगैरह, चार नंबर, एक नंबर होता था कोपनहेगन का जो एरिया पूरा, उसको रूट रूट कह लें, रूट तख्ती होती थी ग्रीन रंग की 10x10 की, वो लगती थी आपकी गाड़ी के पीछे, तो इस तरह फिर रॉसकिल्ड आगे निकल जाए उनकी तख्ती यही थी, लेकिन 2 नंबर पे 3 नंबर वगैरह वगैरह। चक्स ने उसको कंट्रोल करता था कि कितनी टैक्सी, क्योंकि उनके पास हर साल आते थे टोटल, हर साल टूरों के टोटल सारे संथाल से वो लेते थे, जितने भी संथाल थे जिसमें कोडान थी उस वक्त, ओइवन पील थी, अमोपो थी, खेपनाउन चाक्सा थी, नोवेस वेस्ट टैक्सी थी वगैरह वगैरह। इनसे वो टोटल जो टूरों की जो उनके पास होती थी उनके रिकॉर्ड में कंप्यूटर में, वो उनको वो पहुंचा देते थे कि इतने इतने लाख या इतने मिलियंस टूर जो है रेडियो टूर निकले हैं। बाकी वो खुद बैन और जो उस वक्त सेंट्रल स्टेशन थे दूसरे स्टेशन से, वहां से वो ले लेते थे पूरी मालूमात और उसके ऊपर निकाल के, तो वो उन्होंने रखा हुआ था कि कितनी टैक्सी केरल में यानी कि रोड के ऊपर रहेगी। कोपनहेगन रोड की एक ही बात कर रहा हूँ, ऐसे दूसरे रोड्स थे उसमें ज्यादातर टैक्सी हमारी होती थी रोड के ऊपर। तो रोड से मुराद के सारी टैक्सी तो रोड में नहीं होती, कोई लोग छुट्टी कर रहे हैं, किसी का आज छुट्टी है, किसी कोई बीमार है, लेकिन टैक्सी जो है टोटल उस वक्त होती थी 1600 से 1800, कभी हुआ 2000। वो उन्होंने कंट्रोल इसलिए किया होता था वो उसको देख के हर साल नहीं तो 2 साल नहीं तो 3 साल बाद वो जब कम होते थे, अगर मिसाल के तौर पर 1800 पेविलिंग है रोड के ऊपर, इसे पेविलिंग कहते थे ये जो रोड है, अगर 1800 है तो वो 1600 आ गए हैं, और वो टूरों की रेशो देख के, टूरों को वो देख के कि इतने टूर जो है इतने मिलियन आए, उतनी टूरों की जरूरत है, ज्यादा हो गए हैं जो है। तो जो टैक्सी कम हुई है 200, कोई वोमन छोड़ गया, कोई मर गया, कोई रिटायर हो गया, तो वो फिर 1800 से 1600 आ गई, फिर वो 200 बेविलिंग निकालते थे। और उसमें वो क्यू सिस्टम होता था, आप एंशनिंग यानी कि दरखास्त अपनी अप्लाई करते थे, और वो उस हिसाब से होता था कि जब किसी ड्राइवर ने 4 साल से या 3 साल से ज्यादा चलाई होती थी और वो लगातार इसको चलाता आ रहा था, तो वो उस एंशनिंग का यानी दरख्वास्त दायर करने का होता था मजाज, और वो उस सिस्टम के अंदर आ जाता था। और फिर जब वो निकालते थे तो आपकी एप्लीकेशन जो आप अपनी वो देते थे दरख्वास्तें, तो उसके अंदर आप आ जाते थे। 200 में से अगर 400 लोगों ने अप्लाई किया है तो जिस जिसका अपने साल के हिसाब से साहब है वो हिसाब से फिर उसको उसकी बिलिंग मिलती थी, जो रह गए फिर अगली बार उस सिस्टम के अंदर आ जाते थे। इस तरह चलता था, और वो कंट्रोल ये करते थे कि टैक्सी ज्यादा रोड पे ना हो, जितने गाहक है उसके मुताबिक चले, थोड़ी सी बल्कि टैक्सी कम हो ताकि इतना गंद ना पड़े, और टैक्सी भी और हाँ और ज्यादातर टैक्सी ये टेंस की टैक्सी होती थी, क्योंकि टेंस ट्रेनिंग शख्स वोमन जो उस वक्त डेनिश ज्यादा थे, 50% डैनिश थे, वो उनकी फाइनिंग स्टैक थी, वो स्टैक थे, स्टैक से मुराद ताकतवर थे, और वो अच्छा था, वो टैक्सी को खराब करने नहीं देते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हम लोगों ने ज्यादातर ओवरलैंडिंग हो गए, फॉरनर्स पाकिस्तानी, इन्होंने टैक्सन के खिलाफ चंग मुहिम शुरू कर दी, उसके खिलाफ हो गए, इसको खत्म होना चाहिए। इन्होंने 2016-17 में किसी कुछ पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस जो डैनिश थे इन्हें लिस्ट के वाले पर मुझे नाम याद नहीं है, उसको एंगेज किया, उसको एंगेज करके मुझे नहीं पता किसने किया, मुझे किसी का नाम याद नहीं है, किया और उसको बताया कि ये छक्स खत्म करें और इसको ओपन करें ताकि हम सारे बिविलिंग ले सकें, यानी कि सिस्टम को भी खत्म कर दें। उसको ये बात अच्छी लगी, वो पहले ही उसका उसका पहले ही कोई रवाइज था इनके साथ, ये इस अदारे के साथ किसी के साथ, तो उसने जनाब इस वास को उठाया और वो उसने इसको इसको करवा लिया। और वैसे भी जब उन्होंने करवाना हो तो वो ये काम करते हैं, वो करवा लेते हैं, हर उन्होंने इसको ये करवा लिया। मैं इसको इधर रख के, अब इस बात को यहाँ रख के ना, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ ऊबर की तरफ। ऊबर गालिबन अभी नहीं आई, आप कह रहे हैं कि 2025 के फरवरी में यहाँ आई, नो, ऊबर 2015-16 में इधर डेनमार्क में आ गई थी, और वो जैसे ऊबर का कंसेप्ट है वो उसी तरह चले थे, वो बगैर टैक्सामीटर के प्राइवेट गाड़ियों में हर कोई बंदा उनका ऐप।
0: सुन سامعین ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, اللہ جانے کیوں ہو جاتا ہے, تو جو ہی ہمارا دوبارہ رابطہ ہمارا بات, شاید آپ اپنی بات جاری رکھیں.
1: میری بات کہاں سے کٹی تھی تاکہ میں ادھر سے شروع کروں؟
0: آپ نے جو ٹیکسی کی بات کر رہے تھے 2000 میں جو آپ کو کہہ رہے تھے, اس طرح کی بات کر رہے تھے.
1: اچھا میں 2000 کی طرف آیا تو تب بھی میری آواز کٹ گئی تھی, مجھے پتا ہی نہیں ہے.
0: جی جی.
1: اچھا میں 2000 کی طرف میں پھر آ جاتا ہوں, میں وہ مجھے پتہ نہیں لگا کہ میری آواز کٹ گئی ہوئی ہے. 2000 کی طرف آتا ہوں. 2000 کو جناب آپ کی ٹیکسی جو ہے آج سے 26 سال پہلے کی بات ہے, میں خود اس کا گواہ ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ بس مجھے یہ پوچھنا پڑے گا.
0: صاف آواز آ رہی ہے,
1: مجھے بتا دیجیے گا. اچھا 2026 کو جناب آپ کوپن ہیگن ایئرپورٹ میں پہلی دفعہ ایئرپورٹ والے اور چکس نیا اس وقت ہوتا تھا, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. اس وقت سویڈش ٹیکسی کو الاؤڈ ہو گیا کہ وہ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں.
0: نہیں, آپ نے کہا کہ ڈیمونسٹریشن کی ہے, ڈیمونسٹریشن ہوئی, اس کے بعد لوگوں نے روٹ سے اٹھانے شروع کر دیے, وہ بھی چلتا رہا.
1: اچھا ادھر, اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں میری بات کہاں سے ختم ہوئی تھی,
0: اس لیے چلتا رہا. اس کے آگے چلے ہم جو ہے نا,
1: لوگوں نے اپنے لوگوں نے, کیونکہ ڈینش تو اپنی بات میں قائم رہتے ہیں, میں نے خود دیکھا وہ جب کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی وہ اس چیز کے اوپر قائم رہتے ہیں. یہ بات ان میں ہے, جو ایک چیز ہے وہ ایگری جب کرتے ہیں وہ اس میں وہ قائم رہتے ہیں. انہوں نے ٹوٹ اٹھانے شروع کر دیے ایئرپورٹ سے جا کے باہر سے, یعنی کہ لوگ جو کسٹمر آ رہا ہے اس کو ٹیکسی تو چاہیے, وہ باہر آ رہا ہے روڈ کے اوپر, وہ جو کہتے ہیں لوفتون بلوارڈ ہے یا لوفتون وائے ہے یا کیا نام اس کا, جو میرٹ کے پاس ہے, ادھر تک لوگ آ گئے. کیونکہ اس وقت میٹرو تو کوئی نہیں تھا, وہاں پر بس ہے تھی چلتی تھی, تو ادھر لوگ آ رہے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے نا, کیونکہ اندر سے باہر سے تو ایئرپورٹ بند کیا ہوا تھا انہوں نے, جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے سارے شوفیر اور وہ تھے, تو یہ جو ڈرائیور تھے, یہ جو وان مین تھے, جو کہیں آج ریٹائر ہو چکے ہیں, کہیں آج 80 سال کے ہیں, 85 کے ہیں, 70 کے ہیں, اور کہیں آج میری ایج کے بھی ہیں, انہوں نے جناب وہ وہاں سے بہت زیادہ, انہیں میں 35% پاکستانی تھے اس وقت اس برانچ میں, 15% دوسرے وہ لرننگ تھے, 50% ڈینش تھے, انہوں نے جناب وہ ٹور وہاں سے باہر سے لینے شروع کر دیے. تو وہ جو ڈیمونسٹریشن ہے ڈینش, حالانکہ کتنے اسٹیک ہیں, وہ ڈیمونسٹریشن تقریباً ہماری ناکام ہو گئی, ہماری اپنی وجہ سے, ہم نے ساتھ نہیں دیا بھرپور. وہ ڈیمونسٹریشن اس لیے تھی چکسا نیون اور لوفتون کے خلاف کہ یہ اجارہ داری فیوچر میں قائم نہ کر سکے ہمارے اوپر, تاکہ یہ اس طرح چلیں جس طرح ہمارے بھی حقوق ہیں, ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, وان مین ہیں, وان مین کے بھی حقوق ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ایک ہی بات ہے, ٹیکسی چلاتے ہیں, آپ کے لیے سروس مہیا کرتے ہیں, یہ لوگ سروس مہیا کرتے ہیں آپ کو لے کے جا, اگر یہ نہیں ہوں گے, کیونکہ اب تو 95% وہ لرننگ ہے, اس میں سے 90% اب آج 2026 میں, اور 90% پاکستانی ہیں. یہ آپ کا ڈینش کوئی نہیں ٹیکسی چلا رہا اب, بالکل جو رہ گئے ہیں 1% سے بھی کم وہ ہیں. آج یہ ختم کر دیں آپ کو یہاں پر آپ کو آپ کے وارے نیارے نہیں ہوں گے, آپ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ کیا ہو گیا, کیونکہ ٹیکسی. اچھا اب وہ ہماری جو ڈیمونسٹریشن ہے جو ڈینشوں نے مل کے کی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ سویڈش ٹیکسی کو پیچھے کیا جائے, وہ وہاں سے ہی ہمارے ٹور لے کے جانا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور جو اس میں کافی چیزیں تھیں جس کے اوپر وہ ایگری نہیں ہوئے, تو اس کے بعد یہ ڈیمونسٹریشن شروع ہوئی. جب اور وہ ڈیمونسٹریشن ناکام ہو گئی ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے, وہ ڈینشیوں کو بھی پتہ لگا کہ یار یہ لوگ کس طرح کے ہیں, یہ لوگ اپنی کسی بات پہ قائم نہیں رہتے, یہ ہی لوگ جو اس برانچ میں آ گئے ہیں. اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ٹیکسی کو آنے والے وقت میں آپ لوگ تباہ کر دیں گے, ہم لوگ تو چلے جائیں گے, ہم لوگ تو ٹیکسی تو نہیں رکھنی ساری عمر, ہم لوگوں نے ان کے جو آگے سے اولادیں آنی ہیں جو اب آئی ہیں, 25 سال ایک جنریشن گیپ ہے, اس میں سے کسی نے ٹیکسی نہیں چلائی, نہ ٹیکسی چلا رہا ہے, کیونکہ وہ اب پڑھ لکھ کے گئے ہیں اور وہ دوسری جگہ میں چلے گئے ہیں, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ برانچ انہوں نے خراب کر دی ہے اور یہ انہوں نے کرنی ہے. اب میں آ جاتا ہوں چکسا نیون کے اوپر, میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو کلیئر؟
0: بالکل آ رہی ہے.
1: اب میں چکسا نیون کی, چکسا نیون ایک ادارہ تھا جو ٹیکسی کو کنٹرول کرتا تھا, جو میں جو آج سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا بہت ضروری تھا, وہ بھی ہماری حماقتوں کی وجہ سے ختم ہوا جا کے 2018 میں. ٹیکسا نیون جو تھا وہ یہ کرتا تھا کہ فیو کارڈ وہ دیتا تھا, فیو کارڈ جسے کہتے ہیں, ٹیکسا لائسنس لینے کے بعد آپ نے فیو کارڈ, پہلے یہ ان کا آفس فلیسکچ ہو, یعنی کہ فسکچ ہو, سوری کیو پیو کے اندر تھا, अब फिर पीए के तो हमारे 90वें सवाए में आ गया, 2018 में खत्म हो गए हमारी अपनी हमाकतों की वजह से, हमारी अपनी क्या कहते हैं दोगलेपन की वजह से हमने इसको खत्म करा के छोड़ा। ठीक है, ये खत्म हुआ, ये कंट्रोल करता था कि कितनी टैक्सी किल यानी कि आपकी रोड के ऊपर होनी चाहिए, साल के साल बाद उनको तमाम संचालनों से आपके टूरों का बायोडाटा मिलता था कि कितने मिलियंस टूर जो रेडियो टूर हैं, रेडियो टूर उसके बाद किल छुआ, वो आपको लुफ्थांसा से और दूसरे स्टेशनों से बड़े स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन से मिल जाते थे। किल छुआ का भी जो है वो रिकॉर्ड होता था संचाल के पास, वो सारा मिला के कितने मिलियंस टूर निकले हैं या कितने मिलियन टूर गए हैं, 1 मिलियन या 2 मिलियन, और कितनी टैक्सी इसके लिए चाहिए, क्योंकि वो पूरे इसके ऊपर वो होमवर्क होता था, उस हिसाब से वो टैक्सी रखते थे किल में। तब टैक्सी चलती थी 1600 से 1800 के करीब टैक्सी होती थी हर वक्त, जो आपकी उन्होंने इजाजत दी, वो उनके बगैर कोई टैक्सी किल में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि ओना शख्स ने उनके अंदर था। और वो रूट होता था क्योपनहॉर्न का रूट था, 1 नंबर था रूट का, सबज रंग की तख्ती थी 10 बाय 10 की, वो आपकी टैक्स के पीछे प्लेट लगती थी, वो रूट नंबर उसे कहते हैं, उसे कहते हैं पवेलिंग। और नीचे 3 हिस्से होते थे या 4 कह लें, 16 20 6 6 27, ऐसे 3 16 ऐसे टैक्सी का जिस जो बंदा वॉर्न बना तो
0: मतलब
1: उसको
0: हर
1: वहां से
0: चीज
1: वो
0: जो है वो कंट्रोल में थी। अब टैक्सी कितनी है?
1: टैक्सी मैं बताता हूँ कंट्रोल में थी। और वो जैसे डेनिश सिस्टम है इनका, हर तरह का इनका सिस्टम दुनिया में बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, वो कंट्रोल में रखते थे। और वो दारा था, और वो गवर्नमेंट के अंदर नहीं था बिल्कुल, वो एक लहजा से दारा था, और उसके अंदर डेनिश वॉर्नमैन सबसे ज्यादा थे, और वो ही स्टैक थे, और वो ही इसके बेनिफिशियरी तो नहीं आप कह सकते, लेकिन वो ही जो है उसको हावी रखते थे चाकसा को, चाकसा ब्रांच को, किसी दूसरे के बनिस्पत कोई बाहर से ना आ जाए उसको वो हावी रखते थे। और उनको पता था, उन्होंने कहा था जिस दिन आप लोग आ गए आप इसको बर्बाद कर देंगे, आज बर्बाद हो गई है। इस वक्त 4,000 4,500 से ज्यादा टैक्सी है, और 600 700 टैक्सी आपकी और आ रही है इसी गर्मियों के बाद अगस्त सितंबर को 5,000 से। मैंने ये बात कही थी इन सबको, आप लोगों की टैक्सी 2028 तक सड़कों में 10,000 हो जाएगी। सबसे ज्यादा उसमें हमारे पक्ष नहीं भाई है, फिर उसके बाद दूसरे उलनिंग, डेनिश बहुत कम है ना होने के बराबर है, आप कह लें इतने ज्यादा उलनिंग होके इतने ज्यादा आप पीछे हैं। इधर भी आपके ऊपर कंट्रोल अभी भी यही लोग कर रहे हैं, चंद लोग हैं 10 50 60 ये आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और आप जो हैं इतना ज्यादा वॉनमन होके इतने ज्यादा, मैं ये एक दूसरी बहस है कि मैं ये कहूं कि जी आप लोग टैक्सी में क्यों आ रहे हैं, मैं दूसरा जो है यहाँ पर आपके दूसरे भी तो है ना, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं काफी, वो तो नहीं है उनके यंग, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, मैंने यंग लोग देख पढ़े लिखे नौजवान ब्लैक ऊबर, मैं किसी को यार ये नहीं कर रहा कि वो आप क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ। चलें कोई अंकल कोई मेरा बुजुर्ग कोई भाई मेरे जैसा कोई भी चला रहा है 50 साल का है 60 का हो गया है, ये एक दूसरी बहस है, क्योंकि वो लगा हुआ यार 25 साल का लड़का 24 का दूसरे नहीं यार, मकडोन के लोग निकल गए हैं जो ये जो है अपना बाल्कन लैंड के जो लोग होते थे काफी चलाते थे उस वक्त, योगोस्लेवियन होते थे वो भी काफी थे टैक्सी ब्रांच में, मैं यही बात कर रहा हूँ, वो निकल गए हैं, उनका कोई जवान नहीं आ रहा। यार आपने ऊबर को कामयाब कर दिया यहाँ पर, ऊबर ऑलरेडी यहाँ पर 2015 16 को आ गई थी, लेकिन उनका कंसेप्ट दूसरा था, वो बगैर क्या कहते हैं टैक्सी नंबर या किसी चीज के, वो प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने लगाया, उसमें भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने उनको वेलकम किया था। एक एक बंदा जो अभी जो काम करता कहीं किसी जगह में, कोई किसी जगह में फैस काम करता था, वो रात को अपनी प्राइवेट गाड़ी में ये लगा के चला रहा है। खैर वो फिर वो खत्म कराया गया, क्योंकि यहाँ पर इलीगल है, इलीगल इसलिए कि यहाँ पर टैक्सी चलैल से सारा कुछ मीटर वगैरह सारा कुछ, क्योंकि वो होना चाहिए उसके बगैर आप नहीं कर सकते, दूसरे मुल्कों में कंसेप्ट चल रहा है। वो केस चला, बात मुख्तसर करता हूँ, वो केस चला, वो केस जो है ये ऊबर हार गई और यहाँ से वो उसको जाना पड़ा। उसके बाद 2025 फरवरी को या ऑलरेडी 2024 को हमारे ही लोगों ने ऊ लेनिंग इसमें कह सकते हैं, कुछ दूसरे मुल्क के लवाल थे और कुछ अपने थे, इन्होंने ईमेलें दे के उनको वेलकम किया कि आप आए और आपको हम तरीकाकार बताते हैं आप कैसे आए। वो आ गए हैं, उन्होंने आके आपको आपकी सारी मार्केट ले ली है,
0: शायद आप बात
1: सारी
0: कर
1: की
0: रहे
1: सारी
0: हैं
1: मार्केट।
0: 2024 की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो असलम साहब जो है गालिबन 2 बार रहे, वो टेक्साई ब्रांच के सदर रहे, उसके बाद मियां साहब आगे गालिबन वो भी 2 बार या 3 बार रहे, अब जो आगे दूसरी बार है ये भी पाकिस्तानी निसाद, तीनों पाकिस्तानी निसाद डैनिश हैं, तो 3 बारियां तो 6-8 साल की तो मुझे याद पड़ती है, तो ये तो कंट्रोल में रही जो सदारतशिप थी, लीडरशिप थी, ये तो हमारे लोगों के पास रही।
1: नहीं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं, ये भाई कोई भी इसमें से कुछ शख्स का यूनियन का या किसी आप बात कर रहे हैं उसका कोई वो शेफ नहीं रहे, या वो सिर्फ रही हैं एक यहाँ पर काफी संस्थान है, अब तो डैन चैक्सी है, आमो यूपो है, अभी भी है, बॉल्ट है, उबर है, वो भी संस्थान हो गया, और एक क्यूपनोन शख्स जो सबसे बड़ी होती थी हर, वो अब तो सबसे छोटी हो गई है, उसके अंदर ये फोरमैन थे हमारे एक भाई, अब एक भाई दूसरे हैं समरेश नाम है उनका अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो हैं फोरमैन, फोरमैन होके भी तो आपके ऊपर तो डैनिश बैठे हुए हैं, दो आप हैं टैक्सी हैं वहां पर भी इसी संचाल में, क्यों छक्सा में संचाल में 1000 से ऊपर गाड़ी होती थी 1200, और वो सबसे ज्यादा फॉरनर्स की और फिर पाकिस्तानियों की होती थी, लेकिन कंट्रोल आपको ये कर रहे हैं, और फिर उन्होंने एक छोटा सा आपको लॉलीपॉप दिया होता लो जी इन्होंने किसी ने बच बना देने फॉरमैन खुश हो जाए, ये भी उन्होंने एक शुरू किया, पहले तो डैनिश ही फॉरमैन होता था, तो वो उससे तो यार उससे क्या कामयाबियां मिली है? कुछ भी नहीं, उल्टा आपका हालत देख लें, चले मैं उस क्यों चक्ष की बात कर लेता हूँ, उनके सारे अवैव खोना, जो उनके बिजनेस कस्टमर छोटे कस्टमर सारे चले गए हैं, और वो सारे के सारे तकरीबन सीधी बात करनी चाहिए 95% के कस्टमर जो हैं वो सारे के सारे डैन टैक्सी ले गई, और उबर डैन टैक्सी और उबर एक ही है, क्योंकि वो डैन उबर ने डैन टैक्सी खरीद ली थी, और डैन टैक्सी जो है उस वक्त 2-2.5 हज़ार से उनकी ज्यादा गाड़ियां हैं पूरे शेलन में, वो बल्कि शेलन से भी ऊपर यूलैंड तक जाते हैं वो, तो मैं शेलन की चलो बात करूंगा, तो इसका कोई वो उन्होंने वो चांद जो दो ऊपर जो है वो डैनिश हैं जो ऊपर सबसे बड़े हैं, उन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, क्यों प्रनाउन चैक्स की बात कर रहा हूँ, तो इससे कोई उसमें क्योंकि हमने करना ये पता क्या है, ये है कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हम नहीं कर सकते, हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, हम किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, हमने वो मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें हमारा ज़ाती मफाद हो, हमने ये नहीं करना, ये नहीं देखना कि फ्यूचर क्या है हमारे लिए, अगर आपने इसी ब्रांच में रहना है तो सर अगर इसी ब्रांच में रहना है तो फिर आपने ये चीजें करनी होती हैं, ये पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पर चलो जी हैरा मेरी है कर लेंगे, यहाँ पर हर चीज सिस्टम के मुताबिक पेपरों के पेपर वर्क के साथ चलती है, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर चीज को वो कानून और उसके मुताबिक वो कहते हैं चला जाता है, और आपकी दलील के साथ चला जाता है, ये नहीं होता कि आप उठो उधर चल पड़े उधर उधर चल पड़े, तो ये हुआ है मेरा ये कहने का मकसद पता क्या है, मेरा ये कहने मेन मकसद मेरा ये है फ्लेयर छल, यानी कि अक्सरियत होने के बाद भी हम पीछे हैं इधर भी, यानी कि अक्सरियत आपकी है कंट्रोल वो कर रहे हैं आपको, मैं ये बात कर रहा
0: लेकिन शायद जी मैंने एक चीज देखी है इस ब्रांच में, हमारे तो खैर बहुत सारे लिसनर हैं लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, साला साल से काम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, शौर भी रखते हैं डेनमार्क की सियासत का, अपने मुल्क की सियासत का, तो लेकिन जब इन्हें पता कि ये हमारा रोज़गार है हम इस पे काम करते हैं, तो ये इतने मजबूत होने के बावजूद भी ये क्या ये अपनी फोनिंग अलहदा नहीं बना सकते, ये अभी बना ली है
1: अपनी फोनिंग, ये पिछले 40 साल से बना रहे हैं सर अपनी फेनिंग, क्या कहते हैं बनाने के लिए कोई कोई कोई वो रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये गोरे लोग बना लेते थे, ये कोई ये इसके लिए आपको मुतखिद होना होगा पहले, ये तो मुतखिद ही नहीं है, अपनी फेनिंग कैसे बनाएंगे ये तो एक रात बैठ के किसी जगह में किसी कोने में बैठ के कॉर्नर मीटिंग करते हैं, अगले दिन ये सारे खली बली अपने अपने वो कहते हैं दिहाड़ियां पता ही कोई नहीं है, बिल्कुल बनती है इनकी इनकी फ्रेनिंग इनका सारा कुछ बनता है, वो एक रात के लिए होता है, सुबह खत्म पता ही कोई नहीं कोई किधर गया ढूंढ रहे हैं आप उसको, तो ये सिर्फ दिल भगाने के लिए होता है।
0: मुस्तकबिल है इस ब्रांच का,
1: इस ब्रांच का मुस्तकबिल मैं एक और बता दूं, एक और एशिया से एक ग्रीन के नाम से कोई फर्म है बड़ी, और उनका जो फंड है $38 बिलियन, उसको आप जरा दे लें 7.5 से 7 देने से कितने $100 बिलियन उन फंड, यानी कि वो एक फर्म जिनके पास पैसा है, 600 टैक्सी खड़ी है उनकी तैयार मुंचेंग के लिए, ग्रीन, यानी कि वो वियतनाम पीछे से, वो कहते हैं उनका जो जो उनका उनका मालिक है वो वियतनाम से है। 600 टैक्सी
0: तो
1: आपकी
0: लेकिन
1: और आ
0: टैक्स
1: रही
0: का
1: है।
0: निजाम कैसे चलेगा फिर?
1: मैं आगे बता दूं आपको टैक्स का निजाम, मैं ये भी मुझे बुरी बात का लेने दें। 600 टैक्सी मुंचिंग हो रही है ग्रीन के नाम से, और वो किसी वॉनमैन के लिए नहीं है, वो खुद ही वॉनमैन होंगे और वो खुद ही यहाँ पर एंसिट करेंगे शोफेयर, और वो फैसले देंगे। ये मैंने अभी तक पढ़ा है, और ये डेनमार्क में, अब स्कैंडिनेवियन में बल्कि पूरी आ रही है, वो ऑलरेडी काफी यूरोप के एशिया में तो है ही, काफी मुल्कों में। उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना पैसा जाया करेंगे, कहते नहीं हम यहां पर पहले एक साल तो पैसा फेंके हमने 2-3 मिलियार्ड, ये कैसे फेंके ऐसे कि हमने कस्टमर जो है लेके आने हैं, कस्टमर कैसे लेके आने हैं वो उनको पता है, वो उन्होंने नहीं बताया। ये बात है, तैयारी तो उनकी होगी ना कोई ना कोई। और वो 600 है ना, 600 से 1200 करेंगे जो आज तक आपकी वॉनमनी भी यहां से खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही वॉनमन होंगे, वो किसी को अपनी टैक्सी नहीं देंगे। वो जो अदारा है ना ग्रीन, वो खुद ही मालिक है टैक्सी का, वो गाड़ी जो है, जो जो गाड़ी है ना इक्विपमेंट जिसे कहते हैं गाड़ी, ये उनकी होगी, उसमें सिर्फ आप एनसेट होंगे, 3 ड्राइवर, 8-8 घंटे, 8-8, कोई ये 30 घंटे नहीं एक ड्राइवर चला रहा है 18 घंटे, नो नो, 8 घंटे की वक्त, सुबह दोपहर शाम की और रात की, 24 घंटे हो गए उन्होंने ये पैसा फेंका। ये बात ये बिल्कुल ऐसे हो रही है, ऐसे ही उबर ने किया था तो ये मानते नहीं थे,
0: अच्छा,
1: उबर
0: एक
1: ने किया था,
0: ये एक
1: उन्होंने कहा
0: नई
1: था
0: जो है वो शुगर की गोली आ रही है।
1: आ रही है। और ये अब आपका सफाया, आपका सफाया डेनिश जो थिंक टैंक है जो बैठे हुए हैं पीछे, उन्होंने जिस जगह फॉरनर ज्यादा आ जाएंगे ना और उनमें इतफाक नहीं होगा, इतफाक नहीं तो आपकी कोई स्टैक यूनियन नहीं बनी कोई ताकतवर, जब वो बनी नहीं उनको पता लग गया और फॉरनर ज्यादा थे, उन्होंने आपसे वो छीन लिया सारी की सारी ब्रांच, और ये पीछे इन्वॉल्व है, आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है ऐसे, वो जो आ रहे हैं बाहर से ये सारे ऊपर पीछे इन्वॉल्व है
0: लेकिन ये
1: उनको।
0: जो बड़ी कंपनी बताते हैं कि ये चकाईगांव फिया चकाल या चकाईगांव फेमस खाल, ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है?
1: तो एक डेनिश कंपनी थी है ना, अभी तो इनके तो टैक्सियां 400-500 रह गई हैं, 400 या 500 में गालिब, इससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप बड़ी कंपनी है तो अब ऊबर है, वो डैन है, डैन टैक्सी ऊबर एक है, बड़ी कंपनी तो बोल्ट है इधर आगे हुई, उनके पास गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ 4500 4400 जो गाड़ी है वो, इसमें से आप 400 से अपना टैक्सी की निकाल दे, बाकी 4000 उनकी है इस वक्त रोड पर, तो बड़ी कंपनी कौन सी हुई।
0: चलें, वो कंपनी आ गई जो अपनी 600 गाड़ियां ला रहे हैं, वो आगे प्राइवेट ड्राइवर रखेंगे, एनसेट करेंगे, मालिक कोई नहीं होगा, मालिक वही होंगे, फिर क्या होगा?
1: मैं जो देख रहा हूं फिर ये क्या होगा, वो उनके पास तो पैसा है, ऊपर से भी ज्यादा पैसा है, उन्होंने अपना यहाँ पर स्कैंडिनेवियन में यही चीज वो नॉर्वे में करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर मार्केट देखी है पहले, ये कहाँ, ये सर जी, ये लोग, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी, अमीर जो लोग होते हैं, अमीर जो कंपनी होती है, वो हर चीज पहले रिसर्च करके हर चीज को उसको पूरा रिसर्च करके वो फिर आती है पूरा होमवर्क करके कि हमें यहाँ से क्या आएगा, कितनी बड़ी मार्केट है, क्या चक्कर है इधर, फिर वो यहाँ पर अपना पड़ाव डालते हैं। तो उनको ये भी पता है कि अभी हमने दाना फेंका है, अभी हमने 6 महीने साल हमारा पैसा लगना है, उसके बाद हमने, ये भी हो सकता है कि उनका उनका उल्टा ख्याल हो, वो 6 माह 8 माह या साल पैसा लगने की बजाय शुरू में पैसा आना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन वो ये तैयारी करके आते हैं कि हमने पैसा लगाना है अभी।
0: लेकिन जबकि कोपनहेगन में गाड़ियों का दाखिला बंद हो रहा है, जो ये सड़कें आपने देखा तंग हो रही हैं, साइकिलों के लिए ज़्यादा जगह बना रही है, तो गाड़ियां तो फिर कम हो जाएंगी, ये 600 गाड़ियां कहाँ चलेंगी?
1: मैं आप पॉइंट नहीं समझे, ग्रीन टैक्सी इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट के साथ उनके रबते हैं आपकी स्टेट के, उस वक्त सिर्फ बस होगी इलेक्ट्रिक की और यही गाड़ी होगी ग्रीन बस, ये आज से, ये जो कंसेप्ट है ना मैंने आज से 15 साल पहले सुना था, ये कंपनी कम बात नहीं मैं कह रहा, वैसे ही कि किसी डैनिश ने बताया था मेरे से बात हुई, वो कहता है कि फिम्त नोच पे चो चोशन इल्व, कि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सी का कंसेप्ट खत्म ही कर देंगे, जो फलां चल रही है हम एक ही ले आए ग्रीन टैक्सी और वो इलेक्ट्रिक की, और वो उसे को चाहे स्टेट उसको करे या स्टेट अपने नाम से बना ले, या कोई कोई भी कोई कोई बड़ी अमीर कंपनी आ जाए, चाहे डैनिश हो या कोई हो बाहर से। ये 15 साल पहले इसने बताई थी बात मुझे, किसी से वैसी बात चल रही थी मेरी। आज देखें उन्होंने 15 साल पहले की ये चीजें सोची होती हैं, उन्होंने ये कर लिया है और ये होना है, जबकि वो आ गई है। और अभी भी राजा साहब, अभी भी हमारे लोग कह रहे हैं, उबर आई थी ना, उबर भी कहा था उन्होंने, अब ये साल पहले आई थी उबर, इधर गालिबन 1.5 साल हो गए हैं कि उबर हमारा कुछ नहीं कर सकती, वी एक्स से सेल, ये क्या था के जो लोग काम करते
0: ये
1: हैं।
0: अक्सर हमारे थिंक टैंक शाह साहब बताते रहते थे, फिर काफी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि शाह साहब
1: शाह साहब बिल्कुल ठीक बात करते थे, शाह साहब क्रिटिसाइज लोग करते हैं। अब भी ग्रीन टैक्सी आ रही है ना, अब भी ये कह रहे हैं ओ कुछ नहीं हो सकता। ये है सोच हमारी, लोग तैयारियां करके बैठे हैं, पैसा बहा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर ब्लैक ऊपरे चला रहे हो, आप लोग यहाँ पर इनके नीचे काम कर रहे हो, हालत ही कोई नहीं है आपकी। मैं बीच में मैं भी हूं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, शाह साहब अकेले क्या कर सकते हैं, बता ही सकते हैं ना, दो चार बंदे 10 हो क्या कर सकते हैं अकेले, इसके तले सारों को मुतरद होना पड़ता है। ये है हमारी सोच, कोई बात बता रहा हो शाह साहब बताते थे ना, या आपने खुद ही बताया, मैंने भी सुना था, मैं बता रहा हूँ, ये आगे से उसको टीज करते हैं, टिचकर करते हैं, ये लोग नहीं ऐसे करते, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्रांच आपके पास थी, सबसे ज्यादा आप हैं, कब्जा वो कर गए हैं आपके ऊपर आके, और वो चला भी नहीं दे, उनका कोई मालिक टैक्सी नहीं चला रहे, जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो आप चला रहे हो, आपको आगे जोता हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, कब्जा उनके पास है, सारा मार्केट सारी उनके पास
0: तो
1: है।
0: शायद अगर तारीख को देखा जाए तो जब अंग्रेज आया था इंडिया पाकिस्तान में तो उनके भी लोग बहुत कम थे।
1: आपने आज फिर मुझे वो बात याद दिला दी है, जब अंग्रेज आया था ये इंडो पाक में, ये सब कॉन्टिनेंट में उसने कदम रखा था, वो फौजी थोड़े थे, वो तो एक बिजनेस, वो ताजर थे, उधर आए थोड़े से लोग थे, ये उनके पास हाथ जोड़ के चले गए, इन्होंने जाके एक दूसरे की शिकायतें लगानी शुरू कर दी, गोरा देखा उन्होंने, जब चमड़ी पहली बार देखी, ये जो पूरा ये पूरा हिता था, ये इकट्ठा ही था ना, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश, ये जब पूरा हिते ने देखा इन लोगों ने, इन्होंने जाके उनके आगे हाथ फैला दिए, उन्होंने फिर जाके अपने वहां पर बर्तानिया में जाके बताया कि वहां ये हालत है, आप क्या कर रहे हो, आप तो उधर उधर अफ्रीका में या दूसरे मुल्कों में आपका राज है, इधर भी आ जाओ, ये तो बहुत बड़ा एक सब कॉन्टिनेंट, एक बरसगीर बहुत बड़ा है। वो अंग्रेज क्लेवर ताकतवर तरीन एम्पायर था, उन्होंने जनाब शिप भरा, शिप लिया, उसमें 1,000-1,200 बंदा था, आए उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कब्जा ट्रैक नहीं किया, उन्होंने फिर जाके इनके दिमाग स्कैन किए। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ पूरी डिटेल के साथ, ऐसे हुआ था इनके जब दिमाग स्कैन किया, उन्होंने कहा ये तो सारे के सारे जो हैं तकरीबन, बल्कि सारे को, ये तो सारे एक दूसरे के खिलाफ हैं और एक दूसरे के टांगे खींचने वाले हैं, ये तो अपने मुल्क, ये बरसगीर है, इसकी सके ही नहीं है, ये तो सब, मैं गद्दार लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, बड़ा फिर सख्त हो जाता है,
0: चले
1: ये
0: मीर
1: एक
0: जाफर मीर
1: दूसरे की
0: सादत
1: है ही नहीं।
0: कह लें।
1: हाँ मीर जाफर कहते हैं, ये तो मीर जाफर है, एक दूसरे के लिए सारे ही, ये तो हमें बता रहे हैं, एक दूसरे की शिकायतें एक लगा के जाता है एक वो, और हम क्या है, उन्होंने कहा हम वो अंग्रेज क्या था, एक आम इनकी तरह इंसान था, इन्होंने उसको अपना खुदा मान लिया, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही है, फिर उन्होंने जब इनकी कमजोरियां सारी उनके पास आ गई, उन्होंने फिर, और इजी उन्होंने कहा ये लोग है, ये तो अफ्रीका से भी इजी है, पहले तो अफ्रीका इजी टारगेट था, अफ्रीका के लोग देखे क्या हाल है, कब्जा किया हुआ अभी भी, ये कहा ये तो अफ्रीका से भी इजी है ये लोग, ये तो मुनाफिक भी हैं, मीर जाफर भी हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। फिर जनाब उन्होंने इनके डीएनए भी खराब करने शुरू कर दिए, खराक इनको ना सही, जब गुलाम बनाया ना, जब गुलाम बनाते हैं ना अगले, फिर उन्होंने
0: लेकिन
1: 200
0: शायद ये
1: साल इनको,
0: बातें तो आपकी दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ डेनमार्क में, डेनमार्क तो ये एक वेलफेयर स्टेट है और ये खासकर लेबर पे चलता है, तो लेबर में बहुत सारे लोग होते हैं, टैक्स तो उनकी तरफ से जाता है, तो ये मुल्क तो चलता ही टैक्स से है।
1: आपको पता है कि डेनमार्क के पास जब ये आया था कोरोना, तो उसके ऊपर बहुत बहुत बड़ी फर्मों को, छोटी फर्मों को, बहुत से उसमें से काफी फर्में थी जिन्होंने फाके लिए थे, कितने कितने कई बड़ी फर्मों ने कितने कितने मिलियंस के, और डेनमार्क ने उस वक्त 800 मिलियन से लेके 800 बिलियन, मिलियन नहीं, 800 बिलियन ये फाके दिए थे स्टेट ने, तकरीबन सारे के सारे पाके वापस ले लिए उन्होंने, तकरीबन। उनमें से बहुत से लोग थे, बहुत सी फिल्में थी जिन्होंने झूठ बता के लिए थे अपने पाके। और ये जो अभी आप बता रहे हैं टैक्स का, इनका सबके ऊपर नजर होती है, ये सबको खाने देते हैं, इसको उनसे करो, लेकिन ये बड़े आराम से आते हैं और आराम से आके पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं है ये। तो वो उन्होंने अपने 800 नहीं तो कम से कम 600 बिलियन डॉलर वापस, तकरीबन सॉरी डॉलर नहीं करोन वापस ले लिए या आ चुके हैं उनके अकाउंट।
0: लेकिन ये जो आप साथ साथ कह रहे हैं, ये कंपनियां सारी बाहर से आ रही हैं।
1: बाहर से ऐसे नहीं आती, आपकी स्टेट इसके अंदर एग्री होती है, बाहर से आना अच्छा शुगन है, आपका सरमाया बाहर से आता है। ये सरमाया जब बाहर से आ रहा है, गाड़ी आई है ना आपकी 600, 800, 1200, वो सारी खरीदी गई है इधर से, टैक्स दिया है उसका, मम्स दिए गए हैं यहाँ के मुताबिक, जो जो उनके प्रोटोकॉल हैं, मुझे नहीं पता जो बाहर से कोई फर्म आती है उनके साथ इनके क्या रिलेशन है, उनका क्या प्रोटोकॉल है, उनका क्या इनके साथ आउचेल है या अग्रीमेंट है, ये तो वो जानते हैं, ये या ये जानते हैं, ये तो आप मेरे पढ़ भी सकते हैं जाके बिजनेस अफेयर जो उनके UVMs, उसमें आप मेरे सच चीजें खुली रखी हुई हैं तो उनके साथ। लेकिन ये बाहर से सरमाया आता है और बाहर से सरमाए को ये उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। जब तक तो आपके मुल्क में बाहर से सरमाया नहीं आएगा, आपका मुल्क नहीं चल सकता। ये राजा साहब, इन्होंने अपना मुल्क टिकटॉक और कहते फोटो इश्तेहारों में थोड़ा चलाना है, कभी देखा है जनमार्ग फोटो इश्तेहारों टिकटॉक में चल रहा है?
0: और टैक्स हर हालत में लेना ही लेना है,
1: टैक्स हर हालत में लेने ही लेना है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो सड़क छाप है, चाहे जो ही उस वापिस मार्केट में वाया ना, चाहे उसने 1 रुपया भी कमाया हो, टैक्स छोड़ना नहीं है उन्होंने आपसे, ना मम छोड़ने हैं। तो वो बातें ये गलत हैं, ये छोड़ते नहीं है, चाहे उसको 4 साल बाद पकड़े 10 साल पकड़ लेते हैं ये। तो ये हालत होती है।
0: की बात आप कर रहे हैं, इस ब्रांच की आप बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लेबर लोग काम करते हैं, तो उसके तो देखें बड़े बड़े जब स्टोर बनते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खुलती हैं, 2 साल 3 साल रहती हैं, बंद हो जाती हैं, साल रहती है, अगर आप एक बार नहीं साल बाद दूसरे स्टोर में जाएं तो वो दुकान वहाँ मौजूद नहीं होती। ये क्या होता है, या किराया कम रखते, इसी तरह ये सहूलियात तो गवर्नमेंट नहीं देती, वो कहती है हम तो टैक्स और मम्स ले रहे हैं लेकिन इनको सहूलियात दें, कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं।
1: ये चीज़ें तो, ये जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं किसी किसी ब्रांड के शोरूम्स, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। वो आए हैं चाहे यहाँ पर 10 लाख किराया है, चाहे 5 लाख करोन किराया महीने का वो देते हैं, उसमें वो शोरूम का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर आपकी कोई सेल हो रही है, क्योंकि सेल तो उनकी ऑलरेडी नेट के जरिए है, दूसरी दुकानों जो दूसरी छोटी दुकानें हैं जो उन्होंने खोली हुई हैं, वो ज्यादातर ये फ्रेंचाइज होती हैं। तो जो शोरूम्स होते हैं वो बड़े बड़े, वो सिर्फ वो डिस्प्ले ही आप समझ लें, वो डिस्प्ले होते हैं वो दिखाने के लिए, वो बंद भी हो जाते हैं, खुलते हैं किसी और जगह मूव हो जाते हैं। ये बताता चलो कि डेनिश गवर्नमेंट दुनिया की अमीर तरीन कौमों की स्टेट में से एक स्टेट है, इनके बहुत बहुत पैसा है टैक्स का इकट्ठा किया हुआ, इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया है 2000 के बाद, इनके पास इतना पैसा है कि आपकी सोच से, हालांकि इनके पास तेल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, तेल के बगैर, मादनी जहायर के बगैर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है इनके पास। हाँ, बड़ी कंपनी इनकी अपनी है नोवो नॉर्डिस्क, उनके पास जो मेडिसिन बनाती है सबसे बड़ी कंपनी है, जो बहुत ज्यादा जिस जो जो है ना सरमाया लेके आती है, यानी कि दूसरे मुल्क मुल्क अपने दूसरे ममालिक में अपनी दवाइयां जो है ये वो बेचते हैं, और उसके पास और भी छोटी मोटी दवाइयों की कंपनी है जिससे डरमारों को बहुत फायदा होता है। लेकिन ज्यादातर इनका जो पैसा है वो टैक्स जो कलेक्ट है वो होता है, और वो लोग इनके टैक्स देते हैं वो खुशी से, और इनकी जो लोग हैं वो जो अमीर हुए हैं वो 2000 के बाद, आम लोग जो अमीर हुआ है जिसके पास पैसा आया आपके सामने है, वो सब अब 3-3 गाड़ियां, किसी के पास 4-4 गाड़ियां, 2-2 गाड़ियां आम हो गई हैं। ये मैं डेनिश लोगों की बात कर रहा हूँ, और 8-10-15 हजार तनखा नहीं है, 60-60-70-70 हजार ऊ बचेल, 50-50 हजार ऊ बचेल, यानी के टैक्स कार्ड के पैसे दार हो रहे हैं। इतना इतनी इन्होंने तरक्की की है, और तलीम में भी ये लोग बहुत आगे गए हैं, इनके बच्चे आप 90s वाला 80s वाला डेनमार्क जो है वो बिल्कुल उसको लाके तस्वर में, तो आज का डेनमार्क देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार इन्होंने 25-26 सालों में तरक्की की है, कैसे की है। और वो यही है, आपके 25-26 सालों में बाहर से कंपनियां बड़ी आई हैं, और होटल आपके कोपनहेगन में 100-150 होटल तो मेरे सामने बना है, बड़ा बड़ा होटल, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, आप भी जानते हैं इसको। कोई 90s 80s में कोई खास होटल नहीं थे इधर, मांस वाले वेस्टपो ईस्ट तक, ये कोपनहेगन में बात कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत इधर उधर, ये होटल सारे बन गए क्योंकि उनको जरूरत थी। होटल इसलिए बनते हैं जब आपके मुल्क में सरमाया आ रहा है, बिजनेसमैन आ रहा है और टूरिस्ट आ रहा है और लोग आ रहे हैं आपका मुल्क देखने के लिए। बिजनेसमैन आता है उसको होटल चाहिए होता है, टॉप के होटल बनाए हैं उन्होंने और बहुत ज्यादा बनाए हैं, और उसके बाद आपके मुल्क में टूरिस्ट आता है बहुत ज्यादा। हालांकि छोटा सा कोपनहेगन है, बस मैं भी सोचता हूँ क्योंकि मैं इधर ही रहा हूँ जंपल, यार इधर क्या है देखने के लिए, दो तीन जगह है, उधर चले जाओ, हाफ वो ट्वाली चले जाओ या क्या कहते हैं उसको, वो न्यू हॉर्न चले जाओ, और मुझे तो और कुछ नहीं लगता इधर। तो लोग आते हैं, इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, मशहूरी की हुई है, ये सिंसियर है अपने मुल्क के साथ, ये लोग, ये इन लोगों ने किया है, हम नहीं है, बात माननी चाहिए उसको। जब ये, हाँ मैं ये भी एक ऐड कर दूं, 100 साल पहले ये लोग भी बहुत परले दर्जे के थे, इसमें करप्शन थी, ये लोग जमहूरियत पसंद नहीं थे 100-150 साल, लेकिन इन्होंने फिर दूसरी कौमों से सीखा है, ये सीखते हैं, ये हाल ही क्या कहते हैं टिकटॉक, मशहूरियां, फजूल किस्म के इश्तेहार, बड़े बड़े मेरी फोटो लग गई बाहर, लगी हुई है चराहों में, देखा कभी आपने डरमारे में किसी की चराहों में, इलेक्शन के बाद देखा किसी ने किसी मेयर की चराहों में फोटो लगी हुई है कि इन्हें काम कराया है, और लाना था काम तू कराया, तेरा पैसा है, मैं काम कराया, ये तो कवाम का पैसे थे सहन किया ही, कराया तू काम, वोट ले ही नहीं तो काम करा, हूं मैं काम कराया, पैसा मेरा है, मेरे मुल्क का पैसा है, खजाने का कट के, तो तू कहना मैं काम कराया, इस करके वोट लिया ना तू, ता फिर तू काम कराना है, तू सहन नहीं किया, ये है यहाँ की, ये
0: शायद
1: सियासत,
0: आप
1: यहाँ के
0: बताएं,
1: लोग।
0: आखिर में हमारा टाइम अभी इजाजत नहीं दे रहा, 5-6 मिनट है, आप बताएं इसका हल क्या है आने वाले दिनों में अपने लोगों को। आप देखें, आपके स्वीडन में इलेक्शन भी होंगे, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया, आप दोनों मुल्कों के शहरी हैं, यहाँ का हाल तो आपने देख लिया, कभी इस डेनमार्क में 40,000 की आबादी में हमारा कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, और आपका भी जो है स्वीडन में कोई पाकिस्तानी शायद पार्लियामेंट का मेंबर है या नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। आने वाले सितंबर के इलेक्शन में अगर आपका भी वही हाल हुआ यहाँ जो डेनमार्क में हुआ, तो फिर आप क्या कहेंगे?
1: बड़ी अच्छी बात की है आपने, आपने डेनमार्क की, फिर मेरे वो, क्योंकि मैं फिर कुछ वो आ जाता हूँ, थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ,
0: भाई वतन है
1: मैं फिर उधर
0: आपका।
1: चले जा, मैं कि ये क्योंकि एक 60 साल की एक एक वो हमारी वो इन वंता जो है वो बहुत ज्यादा है, हिस्ट्री है, 40-45 हजार बंदा है इधर पाकिस्तानी, और वैसे तो मुझे खुद भी, मैं अपनी बात करूंगा यार, किसी को मैं क्या ब्लेम दूं, को किसी को कहूंगा तुम्हारे तो लोग तो ये जो है तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते, इतने हम बेशरम हो गए हैं, यानी कि जो चीज हुई है उसको तो बर्दाश्त कर लो ना, अब की है आप लोगों ने, यानी कि 5 के 5 बंदे हार गए यार, जब मैं इकट्ठा बैठा होता हूँ ना मैं अपना, तो मैं देखता हूँ कि यार अपने ऑफिस में बैठा, मैं अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपने दफ्तर बैठा हूँ मैं, 5 दे 5 बंदे हार गए यार, फिर मैं देखता हूँ कि यार इस हारने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा, ये नहीं कि उस हारने के बाद सीखना होता है ना, अपने दूसरों से सीखना कि मैंने क्या गलती की है। मैं अब स्वीडन की करूंगा बात, 26 सितंबर 13 सितंबर को इलेक्शन है, गालिबन यहाँ भी कोई पक्ष, बदकिस्मती से, यहाँ खुशकिस्मती दिन में कहूंगा, बदकिस्मती से कोई पाकिस्तानी यहाँ पर कहीं कहीं भी नहीं है, किसी भी खाते में नहीं है, तो उसका उसका जो है करूंगा बात, तो लंबी तकरीर हो जाएगी, क्या वजह है ये सबको पता है, पता सबको है, लेकिन उसका हाल जो है, हाल ऐसे नहीं होना बातों से, हाल आपने मुतहिद होके करना है। आपने डनमार्क की मिसाल ले लें, जीती है ना लड़की एक अफगान आजाद है, 86-84-85 में आए उसके अबाउजदाद, इधर कितने अफगानी है डनमार्क में, 10 हजार होंगे, 5 हजार, मैं गलत नहीं हूं, जीती है ना, आई है ना, उसके बाद वो मिनिस्टर है आज
0: लेकिन शायद एक
1: इंसाफ की
0: पहली
1: कुर्सी।
0: बार देखा, जो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, को वज़ीर बनने के बाद किसी ने बात की हो अलग-अलग चीज़ें, लेकिन गैर मुल्कियों ने उसके बारे में कोई बात नहीं की, खुशी महसूस की है।
1: मैंने खुद खुशी महसूस की, मैं ये तो बता रहा हूं, एक अफगानी गैर मुल्की जीत गई है, 10-5 हजार उनकी कम्युनिटी है, आप लोगों की तो 45 हजार है। बातें कम करते हैं ये जो लोग है ना गोरे, ये बातें कम करते हैं, खौड़ मुख्तसिर बात करके जो सियासतदान है खौड़ बात करता है और मुख्तसिर करता है, जैसे आनस वो हाशमुस जिंदा। मैं आनस वो हाशमुस को पर्सनली 6 दफा मिला हूं, वो बात नहीं करता था, सिर्फ मुस्कुराता था, उसे जो भी बात मैं करता था वो मुस्कुराता था, कैसे देता था, कोई लंबी लंबी, उसको पता था लंबी लंबी बात मैंने करनी नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन सेशन होता है वो एक और चीज है, लेकिन जब वो बाहर होता था, आपने मीडिया में भी उसको देखा हुआ है, बात कम करता था। मैं उससे मुतासर हुआ था, आनस वो मेरा, मैं उस पार्टी से नहीं हूं लेकिन उससे मुतासर हुआ था मैं तो। लिहाजा आप जो, हम जो लोग हैं ना, बातें कम करें। ये नहीं कि मैं वो मिसाल दूंगा तो फिर आप कहेंगे ये शाह साहब क्या कह रहे हैं, ये नहीं कि करना कुछ नहीं तो गलना
0: नहीं, लेकिन कहीं ये फिर इल्जाम ना आ जाए कि राजा साहब शायद से झूठ मरवाते हैं जिस तरह शाह साहब के बारे में करते थे।
1: ये तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इसका बात कर रहा हूँ, राजा साहब नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप बातें खौट करें सारे और करें कुछ, लेकिन अब तो आपको 4 साल बाद, 4 साल से पहले तो आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते किसी भी। अब आप उस 4 साल में देखें कि आपने क्या कोताहियां की हैं, वो उसको उसका एनालाइज करें अपने आप से सारे, और फिर मैंने तो इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, जिसने भी खड़ा होना है उसे करें कि क्या गलतियां हुई हैं, उनसे क्या गलतियां हुई हैं, आने वाले 4 सालों के बाद क्या क्या क्या गलतियां हुई थी जो मैंने अब नहीं करनी। छोड़ दें, मैं फिर कहूंगा, जब आप डेनिश सियासत कर रहे होते हैं तो छोड़ दें उसके अंदर देसी टच देना। आप अपने यहां पर लोगों को जाके बताएं, पाकिस्तानियों को सबको एक एक एक एक वो एक जो होता है एक एक समझ के, एक ही झंडा, वो है स्वीडन अपना डेनिश। जब आप डेनिश जैसे करें डेनिश झंडा, जब आप फॉरनर से मिलने गए हैं पाकिस्तानियों से, फिर 7 पाकिस्तानी डंडा भी रख सकते हैं, क्योंकि आप इन वांता जो है उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरी पार्टियों के वहां पर झंडे रखेंगे साथ पाकिस्तान के, फिर आप इलेक्शन हार जाएंगे, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। ये है, इस ही मैं स्वीडन की भी बात करूंगा, अगर स्वीडन में भी यही गलती

0: ये भी कह सकते हो आप, फिर जिसके साथ आपने वादा कर लिया
1: है, देखे ना हमारे पास कल्चर सेंटर है मसाजिद की शक्ल में, मसाजिद हमारे पास मौजूद है, टैक्सी ब्रांच तगड़ी अच्छी खासी मजबूत है, इसी तरह मीडिया क्लब बने हुए हैं, शायद आपके नॉलेज में होगा, मैं तो नहीं जानता, आप पता नहीं कितना जानते हैं, तो ये तरक्की याफ्ता तो हम है, ये कैसे कह सकते हैं हम तरक्की याफ्ता नहीं है?
0: राजा साहब, तरक्की याफ्ता सिर्फ हम अपने अपनी जो आप बात कर रहे हैं ना वहां तक है, बात तक है, प्रैक्टिकली कहीं भी तरक्की याफ्ता नहीं है हम, बातों तक है, पंजाबी च कही ना गल्ला करा लो जिन्नी मर्जी। मैंने अभी आपको टैक्सी का बताया क्या हालत कर ली, हमारे हम टैक्सी हमारी पास थी, पाकिस्तानियों के पास थी ये कब्जे में, अब आपसे जा रही है ये सारी ब्रांच, बल्कि चली गई है आपसे, अब आप सिर्फ स्लेव हो सारे, अब वोन मनी भी आपसे खत्म हो जानी है जो रह गई है। क्या ही अच्छा आप इस बिजनेस के साथ साथ तब भी कोई और बिजनेस भी करते, जैसे डेनमार्क में आपको काफी उन्होंने चांस दिए थे, ये देती है गवर्नमेंट चांस, ये कहने को गलत है कि जी जब आप फेयर करेंगे काम, जब आप जेन में नियत रख के काम करेंगे, जेन में बदनीता नहीं होगा कि मैंने ये करना है, मैंने ये फ्रॉड करना है, जब फ्रॉड का जेन बना के कोई काम शुरू करेंगे तो फिर तो नहीं ना, फिर आपकी
1: आखिरी सवाल है, शायद आपसे आखिरी सवाल है कि यहाँ रहते हुए हम डेनिश सियासत करें या अपने मुल्कों की पार्टियों की सियासत करें?
0: अगर आपने इन मुल्कों में रहना ना, मैं आज चले आपने ये बात कर ही दी है, पहले आप इन मुल्कों की सियासत को समझें, इसमें हिस्सा लें, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपकी अपनी कोई इज्जत हो इधर, आप अपने आप को इतना बनाएं कि आपके बंदे ही पार्लियामेंट के अंदर हों, फिर आपको अच्छा भी लगता है अपने मुल्क की सियासत सियासी पार्टियों में करना। अगर अच्छा चलें ये भी मैं बात कर लेता हूँ, अपनी पार्टियों की जो अपनी सियासत की बात की इधर की, यहाँ की जो मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की पार्टी की, उधर क्या कर लिया हमने, आपने देख ही लिया क्या हाल है उधर, उधर भी लड़ाई बजाई शैतानियां, अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, उसके अंदर भी सदर हैं, अलामती सदर जे, यानी कि पाकिस्तान दाखिल हो लितर नहीं कोई मारदा नो, ते इत्थे अलामती सदर बनया दा है, हर कोई एवं कागजा च मैं जी फलाना टमकी टमकाना मैं सदर हाँ, मैं जी मैं वो हजांची, मैं जी नायब सदर हाँ, तोवा वो तेनों ते पाकिस्तान दाखिल होंगे तेनों तो लित्र नहीं कोई मारदा, ताकत नहीं तेरे वाल, तो तू इत्थे सदर है। मैं सब पार्टियों की ये चीजें निकालनी है आपको, पहले यहाँ पर आप जमाएं ताकि कुछ चंगा लगे तो काम कर दिया, कोई आपके पास कोई हो बताने के लिए दुनिया को कि हम इधर की पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, इधर हम अमलदारों के अंदर हैं, हम इधर हम क्या कहते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इधर हमारे पुलिस के अंदर हमारी जो इधर क्या कहते हैं इफ्तारी कुलसी उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, हमारे जज हैं लोग, फिर अच्छा लगता है कि आप अपने मुल्क की भी सियासत कर रहे हैं साथ साथ, आप इसके मुतहम्मल नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता, भैड़े लगते हो सारी, सबकी बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं मैंने लिया, सब पार्टियों की चंगे नहीं लगते, किसी तरीके से छिलक मजाक बनते हो, यानी कि आपकी शक्लें देखें पहले, ना बात करनी आती है, ना खड़े होने की तमीज है, ना चलने की तमीज है, ना किसी महफल में बैठने की तमीज है, ना किसी मीडिया के सामने बात करने की तमीज है आपको, मैं अहदेदारों की बात कर रहा हूँ जो बने हुए हैं अलामती, मैं तो नहीं ना अहदेदार ना बनना चाहता हूँ ना बनूंगा, तो मेरे ये यही पैगाम राजा साहब कि ये छोड़ दें ये चीजें, आप पहले फोकस करें यहाँ की जो लोकल डेनिश सियासत जहां पर रहते हैं उधर करें, और वो भी पता कैसे, बगैर किसी हरामजिदगी के, सॉरी टू माई वर्ड्स, बगैर किसी मकारी के, बगैर किसी लूमड़ बन के, ये जो लूमड़ी हैं, जेन साफ करके बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, बेचारे यहाँ पर सियासत में भी आना चाहते हैं, उनको ब्रेन वॉश ना उनके करें, उनके साथ शैतानियां ना करें जाके, की है पता है मुझे, तो उनको करने दें, जब वो यहाँ की सियासत मिसा लेंगे फिर वो यहाँ के मुताबिक चलेंगे, और वो फिर आपको लेके आगे आएंगे, आपको पाकिस्तान को रोशन करेंगे, लेकिन आप नहीं रोशन करने दे रहे पाकिस्तान को, क्योंकि खुद तुसी किसी जोगे नहीं रहे, किसी काबल नहीं है ये, देखिए इनकी वर्थ किसी की है बताएं मुझे, किसी एक की वर्थ बता दें राजा साहब, जीरो सिफर, तो यहां पर आके हम मार खा गए, जब मैं मुझसे ये कोई ऐसी बात करे ना मुझसे, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, जैसे डेनिश में

0: सिखाया है, अगर मैं गलत, ये एक्सेप्ट नहीं करते, ये आगे से बगैरत बन के कहते हैं नहीं नहीं। जब आप गलती तस्लीम करके एक्सेप्ट करोगे आप कामयाब हो गए। यही अल्लाह ताला ने भी सिखाया चारों किताबों में, कुरान पाक में, बाकी तीनों किताबों में, तौरात जंजीर से ज़बूर से लेके ये क्या कहते हैं बाइबल में भी। इन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, सीखा है। ये लोग भी मैं बताया ना जंग जो लड़ने वाले जहालत में डूबे हुए आपस में लड़ते थे ये, लेकिन वो था उसकी मिसाल नहीं देनी कि वो भी अंजन असी अंज रहना है। आपने अब इनसे ये सीखना कि ये अच्छी जो बातें हैं, बुराइयां तो हर कौम में होती हैं, उसकी सजा मिलती है, पुलिस है हर माशरे में, लेकिन आपने इनसे अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है। वो नहीं हम कर रहे, हम नेगेटिविटी में है। सारा दिन एक कौम लगी हुई है टिकटॉक में, उन्हें राजा साहब की आगे बदना है, और क्या उनकी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक कौम सारा दिन सुबह से लेके 28 करोड़ बंदा टिकटॉक से बैठा था, खान नो रोटी नहीं है, 70% 80% जो है मर गए हैं बिजली से, पानी से, हर चीज से। 3 टाइम की रोटी नहीं है पूरी, 8,000 कहते ने तनखा च गुजारा करो,
1: शायद एक बड़ा
0: 8,000 रुपए च कहते ने गुजारा करो, यानी कि हुन खून चो हुन खून च गुजारा कर लो। ये वे तुहाडी यानी कि इस कौम की कात, यानी कि शर्म नाल यार चुल्लू भर पानी च जाके इन्ने सारे ओहदे च डुब जाओ सारे, जिन्हों कह क्या गया 8,000 च गुजारा कर लो।
1: मैं आपको बताता चलूं, आप बातें कर रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, लोग भी सुन रहे हैं, हमारे सामने नाज़रीन भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हर आदमी को अपना हक है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जमहूरियत इसी तरह होती है, आप एक दूसरे को हक दें। लेकिन आप देख रहे हैं, आप इनको बुलाएं भी, इनके इंटरव्यू भी लगाएं तो वो लाइक नहीं करते अपने इंटरव्यू को, शायद मुझे कोई फायदा होगा।
0: राजा साहब मैंने किसी की इंडिविजुअली बात नहीं की, आप देख ले मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ सबकी। आपने सवाल पूछा था कि यहाँ पर अपने मुल्क की सियासी पार्टियों को लेके चलना चाहिए ऐसे, मैंने उसका राय दी है। जब आप यहाँ की लोकल सियासत डेनिश में कामयाब नहीं है तो आप किस मुंह से अपनी पार्टियों को चलाओगे? ये नहीं कि आपको आप इसके मुखमल है,
1: सदर कोई नहीं कहता, वहां तो आप सदर लिख लेते हैं ना
0: आप। मैं ये तो कह रहा हूँ लामती सदर खुद ही लिखे दे, और पाकिस्तान जाओ लित्र नहीं को मारना एक, मैं लामती सदर है जी पेपर च, ओ फलान टमकाना सदर है, ओ जी ओ की कहते ने वो कहते नाइब सदर है।
1: शायद इसे लामती सदर पे, इसे लामती सदर पे बात करेंगे, अब टाइम इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान है तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, फिर लामती सदर की बात करेंगे।
0: चले ठीक है, थैंक यू जी, आपका शुक्रिया।
1: समय नाज़रीन ये थे शायद नसीम, जिनकी आप बात सुन रहे थे। समय नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, राय देने का हक है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ कहने की बात करने की आज़ादी है। समय नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: जिला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। शाम के 4 बजा चाहते हैं 21/6/2026 का प्रोग्राम है। इस वक्त जो है वो धूप और गर्मी अपने जोबन पर है, सियासत जो है वो छुट्टियों पर है, लोग जो हैं वो सियासतदान छुट्टियों पर चले गए हैं और जो बाकी पार्टियों में वो भी छुट्टियों में हैं, तो लेकिन कुछ लोग जो है अपनी कम्युनिटी को अपने लोगों को मालूमात देने के लिए फिर भी अपना कीमती टाइम निकालते हैं और वो शेयर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वक्त तजिया नगार अदनान अली अमीन जो हमेशा की तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं। तो अदनान, एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कैसे हैं राजा साहब?
0: अल्लाह का एहसान है। कैसा है मौसम? तो आज माशाल्लाह बहुत गर्म है, सियासत तो ठंडी हो चुकी है चूंकि छुट्टियों पे चली गई है।
1: हाँ राजा साहब, ये तो है, मौसम कहते हैं समर थोड़ा आगे, और यही क्या कहते हैं, और सियासत जो है वो तो अब थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। 3 कह रहे हैं 1 मंथ, तकरीबन जुलाई का मंथ और जून का एंड, तो अगस्त में ही जाके शुरू होगा। मगर अब कह रहे मेले का सीजन आ गया, हर हफ्ते मेले लगने हैं।
0: अब 12 हफ्ते मेले लगने हैं और एक दूसरे से डेटे भी पूछी जा रही हैं।
1: हाँ जी, ये तो है कि बंदा कह सकते है कि 27 जून से लेके 19 जुलाई तक सारे वीकेंड बुक हो गए हैं, तो अब देखते हैं कि किसका किसका पारा पारी होता है।
0: लेकिन आप क्या समझते हैं कि मेले खिदमत खल के लिए होते हैं या कि इनकम का जरिया होता है?
1: दरअसल इसमें तो दो राय, देखिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मेले का ये होना चाहिए कि लोगों को जजमेंट मिले और लोग खुश हों, लोग इकट्ठे हों और इससे अपने अपना जो कल्चर है उसका पता चले। और समर में तो यही बंदा कह सकता है कि हम जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत चीज है मैंगो, उस पर मेले लगने लग पड़े। जैसे आपको मालूम है, हम व्यूअर्स को बता देते हैं, 27 जून को एक अबरूंदी में, 4 को है एक एब्सलोन में, और 11 को भी एक एब्सलोन में है, और सब फिर जो 19 को डी पैक बड़े लगा रहे हैं एक हॉल के अंदर, शादी हॉल के अंदर, तो देखते हैं अब किसका। इसमें तो यही बंदा कह सकता है कि लोगों को शो करें, और इस पे ये तो ब्रेकिंग मेरे पास तो मैंने नहीं अभी तक देखा, मगर मुझे कल ही पता चला था किसी से, क्योंकि मेरा पार्टिसिपेट होता हूँ एक में, कि ये टैक्स वालों ने कुछ नज़र रखी हुई है इस पे, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों नज़र रखी हुई है इस पे, उनको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मगर देखते हैं अब इसका क्या। हम
0: लेकिन टैक्स की आपने बात की है, तो टैक्स ने किस चीज़ पर नज़र रखी हुई है? हालांकि लोग वहां तो जाते हैं, वो कोई टिकट वहां नहीं होता, लोग फ्री विली लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं और उन्होंने पेमेंट पे जो है स्टॉल लिए होते हैं, ये तो कोई छुपी चीजें होती नहीं है।
1: दरअसल मेरे ख्याल से मसायद ये है कि मैं तो इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पे बात तो नहीं कर सकता कि टैक्स लॉ क्या है, टैक्स का सिस्टम क्या है। मुझे बस ये पता है कि जो होता है ना, एक सर्टन इनकम होती है, और टैक्स वालों की नज़र हो तो पता नहीं वो क्यों इनकी नज़र है, ये शायद ये समझ रहे हैं कि लोग काफी पैसे कमा लेते हैं और उससे टैक्स नहीं दिया जाता, और क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, मगर थोड़ा बहुत उनका नजर तो है इस पे। मगर मैं इंशाल्लाह ताला ये कह सकता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं होगा, कुछ कपल ऑफ मंथ, क्योंकि अभी ये प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, मगर उनका हो सकता है यही हो कि इस पे से टैक्स नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं नजर रखी हो। बाकी मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इस और क्या वजह हो सकती है।
0: अदनान देखें, छुट्टियां होती हैं, फैमिलीज को जो है वो उनकी भी बेचारियों की छुट्टियां होती है, उन्होंने भी किसी से मिलना जुलना होता है, बाहर जाना होता है, तो स्टार लगते हैं, रौनक लगती है। अब देखें सबसे पहला जो प्रोग्राम अभी 27 को होने जा रहा है, तो उन्होंने कोई टिकट नहीं रखा हुआ, मैं किसी ने भी कोई टिकट नहीं रखा हुआ, लेकिन स्टार के लिए थोड़ी बहुत ही वो खर्चे के लिए होता है कि सफाई वगैरह का जो इंतज़ाम होता है। अब स्टॉल वालों को भी चाहिए ना कि इसको भी वो भी तो अपनी सर्विस दें ना, खाली इसी नीयत में ना रखे कि हमने स्टॉल लगाया है और इसमें हर तरह से जो है वो पैसे ही कमाने हैं।
1: नहीं राजा साहब, देखिए हर एक की अपनी नियत होती है कि हर आपका अपना क्या कहते हैं वेरो

0: सकता है कि लोगों ने कैसे करना है। जिस चीज के अंदर मेरी काफी सालों से पार्टिसिपेशन रही है, और मैंने पिछले साल भी जब ये समर फेस्टिवल कराया था मैंगो का अगस्त में, तो हमारा तो यही था कि लोगों को इकट्ठा करना है और लोगों को क्या कहते हैं बताना है कि इसके अंदर कल्चर ही क्या कल्चर है, और कि लोग इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लोगों का होता है कि औरतें मर्द और ये बड़े सारे मसाइल होते हैं कि हम अलहदा करते हैं और ये, तो उसको फिर हम एक नज़र से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं है उस तरह जैसे आप देख रहे हैं रखा रहे हैं। 11 जुलाई को जब इस पर हम करने के कर रहे हैं, जहाँ पे मैं शायद इस साल मालूम नहीं है कि मैं उसमें होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे एक सुबह ही एक दिन की इन्विटेशन आई है ओस्लो से, वहाँ बुलाया गया है प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद वहाँ चले जाऊँ, देखते हैं कि क्या बनता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट तो की है कि वो 12 जुलाई को कर ले, मगर वो फिर मेरे काम के साथ क्लैश होता है, तो फिर देखते हैं कि क्या है। मगर मेरा तो यही है कि लोगों को बताना चाहिए कि क्या है, और लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस साल पाकिस्तानियों को तो कंपटीशन भी मिलना है, क्योंकि जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी करने लगे हैं अपना इवेंट बहुत बड़ा हाउस फ्लैश पे। अभी तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया क्योंकि कोई टेक्निकल इश्यूज है, तो सर हमारा भी बनता है कि हम उन लोगों को बताएं और देखें कि
1: उनकी
0: ये
1: कोई
0: क्या
1: सियासी
0: है।
1: पार्टियां नहीं है ना मुल्क में?
0: नहीं राजा साहब,
1: वन
0: उनका एक
1: एजेंडे पे इकट्ठे
0: सिस्टम
1: होते हैं ना।
0: है। राजा साहब, उनका एक एक बात मैं कहूंगा कि आज मुझे लगता है मैं एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका उनके कुछ चीजें होती हैं जिससे बंदे को गौर से देखना चाहिए। और आप देखेंगे, आपने बात वैसे सही किया, बड़ी अच्छी बात की है कि वो एक है, देखिए उनने अपना कितना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्ट रखा हुआ है डेनिस गवर्नमेंट पे भी, डेनिस कम्युनिटी पे भी, डेनिस सोसाइटी पे भी, और इसीलिए उनके मसाइल जो है ना वो क्या कहते हैं बड़ी जल्दी हायल भी होते हैं। मैं आपको एक खबर बताना चाहता हूँ कि कल हमारा जो विलनिंग मिनिस्टर है और इंटरकशन मिनिस्टर है वो एक स्टॉल पे गया हुआ था, और मैं सफेलती अपने दोस्त के साथ वहां से गुजरा, तो मैंने उसको देख लिया, तो मेरे दोस्त डेनिस दोस्त के साथ उसके बड़े अच्छे सलाहकार हैं और उसको जानता है, मैं तो इसको बहुत सालों के बाद मिला हूँ, उसको पहचानने में भी थोड़ी मसला पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे बात 2 मिनट बात की। मैंने कहा मैंने तुमसे टाइम लेना है, मुझे इतने साल मेंबर हो गया हूँ, मैं तुमसे टाइम लेकर बात करना चाहता हूँ, मैं ये 5-10 मिनट की बात नहीं करना चाहता। तो मुझे कहता मुझे पता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पता है मुझे, ये बंदे ने मुझे बता दिया, तुम मेरे पास टाइम लेके आना, तो तुम किस चीज पे बात वैसे करना चाहते हो? मैंने कहा मैं 3-4 चीजों में बात करना चाहता हूँ, ये जो आप लोगों ने इतना सख्त ट्रीटमेंट शुरू किया हुआ है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि आप में होते हैं इस वर्ल्ड कप 25 में क्या फर्क है। मैंने कहा ऐसे लग रहा है कि आप दोनों ने मैच शुरू किया हुआ है, ये जैसे होता है ना कि तीन तीन है तो आपने उसको उसके ऊपर से गोल जाना है ना, तो वो हंस पड़ा। तो दूसरा सवाल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि 2020 में जब मछिया चिस्पाय था इंस्टीट्यूशन और रेलवे मिनिस्टर, उस वक्त भी हमने पाकिस्तान की बात की थी कैटेगरी 5 की, मसला क्या है कि पाकिस्तान कैटेगरी 5 में है इस वक्त, तो पाकिस्तान माशाल्लाह इतना बड़ा मीडिएट रोल कर रहा है ईरान और यूएसए और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट में, तो हम वाई आर वी इन द 5 कैटेगरी? कहता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने कहा बताओ मुझे क्या है, कहता है एक एक आपकी सोसाइटी आती है। मैंने कहा चलो गाली खत्म कर देती, मैं क्या मैं इसको क्या जवाब दू, मैंने इसको मैं क्या जवाब दू? उसने मुझसे ये पूछा ना, कहता है आप इकट्ठे आ जाए तो देख लेते हैं फिर। मैंने कहा देख तो बात बड़ी अच्छी की है। आवाज आ रही है राजा साहब?
1: कट गई थी, अब आ रही है।
0: ये कह रहे थे कि मैंने चकशो मिस्टर से कल बात की थी हमारी कैटेगरी 5 के बारे में भी, वो यही कह रहा था कि इस पर बंदा बात कर सकता है, मगर इसकी काफी वजह है और वो कह रहा था कि समर के बाद जब हम मिलेंगे तो फिर इस पे भी बात कर लेंगे। मैंने उससे का रिक्वेस्ट की थी टाइम की, तो उसने कहा था मैं टाइम दे दूंगा तुम्हें।
1: लेकिन ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा अदनान? इस पे तो हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं, एम्बेसी भी कोशिश करती है।
0: राजा साहब इसमें ना मैं एक रफ नहीं लूंगा, मगर मसला पता है क्या होता है इसमें ना, मसाइल ये होते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की कम्युनिटी और एम्बेसी है ना, इनको थोड़ा बहुत डेवलप करना पड़ेगा। और मसले ये पड़ जाते हैं कि जब आप अपनी सोसाइटी के अंदर, मुझे पता है कि बड़े सारे लोगों ने नाराज हो जाने और इस बात पर गुस्सा करने, मगर इसके अंदर ये भी होता है कि कुछ नेगर्स है और डेमोस्ट्रेशन हो जाए या तो कोई ऐसी चीज हो जाए ना अपने मुल्क के बारे में भी, तो फिर उसको भी ये गौर से देखते हैं। तो इसके अंदर काफी पैस्पेट है जिनको बंदे को देखना पड़ेगा और उन पे काम करना पड़ेगा, ता ही बंदा बाहर निकलेगा इस चीज से।
1: चलें, आपने बात की तरफ इशारा कर दिया। तो अदनान, आपने देखा कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, जमहूरी तरीके से हल हो जाते हैं। आप अच्छी अप्रोच करें, जिस तरह आप इंटीग्रेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारे काम अप्रोच से चलते हैं, पीआर बनाने से, लॉबी बनाने से चलते हैं। लेकिन आज जब तक काम अपना निकलते ही नहीं है, मैं किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर रहना हमने है, बच्चों हमारों ने यहाँ रहना है, हम यहाँ की सियासत नहीं करते। ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं पाकिस्तान की सियासत, जिन्होंने डिवाइड कर लिया है। जमातों के सब गुरुबार होते हैं।
0: यह सब देखे पाकिस्तान की, देखे मैं आपको यही कहूंगा कि जिस तरह से सूरत हाल बनती जा रही है ना, और जिस तरह से चीजों को हो रहे हैं मुल्क में, अब देखिए एक एक इश्यू है अबिवा मेशम जो है, उसके रेक्टर और जो प्रिंसिपल हैं, उसने परसों चौथे एक आर्टिकल लिखा था एलनेस में मुसलमानों के, क्योंकि ये जो नमाज पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके बारे में मैंने बस फेसबुक पे छोटा सा एक क्लिप लिखा लोगों को कि आपने फ्री टाइम में वो पढ़ना चाहे तो क्या मसला है। मुझे हैरानगी थी कि मुझे इनकी सपोर्ट आई है, मगर किसी हमारे वाले ने उस पे कहते हैं सपोर्टिंग में सपोर्ट पे नहीं कॉमर्स लिखा कि इस पे आपको क्या है। तो पाकिस्तानी जो सियासी जमातें यहाँ पे है, उनको ये भी गौर से काम करना चाहिए कि हम लोग को मिलके अब एक मुसलमान प्लेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का एक किस्म का, मैं आपको बात बताऊं, मैंने 2001 बाद जब से ये आया था कि अनस उसने कहा था कि उल्लंघन पुल चीक बड़ी सख्त होनी चाहिए, वो था इस वर्ल्ड कप चीक के साथ था, मगर मैंने 2026 के इलेक्शन के बाद कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि एक रेड गवर्नमेंट आएगी तो क्या कहते हैं इतना, क्या कहते हैं हैवी अटैक्स होंगे जितने इस वक्त हो रहे हैं। आप देखिए डेली दो या तीन स्टेटमेंट गैर मुल्कों पर आ रहे हैं, हाँ ना ना, हाँ ना ना, हाँ ना ना। इसलिए हमारी सारी जमातों को खड़ा होके एक पेज बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस बात को कैसे टैकलिंग करें, क्योंकि ये इस वक्त ना बड़े, क्या कहते हैं, मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गए हुए हैं, डेस्परेट हो गए हुए हैं, हम करें क्या, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि हम अटैक करते हैं मगर वो आगे से भी, क्या कहते हैं, अटैक करते हैं अगर हम इनको बताने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी सियासत जमातों को ये भी सोचना चाहिए कि हम अब चौथी पांचवी जनरेशन यहाँ आ गए हैं, तो हमें यहाँ की सियासत में भी उसी तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए जैसे हमें पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो तो सबको पता है कि कैसी है, मगर उस तरह की सियासत कहते हैं बंदा इस तरह की तो यहाँ पे नहीं है, मगर काफी चीजें सोचने की जरूरत है।
1: لیکن عدنان ایک اس پہ کریکٹر بڑا جو ہے واضح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, آپ کو عدنان کبھی کسی نے کہا نماز کیوں پڑھتے ہو, کبھی کسی نے کہا آپ کو زکوٰۃ کیوں دیتے ہو, کبھی کسی نے کہا آپ کو نیکی کا کام کیوں کرتے ہو, سوشل کام کیوں کرتے ہو. جب ساری چیزوں میں آپ کو آزادی ہے سارے کام کرنے کی, تو پھر پابندیاں کہاں سے آ گئی؟
0: پابندیاں آنی نہیں نا چاہیے. دیکھیں, آپ کو ایک بات دیکھنی چاہیے کہ کوئی بندہ اپنی فری ٹائم میں کام کر رہا ہے, کوئی چیز آپ کو کر رہا ہے, تو آپ اس کو کرنے دیں. آپ دیکھیں, سب کو پتا ہے کہ یہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, پورے اسکینڈینیویا میں جو رہ رہے ہیں, بیسیکلی تو یہ ہمارا اسلام پہ سسٹم ہے نا, جو ہم انفارچونیٹلی اپنے ملکوں میں نہیں کر سکے, تو ہم نے یہاں آگے کہتے اس کو پایا دیکھ لی ہے. تو پھر ہمیں تو ریلیجن اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے, ہر چیز کو دیکھنا چاہیے.
1: دیکھیں, جب علماء بھی ہمیں بتاتے ہیں, دینی مذہبی لوگ بھی بتاتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ہر بندے کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے. جب مذہبی ادارے بنے ہوئے ہیں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے تو سیاستدان, جو ہمارے لوکل سیاستدان ہوتے ہیں, کمون میں ہوتے ہیں, تو اگر ان کو کسی چیز کا جواب دینے پہ عبور نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, تو انہیں چاہیے جائیں یہاں اسلامی ادارے بنے ہوئے, جا ان سے جا کر سوال کریں, ہم نے تو سیاست کرنی ہے.
0: دیکھیے, دراصل سب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سارے سیاستدان ہیں ان پہ بھی بڑا پریشر پڑتا ہے, کیونکہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں نا, ان کی ایکسپیکٹیشن بھی بڑی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاسی بندے ہیں نا, جو جس طرح سے ہم جو کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں, طرح جو بن چکے ہوئے ہیں, ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم کون کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کر سکتے. اور جب ہم یہ لوگ انفارمیشن دینے لگیں گے نا لوگوں کو بھی, اور سب کو بتانے لگیں گے, تو پھر لوگوں کو سمجھ آئے گی تھوڑی بہت کہ ہم کیوں نہیں اس چیز پہ کام کر سکتے. اور اس چیزوں سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں, بڑا انفارمیشن کا ہوتا ہے.
1: انفارمیشن, آپ کی بات کو میں آن کرتا ہوں. دیکھیں نا عدنان, آپ لوگوں نے جس نے بھی کیا مل کر ایک جو ہے فیسٹیول کا جو مسجد کے سامنے پروگرام بنایا, اسٹار لگے, سارا کچھ ہوا, لیکن جو پارکنگ کا, ڈیفینیٹ پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے, اس مسئلے کو آپ سب نے مل کر حل کرنے کی کوشش کی, اور آپ کو کمیون نے یا ساتھ والے رہنے والے لوگوں نے آپ کو اجازت دی. اب جس طرح اب یہ برانڈبی میں ہونے جا رہا ہے, یہ مینگو فیسٹیول ہونا جا رہا ہے, ڈیفینیٹ فیملیز جائیں گی, رش ہوگا, لوگ گاڑیوں پہ جائیں گے, اور لوگوں کو خود بھی احتیاط کرنی چاہیے, جو قریب رہتے ہیں وہ گاڑیوں پہ نہ جائے, لیکن جو باہر سے جاتے ہیں ان کو تو پارکنگ کے لیے جگہ چاہیے. تو جو کمیونز ہوتی ہیں, جو اس پہ سٹی کونسلرز ہوتے ہیں, میئرز ہوتے ہیں, ڈپٹی میئرز ہوتے ہیں, تو انہیں چاہیے نا کہ وہ خود بھی انیشیٹو لیں. جب تک تنظیم, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ لوگ آئیں گے تو ان کے لیے یہ مسائل ہوں گے.
0: دیکھیے راجا صاحب, ہر چیز کا نا ایک ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ سے ہی بات کی ہے, برابستان والوں کا میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور انہوں نے بھی بہت اچھی انتظامیہ کی تھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے کہ اس سال وہ اپنا پروگرام کافی اچھا کریں گے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انہیں, کیونکہ وہ بہاری صاحب بھی وہاں پہ مول ہیں اور عرفان گرانی بھی وہاں پہ ہیں, تو وہ دونوں مل کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس پارکنگ کے ایشوز کو ہینڈل بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی دے گا, اور کوئی کیا کہتے ہیں نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ویورز کو کہ جو 4 جولائی کو ہوگا, ان کے پاس بھی پارکنگ کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچوں کا ایک مینیفیسٹو ہے جو واحد ابسل قانون کراتی ہے, وہ پارکنگ کے ایریے بنا کے ہوتے ہیں, سو بندہ ان کی فوٹو کور جا کر لے لے اور ان سے ایڈوائز کر لے, تو وہاں پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں پڑتا پارکنگ کا. اور 11 کو بھی وہ بھی, وہ تو پھر ہم لوگ ہیں, وہ تو ہم نے پہلے ہی کمونوں سے رابطے کر لیے ہوئے ہیں اور اس کا حل ہم نکال لیں گے, ایون ایدن نہ بھی ہوں تو نکال کے جائیں گے کہ پیچھے سے ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں انگلی نہ اٹھا سکے. مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں کو بڑی پارکنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو صحیح علم بھی ہوگا کہ یہ مسجد کی ایک پارکنگ کے ایشو کی وجہ سے ہی سنگھ میں ایک مسجد کو منع ہو گیا تھا بنانے سے. تو پھر بندہ دیکھیے نا, ان چیزوں کو بندے نے ساتھ رکھ کے غور کر کے کرنا ہوتا ہے, مگر بات وہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جیسے باہر نکل کے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب جہاں پہ یہ 11 انشاء اللہ تعالی 11 جولائی کو میلہ لگنا ہے, उसके अंदर जो जगह थी उसके अंदर बुला के जब उनसे कुछ काम कराना था तो फिर उस बंदे को बुलाया गया था। तो फिर उस बंदे ने जब मैंने कोशिश की थी मगर इनको उस बात की नहीं थी समझ आई, मगर जब फिर वो गोरा आया था तो फिर उसने वही बात बताई थी ना ऑलमोस्ट जो मैंने बताई थी। कमून के सटली एक बजट नहीं होता, उनके काफी बजट होते हैं। ये जैसे वाइट पार्क जो है इनके 3-4 बजट होते हैं और वो अपना अपना बजट से चलाते हैं। तो जब आप लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे ना लोगों को कि कौन कौन सा बजट है और कौन कौन से बजट से पैसे बाहर निकलेंगे और कौन कौन से पुलिये से निकलेंगे, तो लोगों को क्या कहते हैं अपने आप पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसे चलती है कौन सी चीज कैसे नहीं चलती। आधे से ज्यादा लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब ये जो कमून के अंदर काउंसलर बैठे होते हैं इनका काम होता है मोस्टली वॉच करना। नीचे जो होते हैं ना काम करने वाले उनका काम होता है कि वो लॉ कीपिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इनका होता है एक किस्म का वॉच की तरह करना कि कोई काम कानून के बगैर तो नहीं ना कर रहा, कानून के अगेंस्ट नहीं ना कर रहे। तो ये बड़ी जरूरी चीजें होती है कि बंदा इन चीजों पर ध्यान रखे।
1: देखिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। आप आखिर में आप क्या कहेंगे, ये जो हम लोग स्टोरों में जाते हैं, मस्जिद में, पहले मस्जिद की बात करूंगा, हर जुम्मे पे जाते हैं, हर नमाज पे लोग जाते हैं, वजू इस तरह कर रहे होते हैं जैसे मस्जिद ने या कल्चर सेंटर ने उनका कोई उधार देना कि हमने पानी को जो है बहाना ही बहाना है, टॉयलेटें इस्तेमाल करनी ही करनी हर हालत में, जैसे फ़राइज़ में लिखा हुआ कि ये काम हमने करना ही करने हर हालत में। अब स्टोरों में जाकर देख रहे हैं वहाँ भी यही हाल होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोग कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है उसे बिल्कुल आराम से कानून कायदे के साथ इस्तेमाल करें, तो मैं नहीं समझता कोई मसला होता है।
0: दरअसल दो चीजें, सबसे पहले तो पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पानी ज़ाया होता है उसका बिल भी उतना ही उनको मिलता है। अल्लाह ताला ने आगे पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं तो अल्लाह ताला को सोच समझ के इस करना चाहिए। बंदे ने अपना साफ खुद ही पानी का भी देना होता है हर चीज का। और दूसरी बात स्टोरों पे, हाँ स्टोरों पे बंदे को भी थोड़ा बहुत देख के रहना चाहिए क्योंकि हर बंदे को नजर होती है अपनी, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट अपने पास ही हो तो बेहतर होता है।
1: बिल्कुल आपने बजा फरमाया अदनान। आखिर में अदनान आप क्या कहेंगे?
0: मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको अच्छी समर वेकेशन सबकी हो और जल्द ये जो मेले आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना, उनको क्या कहते हैं उन पे जाना और खुश होना और शामिल होना और अपने कल्चर को प्रोवाइड करना। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको खैरियत में रखे और सेहत सबको तंदुरुस्त दे।
1: अजान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। सामान नाज़रीन, आपको पता है छुट्टी का दिन है, कितना प्यारा मौसम है, लोग इस मौसम को तरसते हैं, दुनिया में लोग कितने पैसे लगा कर जाते हैं और आपको ये इतना प्यारा मौसम मिला हुआ है, इसको इन्जॉय करना चाहिए। बच्चों के साथ इन्जॉय करें, फैमिली के साथ इन्जॉय करें, जो जो भी आपको इवेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये लोकल प्रोग्राम होते हैं, लोकल कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, लोकल लोगों के होते हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, अच्छे तरीके से कानून कायदे का एहतराम करना चाहिए। आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो आप उसी जगह पार्क करें जहां आपको पार्क करने की सही जगह, किसी के लिए कोई मसला मसाइल बने ना ताकि लोग आपकी तारीफ करें। सामान्य नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: कमून के जो बजट्स हैं उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए और उनको दिया जाए कि वो अगले साल अपना क्या कहते हैं उनको पता हो गया हमारे पास कितने पैसे हैं और हम अपना काम किस तरह से करेंगे।
1: किस तरह कर सकते
0: और
1: हैं। लेकिन
0: बाकी बात
1: अदनान, दूसरी तरफ आम शहरियों के लिए जो महंगाई की बढ़ती हुई जिंदगी की लागत अब भी एक बड़ा मसला है, सोशल डेमोक्रेट्स इस पर क्या अमली इकदामात कर रहे हैं?
0: सबसे पहले तो उनने एक और चीज की थी कि ये इन इसको कंट्रोल करने के लिए जो बिफोर होता हुआ है ना वो 1.1 मिलियन लोगों के लिए ज्यादा की है। और दूसरा ये देख रही है कि और सहूलतें भी ये देखेंगे मगर ये तो आस्ता आस्ता ही करेंगे। महंगाई है हाँ, इन्फ्लेशन भी ज्यादा गई है मगर उस पर ये बेनिफिट हुए कि गवर्नमेंट जो जो बेनिफिट ली दो तीन बड़े डिस्काउंट के क्या कहते हैं थे उनने अपनी प्राइसिंग को थोड़ा नीचे कर लिए और क्या कहते हैं लोगों की मदद करने की कोशिश की है। मगर इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फ्लेशन है इस वक्त मगर उसका ये भी है ना कि आप हो सकता है कि कुछ चीजें बेहतर हो जाए क्योंकि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली थी वो था ये जो कॉन्फ्लिक्ट बन गई थी ईरान और अमेरिका की और वो लग रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट
1: वो
0: खत्म
1: कॉन्फ्लिक्ट तो
0: होने
1: चलता
0: वाली है।
1: रहेगा, लेकिन अफलाई रियासत वेलफेयर स्टेट जो है बनाने के लिए आपकी जमात के अहम मंसूबे क्या है? मतलब बड़े बड़े क्या है, 1, 2, 3, 4?
0: सबसे पहले तो इनका यही है ना कि ये पेंशन के सारा सिस्टम को देखना देखेंगे आप कि पेंशन का सिस्टम कैसा है। दूसरा ये देखेंगे कि ये क्या कहते हैं जो जो सिस्टम है ट्रैफिकल सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा ये है कि ये डेंटिस्ट और इनके ऊपर ये काम शुरू करेंगे और चौथा इनका यही है कि स्कूलों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो जो फॉल्क स्कूल है ना उसके अंदर जो जो जो स्टूडेंट है ना वो काफी वीकनेस है। तो ये अवसर ही इनकी ये प्रायोरिटी है कि इन चीजों को देखा जाए और इनको क्या कहते हैं बेहतर किया जाए क्योंकि फॉल्क स्कूल के बच्चे पढ़ने में नहीं पूरे 100% ठीक होंगे ऐसे नहीं होंगे तो फिर मसाइल देंगे। तो ये
1: मसाइल
0: इनकी
1: बढ़ते
0: चीजें हैं
1: रहेंगे। मुजीब
0: दोस्तों।
1: रहमान कुरैशी साहब, आपका तल्लुक SF पार्टी से है और आप लोकल सियासत भी करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके मतलब जो चीज़ें मैंने पूछी है अदनान से?
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम राजा साहब और अदनान अमीन साहब और सुनने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अदनान ने माशाल्लाह
0: बिल्कुल
2: बड़ी तफसीलन आपको बताया। अभी सबसे पहले हम ये कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, बिल्कुल अभी नई हुकूमत बनी है, इसको चंद दिन हुए हैं, तो चंद दिन में तो सारी प्रायोरिटीज सारी चीजें सामने नहीं आएंगी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो जितना इनका प्रोग्राम है, ये 1 अक्टूबर के बाद और फिर जो स्टार्ट नया साल होगा उसके अंदर आस्था से चीजें ये बाहर आएंगी। अभी तो हमें तो ये भी नहीं पता कि ये जो 4 पार्टी जिन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई है, इनकी आपस में क्या मुआहदे हुए हैं, इनकी आपस में क्या बातचीत हुई है, SF ने क्या डिमांड्स की है, SF ने किस चीज पे कहा है कि आपने ये काम करना है ताकि आवाम के लिए बेहतर हो, या मोरात वालों ने क्या कहा है कि किस चीज पे काम करना है। तो ये देखिए जो चंद चीजें सामने आ रही हैं, जैसे स्कूलों का बताया है, क्योंकि वो मेरे फेडरेशन ने कहा था कि क्लासेस में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, 25-26 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, तो कम उसमें काम किए जाएं, तो ये है कि ये एक एजुकेशन के लिए एक बेहतरी आएगी। फिर जैसे डेंटिस्ट का इनलिस्ट जो है उसके ऊपर जोर दे रही है क्योंकि वो सामाबाद कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी। लेकिन मैंने आपको कहा कि जितनी चीजें भी हैं, जो भी पार्टीज है, जाहिर सी बात है अभी ये महंगाई इसलिए ज्यादा है, जैसे ईरान अमेरिका का तो कन्फ्लिक्ट हाल हो चुका है ऑलमोस्ट, आई थिंक आज या कल उस पर साइन हो जाएंगे, और आपने देखा कि आज भी तेल की कीमतें गिरी हैं, तो जैसे ही तेल की कीमतें गिरती जाएंगी महंगाई के ऊपर ही कंट्रोल होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुल्क के अंदर बहुत महंगाई है और उसके ऊपर जो है ना जितनी भी हमारी तनख्वाहें हैं या हमारी पेंशनेज हैं उसके ऊपर गुजारा मुश्किल है। ये वेलफेयर एक कंट्री है डेनमार्क, और दुनिया में इसका एक नाम है, स्कैंडिनेविया के जितने भी ममालिक उसमें सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन ये चीजें अभी आस्ता आस्ता होंगी, लेकिन अभी मैंने जो कहा है कि अभी बहुत जल्दी हम तजिया कर सकते हैं कि क्या क्या होना है, लेकिन जो प्लान जो अक्टूबर में जैसे अब कमून्स के वो जितने भी फंड्स हैं वो बाहर निकलने हैं और जो इस्तेमाल होने हैं, और नया फाइनेंस लॉ जब बनेगा और जब पार्लियामेंट जब ये छुट्टियां गुजार के आएगी, तो जब नया सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद राज साहब तमाम चीजें आस्ता आस्ता हर जमात की बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो वो सेटल हो रहे हैं, अभी तो जितने भी मिनिस्टर बने हैं वो अपने ऑफिस में सेटल हो रहे हैं, अपनी ऑफिस की चीजें देख रहे हैं, अपने लोगों को आंसर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि तो बहुत ज्यादा जल्दी टाइम है कि जिसमें कह सकें जी कि ये ऐसा क्या करेगी, सोशल डेमोक्रेट क्या करेगी, वो ड्राफ्ट क्या करेगी, जितनी भी ये सामा

0: पार्टी जिन्होंने हुकूमत बनाई है, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इन्होंने बेहतर सोचना है। अगर बेहतर नहीं सोचेंगे, जैसे सेहत है, जैसे स्कूल्स है, जैसे महंगाई है, जैसे और चीजें हैं, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट इलेक्शन इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर
1: मुश्किल
0: यही है
1: हो
0: कि
1: जाएगा।
0: इन्होंने
1: आप जहाँ
0: बेहतर
1: फरमा
0: सोचना
1: रहे
0: है।
1: हैं मुजीब साहब, अदनान आप मुजीब साहब ने इस तरह निशानदेही की है। सोशल डेमोक्रेट को पिछले इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी, कम्यून के इलेक्शन में भी, कई इलाकों से बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान हुआ। तो अब दोबारा एतमाद हासिल करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जमात क्या कर रही है?
2: डॉक्टर साहब देखिए, एक तो बात होती है कि जब आप सिटिंग गवर्नमेंट होते हैं ना, और आप कम से कम 7-8 साल हो जाते हैं, और आप डेफिनेटली आप बैकडोर जाते हैं, जिस चीजों से हमें मार पड़ी थी और जिस चीजों से हम लोगों की लॉस्ट हुई है, उन चीजों पे भी हम गौर कर रहे हैं और ऑब्वियसली उनको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली पार्टी के अंदर एक सेटअप बना है और उसको देखने की कोशिश की जा रही है, और उसी के अंदर यही है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि हम अब टाइम लेके हर चीज को, हर इश्यू को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसको बेहतर कैसे किया जाए। हर कम्यून के अंदर कोई ना कोई मसाइल है और उनको भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखा जाए लॉन्ग टर्म तक पॉलिसी बनाई जाएगी और वो बनाई भी जा रही है। इसीलिए पेरिफेरल्स ने ये जो जब इलेक्शन हारी थी, तो जब दूसरा कांग्रेस बोलते आया था, तो उसने उसने कह दिया था उसने कि मैं किसी कीमत पे अपनी मायदे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती सब पे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी लॉस्ट है। और हमें एक मैसेज लोगों से मिला है कि हमने सर लोगों की पॉलिसीज सीरियस नहीं ली। जैसे आप कहते हैं कि कोपेनहेगन के अंदर पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, ये पार्टी को 7-8 साल से लोग कह रहे थे, मगर उधर उनने सीरियस नहीं था लिया। उसका नतीजा ये हुआ था कि वो क्या कहते हैं, पॉम्पो में। इसी तरह से वो काफी कम्यूनों में काफी चीजों की वजह से हारे हैं, क्योंकि उन्हें लोकल मसाइल नहीं थे देखे। नेशनल प्लान पे ये था कि लोगों की ये का ये इशू जो सबसे पहले मैंने कहा, स्कूलों का इशू बहुत बड़ा था, क्राइम का बहुत बड़ा इशू है, क्या कुछ कुछ जगहों पर सजा भी सही नहीं है। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ देखा जा रहा है, और इसीलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि उस मिस्ट्री में भी तब्दीली की गई है कि नए मिस्टर आए और उनका नया विंकल से वो क्या कहते हैं चीजों को देखें। तो आप देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अभी
1: अदनान, ये
2: तो
1: सारी
2: हम
1: चीज़ें
2: उस
1: दुरुस्त हैं सियासी लिहाज से, लेकिन नौजवान वोटर्स को आप जो है अपनी तरफ किस तरह, अपनी जमात को किस तरह मुतवज्जो करेंगे? क्या कोई नई नई हिकमत अमली है? इसी तरह सोशल डेमोक्रेट हमेशा रवायती तौर पर मजदूर तबके की सियासत से दूर हो गए हैं, आप इस तनकीद का क्या जवाब देंगे?
2: सब लोग इसलिए भी दूर हुए हैं कि लोगों के जो लोकल मसाइल होते हैं ना, इंटरनेशनल मसाइल, वो शायद लोगों को था कि हम नहीं देख रहे, और उसकी वजह से ये पार्टी को काफी नुकसान पड़े हैं। और दूसरा मसला ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा मसला पड़ गया था, जो बेसिकली अभी भी पड़ा हुआ है और इलेक्शन के बाद भी पड़ा हुआ है, कि ये जो अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों पर टारगेटिंग हो गई थी ना, इसका बड़ा डैमेजिंग कंट्रोल हुआ है। और आप देखिए आते सार मुझे खुद इसकी समझ नहीं आ रही कि पार्टी के अंदर क्या हुआ हुआ है कि एक से एक वध से कहते हैं चलांग मार के ना स्टेटमेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, मगर देखते हैं अब फ्यूचर में क्या होता है। और अब तो समर वेकेशन सबकी शुरू हो जाएंगी, तो फिर समर वेकेशन के बाद ही ज्यादा पता चलेगा कि क्या बनता है।
1: क्या बनता है? मुजीब साहब, आपने अदनान की बातें सुनी, आप ही की जमात भी मजदूरों के हक में ठीक थी और दूसरे काम करने वालों के हक में, जो उनके हकूक का खास ख्याल रखती थी। अब तो ये आप सारे सोशल डेमोक्रेट भी हकूमत में है, SF भी हकूमत में है, इन सिलिस्टन भी हकूमत में, ये हकूमत से बाहर नहीं है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां आ गई हैं जो सरमादारों की तरफ भी जाती हैं, तो आप इस चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं?
0: देखें, जैसे नान ने कहा है ना, अब थोड़ा सा टाइम चाहिए। जाहिर सी बात है, अभी जो जितनी ये पार्टीज मिली हैं दोबारा, मैंने पहले भी कहा था कि 12 साल के बाद SF जो है दोबारा हुकूमत में आई है, तो जाहिर सी बात है जो अपनी पॉलिसियां जो इनकी हैं, जो आपने मजदूरों का मेंशन किया है, आपने नौजवानों का किया है, तो उसकी तरफ उन्होंने गौर करना है। और इसमें मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम, जब हुकूमत चलनी शुरू, जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी, अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद जो है ना आस्था आस्ता चीजें सामने आएंगी, नहीं आएंगी तो इनको सोचना पड़ेगा कि हमने इसको आगे कैसे लेके जाना है। اور مجھے امید ہے کہ مجھے امید ہے میں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا, مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی نئی حکومت بنی ہے, جن پارٹیز کی بنی ہے, انہوں نے فیوچر میں جو عام لوگ ہیں, جو ٹھیک ہے سرمایہ دار کی طرف ہی تو آپ کو پتا ہے وہ توجہ ہوتی ہے, سرمایہ دار نے تو یہاں پہ بھی اپنا کام دکھانا ہوتا ہے, ظاہر بزنس مین ہوتے ہیں, بزنس چلے گا, کوئی تجارت ہوگی, کوئی معاملات چلیں گے تو اس سے بھی پیسہ آتا ہے, گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو بھی تو وہ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس الیکشن میں پارٹیز کا, مختلف پارٹیز کا, انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے, ہمیں ہماری کیا غلط پالیسیاں تھیں, ہمارے کیا غلط جو ہم نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے, ہمیں عوام نے پیچھے دھکیل دیا. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کریں گے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی بھی یہ حکومت مل کے بنی ہے یہ بہتر سے بہتر کام کریں گی. تھوڑا سا انتظار کریں, مجھے لگتا ہے اکتوبر کے بعد ہی ہمیں کوئی اس کا کوئی فائنل آستہ آستہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سامنے نظر آنی شروع.
1: چلیں عدنان, آپ بتائیں کہ آپ کی کمیون کوپن ہیگن کی کمیون اور اس کے ساتھ فریڈسپیا کمیون ہے جو کوپن ہیگن کے ساتھ ہے, تو آپ کی جو ہے وہ میئر بھی بنتے ہیں, جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے بھی ہیں, پاورفل بھی ہیں, حکومت بھی ہے مرکز میں, تو اگلے چار سالوں میں آپ نے کیا سوچا ہے, کیا تبدیلیاں کریں گے کمیونوں میں؟
2: سر سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہر کمیون جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے پیریڈ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہی ہے نا, اور جو کمیونوں کی جو وشز ہیں, اور جس ٹائپ سے کمیون ہو جائے, رافا پیا کمیون ہو جائے, رکوپن ہو جائے, ان کے دو چیزوں پہ غور ہے. ایک یہ فوکس کو اولا جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں, کلاسیں بہتر ہو جائیں, اسٹوڈنٹ بہتر ہو جائیں, اور یہ جو نئے ریفارم آ رہے ہیں ایجوکیشن کے کمیشن کے جو بنے تھے وہ انٹرنیٹ ہو جائیں. دوسرا ان کا بڑا ہیلتھ کی طرف کیا کہتے ہیں غور ہے کہ ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے, کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے کہ ان سب بہت آ رہی ہے, فورنس بہت آ رہے ہیں, ہو رہے ہیں, ان کو بھی ایک سسٹم چاہیے, ان کی بھی ایک زندگی ہے. تو یہ اس ان چیزوں پہ. اور تیسری جو سب سے بڑی کمیونوں کا چیلنج ہے نا اس وقت, بہت ساری ویسٹ ہے ان کمیونوں میں بھی, اور آپ کو پتا ہے کوپن ہیگن کمیونوں میں بھی, وہ ہے کرائم جس طرح سے بال اور ناکو اور یہ چیزوں کا, اس پہ بڑا فوکس ہے ہر کمیون کا. یہ تین چیزیں وہ جو ہے نا فوکس نے بڑی رکھی ہوئی ہیں اور ان پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں,
1: کام کر رہے ہیں عدنان. لیکن اگلے چار سالوں میں نوجوان جو ووٹر ہے وہ نیشنل الیکشن میں, پارلیمنٹ پارلیمانی الیکشن میں بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ نوجوانوں کے بڑھ جائیں گے, اس پر بھی ڈیفینیٹ جماعتیں کام کریں گی. اگر یہی حال رہا, یہ بڑی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھ گئی ہیں, چار بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں حکومت میں اور اس کے ساتھ اتحادی لوگ بھی شاید ساتھ شامل ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ان اگلے چار سالوں کو اگر آپ کریں مائکرو فون میں دیکھیں شیشے میں, اینکو والے شیشے میں, تو کیا لگتے ہیں اگلے چار سال آپ کو؟
2: میں دیکھوں تو مشکل لگتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تین ڈفرینٹ حکومتیں بنی ہیں, مگر مین بات آپ کو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تیسری دفعہ سوشل ڈیموکریٹک کولیشن کے اندر ہیں, اور اس بار 12 منٹ ایک ہوئے تھے, تو آبویسلی فیوچر ان کے لیے ٹف ہے کیونکہ اکنامی بھی پھنسی ہوئی ہے تھوڑی بہت, کیونکہ بہت سارا خرچہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آ رہا ہے, تو پھر آبویسلی چیزیں تو ایسے ہی ہیں.
1: منجیب صاحب, یہ چوتھی جو سات پانچویں پارٹی لگی ہوئی جو سلیپنگ پارٹنر ہیں, وہ جو الٹرنیٹو پارٹی بھی ہے, تو ان کے جو ایک لیڈر ہیں پاکستانی نژاد قاسم نذیر, جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ان کو سٹوٹ کرنے کے لیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ کی پارٹی نے کیا حاصل کر لیا ابھی؟
0: میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا جی کہ ابھی جو ان کے درمیان, یہ چار پارٹیز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے, جو ان کے ساتھ آپس میں ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیسی چیزیں لے کے آنی ہے, کیا آپ نے کسی کو بھی مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے. میں پھر ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اکتوبر تک آپ کے سامنے آئیں گی, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی پارٹی سے رابطہ قائم کر کے ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے کس چیز کے اوپر عوام کے لیے, ملک کے لیے, سب سے پہلے ڈنمارک کے لیے, پھر عوام کے لیے, آپ نے کیا کیا چیزیں جو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا, صحت کا بھی بات ہوئی ہے, تعلیم کی بات ہوئی ہے, اب ہماری پینشنسٹ ہیں, ہمارے ایلڈر ہیں, ہمارے فلائی ایم ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ آپ کو جتنی چیزیں رائے صاحب, یہ اکتوبر سے پہلے تھوڑا سا امپوسیبل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل سکے, تو جیسے ہی ہمارے پاس معلومات آئے گی تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی, اور اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ بھئی ہر پارٹی نے کیا کیا اپنا ایک مقصد اس کو حل کرنا ہے, اور جو اگلے چار سال ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں. तो जो पार्टी जो चीज बेहतर आवाम के लिए लेके आएगी तो मेरा ख्याल है उसकी फिर आइंदा भी जो
1: लेकिन
0: कामयाबी
1: मुजीब साहब
0: होगी।
1: चलते चलते ये भी बता दें अदनान के पास जाने से पहले कि जब इतने ज़्यादा मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, सबको समझ भी है, लेकिन क्या समझते हैं कि गैर मुल्की स्पेशली पाकिस्तानी निसाद सियासतदान या दूसरी जमातों के सियासतदान इन चीज़ों को समझते हैं कि आने वाला वक्त हमें किस तरफ लेके जा रहा है, लेकिन हमारा जो स्टाइल है वो अभी तब्दील नहीं होने के लिए तैयार नहीं है।
0: देखें जी, जो हमारे जितने भी अब कमूनस के अंदर जो या रीजन के अंदर जैसे हमारे नौजवान आए हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको, क्योंकि यहाँ की वो पैदाइश है माशाल्लाह, डेनिश और जुबान पे और माशरे का और कानून का सब कुछ उनके पास इल्म है और वेल एजुकेटेड है, तो मेरा ख्याल है वो अब फ्यूचर को भी देख रहे हैं और अगली जो चीजें हैं वो उन्होंने वो वाली सियासत नहीं करनी जो आज से 10 साल या 20 साल पुरानी थी हमारी फॉरनर्स की। उनको जैसे लोग अब देखें जितने भी ज्यादातर मुंतखब हुए हैं ये पार्टियों से मुंतखब हुए हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से मुंतखब हुए हैं, और दो आपके वीसा प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, रीजन में भी आपका बंदा चला गया, तो मेरा ख्याल है आइंदा जो 4 साल जैसे आपने पहले कहा कि अब बहुत सारे नौजवान की वोट जो है ना और बननी है जो 18 साल के हो जाएंगे अगले इलेक्शन तक, तो मैं समझता हूँ कि अगला इलेक्शन भी टफ होगा और ये जमाते हैं सोच रही है नौजवानों को कैसे आगे लेके आना है, और जो नौजवान इस वक्त कमूनस में और रीजन में बैठे हैं उनको चाहिए कि अपने फ्यूचर से अपने वो चीजें अचीव करें जिस पे उनको आइंदा जो आपको 4 साल के बाद जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो वो आपके काम आ सके, जिसमें आवाम की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, उनकी अपनी अपने बच्चों की बेहतरी हो। तो मेरा ख्याल है नौजवान, मुझे लगता है कि ये जैसे स्टार्ट नया साल होगा 2027, तो मेरा ख्याल है उसमें बहुत सारी चीजें सामने रास्ता आ जाएंगी।
1: अजान क्लोजिंग की तरफ आपने सब चीज़ों को एनालाइज तो कर लिया होगा, डेफिनेट आप करते भी हैं, तजिया करते हैं, हर चीज़ का तजिया करते हैं। अदनान, क्या आपको समझ आती है कि जो हमारे अपने गैर मुल्की हैं वो इस तरफ जाएंगे, डैनल सियासत की तरफ जाएंगे या अपनी रवायती सियासत करेंगे?
2: मोस्टली जो यहाँ के यंगस्टर पढ़ के आ रहे हैं ना, वो तो डेफिनेटली डैनल की सियासत की तरफ जाएंगे, उनकी रूटीन हो रही है तो वो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी सियासत से पीछे होते जा रहे हैं, तो और वो समझ भी रहे हैं इस पूरे मामले को, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी।
1: आखिरी ब्रेकिंग न्यूज आप क्या देंगे?
2: ब्रेकिंग न्यूज तो इस वक्त कोई नहीं है, अभी बस ये है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जैसे कहा गया प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, और फिर जब ब्रेकिंग न्यूज होगी तो फिर व्यूअर्स को जरूर बताएंगे।
1: मुजीब साहब, आप भी कोई ब्रेकिंग न्यूज देंगे?
0: नहीं जी, अभी मैंने कहा कुछ भी, अभी आप इस चीज को अंदाजा रखें तो ऊपर से पहले कुछ नहीं है और उसके बाद नए साल के शुरू में आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, और जब भी हम पार्टीज के साथ मीटिंग्स करेंगे या जैसे नान साहब हैं ये तो बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, तो जैसे जैसे बात सामने आएगी आपको भी और इन व्यूज को भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि जितनी इनपुट कमूनस के अंदर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं और जो इस वक्त मतलब के अच्छी मतलब देखें वो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको कोई फोरमैन चेयरमैन बना हुआ है, मुख्तलिफ जो वेल्स होते हैं, तो उनको चाहिए कि अपना काम करें कि देखें अभी आज जून हो गया है और जून में कि अभी नवंबर में 1 साल उनका गुजर जाएगा तो बाकी 2.5 साल रह जाएंगे, तो उन्होंने अगर कुछ कुछ ऐसी इनपुट नहीं डाली होगी तो मेरा ख्याल है उनका इलेक्शन भी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उनसे बड़ी ये गुजारिश है कि भाई आप अपनी जो भी कमूनस में अपना काम कर रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा आपके रेडियो पे आके थोड़ा सा लोगों को बताया करें, थोड़ी सी लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि भाई हमारी कमूनस में मुख्तलिफ कमूनस में लोग बैठे हुए हैं क्या क्या काम हो रहे हैं, ताकि लोग जो हैं थोड़े से उससे उनको थोड़े से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उम्मीद है कि देखें जैसे अदनान कह रहे हैं कि अभी तो कोई हमारे पास ऐसी खबर नहीं है, लेकिन जल्दी जैसे की होगी आपके साथ शेयर करेंगे और उसको भी बताएं।
1: अदनान, आप आखिर में किस तरह अपने सामान्य नाजरीन को कहेंगे, हम बातें तो बहुत करते हैं, आने वाले दिनों में भी हम काफी मसरूफ हो जाएंगे, अगले महीने मुहर्रम भी शुरू हो चुका है, इस पर भी लोग मसरूफ हो गए हैं, लेकिन छुट्टियों पे सियासतदान छुट्टियों पे चले गए तो हम तो सियासी लिहाज से 12 महीने छुट्टियों पे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल करा दी हैं कि डॉक्टरों का दांतों का इलाज हुआ फ्री हो जाएगा, ये फ्री होगा या मुजीब साहब की तरह अगले साल तक जाएगा?
2: नहीं नहीं सर, वो मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि वो कैटेगरी की तरह से आ रहे हैं, पहले फर्स्ट फंक्शनिस्ट और कुछ कंटेंटर्स से आएंगे और उसके साथ वो फिर एक एक स्टेप को ऊपर लेके जाएंगे। आखिर में मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह मुल्क के हालात हैं, सूरत हाल बनती जा रही है, इसी की पर हम मुसलमानों के लिए उस पर भी हम स्टैंड लें। अल्लाह ताला ये जो इस्लामिक कैलेंडर चल रहा है मंगल वाले दिन कल, अल्लाह ताला सबके लिए ये अच्छा लेके आए, खुशियाँ लेके आए, और हम मुसलमानों को इत्तफाक दे और हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकें कि इन लोगों को भी पता चले कि मुसलमान भी एक क्या कहते हैं आप, हिस्सा तो है हमने सोसाइटी का, मगर उसमें हम पार्टिसिपेट भी ऐसे करें कि इनको नजर आए कि हम यहाँ पे कि एक अब बन गए हैं, जैसे बंदा कहता है ना, एक डिटेल बन गया इस कल्चर का।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, मुजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम अदा आपकी आवाज के साथ शेयर किया,
0: बहुत शुक्रिया जी आपका राय साहब। ओके अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाजरीन, ये थे मुजीबुर्रहमान कुरैशी साहब और अदनान अमीन अली, ये दोनों सियासतदान हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से इनका ताल्लुक है। आपने इनकी बातें सुनी, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: मुझे इज्जत दिया, मैं इसका शुक्रिया अदा आपका कभी बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है। दूसरी बात रही, हाँ यंगस्टर को मैं कोशिश करता हूँ, मेरी अपनी से भांजा है, मेरी बेटी है, वो जहां जाते हैं वहां वो यंग से पूछते हैं, तो वो यही मैं कहता हूँ क्या आपको जो गाइडलाइंस है, आप लोग, मैं पीछे हट जाता हूँ, आप लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है और आप लोगों ने ही आप चलने, मैं तो यही कर सकता हूँ कि मैं करूँ। आपका दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट की डिसीशन, हाँ मैंने देखी है वो डिसीशन और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं 1 मंथ के अंदर 2 ऐसे फैसले दिए हैं जिससे ये पता चलता है कि इस मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम है। पहला एक फैसला जैसे आपको पता है वो हाथ वाला आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलती है, और ये भी उनने कहा है कि ये भी उनका अच्छा फैसला है, इससे ये है कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिले हुए हैं उनके पासपोर्ट छीनना बड़ा मुश्किल है। अब मेरा जो क्या कहते हैं, अभी तो मैंने देखा नहीं है, कुछ देर
1: जी,
0: बाद
1: यही
0: आप
1: यही यही अदनान, यही मैं आपको रुकूंगा, यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो पिछले साल गवर्नमेंट ने कानून बनाए थे कि जब चाहे पासपोर्ट छीन लो, जब चाहे पुलिस सेल्स के बारे निकाल सकते हैं सब कुछ, तो मैं यही आपसे जो मेरी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, मैं यही चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस के बाद तो हमें काफी तहफ़ुज़ मिल गया है कि हम अब मसलन सी कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि हमें अगर इनको ले जाना पड़ेगा, हमारी नेशनलिटी छीनी पड़ेगी, तो अब हमें ये कानूनी एक रास्ता तो मिल गया है। क्या आप एग्री करते हैं कि हमें कानूनी रास्ता मिल गया है कि हम अदालत में जा सकते हैं, इनको चैलेंज कर सकते हैं?
0: हाँ ये रास्ता है राजा साहब। देखिए वो जो जो दो दो दो अलग चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि एक मसला ये है कि ये जो है ना पासपोर्ट वाला कानून, ये उस वक्त भी हमें अंदाजा था कि ये कानून जरा थोड़ा बहुत इसीलिए चेंज किया गया था कि इनको पता था ये एक दो फैसले आने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जब फैसला पूरा आएगा हम पढ़ेंगे, फिर मैं डेफिनेटली देखूंगा कि इस फैसले के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस फैसले का मतलब क्या है और उस कानून के साथ क्या है। दूसरा जो कानून बनाया गया था ना वो ये था कि जब आप कि कोई बच्चे गलत काम करें ना बहुत, तो आपकी पूरी छीनी जा सकती है। मेरी इंफॉर्मेशन के बकौल उसका भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसका भी फैसला आने वाला है। अब जब वो फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा कि इस कानून के अंदर क्या है। अब मैं आपको एक एक एक एक बात कर देता हूं, मैंने ये, अल्लाह करे कि कोई इस बात को ना ले, हमारे, आपको भी पता है मैं नाम नहीं लेता, मगर हमारा एक पाकिस्तानी भी था इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था जिसका मुकाम ने छीनने की कोशिश की होगी, चाह साहब को आपको पता होगा उस केस का,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आप ये क्या कहते हैं क्योंकि उसका उसका कोई था, तो ये आप क्या कहते हैं ये देखा जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्लियर कर दिए कि पासपोर्ट दे के छीनना बड़ा मुश्किल है। अब हो सकता है कि इस पे क्या कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे फोन पे तेंस कॉल के पीछे के लिंक्स आने लग जाते हैं और वो तो शुरू हो गए हैं ना कि ये देखो हम सच्चे थे कि हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो अब ये देखने की जरूरत है कि हमारा नया जो इंटीग्रेशन मिनिस्टर है मोहम्मद को और हमारा जो नया जस्टिस मिनिस्टर है लिगुना वामिंग, वो इस पे कौन सी स्टेटमेंट देते हैं इस फैसले के बाद। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो
1: चले,
0: जो
1: ये आने
0: जो इसको
1: वाला
0: अंदर
1: वक्त बताएगा। तो शाह साहब इजाजत ले अदनान से, फिर अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं।
0: जी दान, बहुत बहुत खुशी हुई है और उम्मीद है कि अगली दफा जब हमारी मुलाकात हो तो हम थोड़ा सा जो कम्यून का जो कम्यून ज्यादा पावरफुल है या पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, किसके पास कैसे अख्तियार आते हैं, और डेनमार्क की जो मुख्तलिफ कम्यून्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं कि आप और जीशान और दूसरे जो बच्चे आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बकायदा तैयारी से आ रहे हैं और आप लोगों के पास इल्म है और आप इल्म बांट रहे हैं और सुनने वालों को एक मुफीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम हर रोज बैठ के इसके ऊपर बात करें, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपनी फैमिली अपनी दूसरी जॉब्स को छोड़कर इस पे टाइम देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: मैं तो आपका

0: दिलो जान से दुआ करता हूँ कि आप सियासत में इसी तरह रहे और लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे।
1: शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों से फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी। मेरी तरफ अल्लाह हाफिज सबको।
2: अल्लाह
0: अल्लाह
2: हाफिज।
0: हाफिज जी।
2: बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप शाम के प्रोग्राम में दोबारा इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। आप साहब दोनों इजाज़त लेते हैं, अब हमारा टाइम हमें इजाज़त नहीं दे रहा।
0: जी अल्लाह हाफिज, जी अल्लाह हाफिज।
2: समय नाज़रीन, आप सुन रहे थे अदनान अली अमीन को, और शाह साहब जो हैं वो सवालों जवाबात की महफिल में वो उसको ले रहे थे, अदनान को ले रहे थे। समय हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, कोई अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम